आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन, आज जुमेरात हैं, शख्सवत 1948 के आशिदा महीने की 11 तारीख मुताबिक 2 जुलाई 2026 ईस्वी। सुबह के 6:32 हुए हैं। हमारी आज की नशरियात का आगाज होता है

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रोग्राम समाप्त करते हैं सुबुगाही।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम सुबुगाही है चीज तुहंदिस खिदमत अंदर हाजिर। सामिन मोहतरम, कुरान करीम अंदर चु अल्लाह ताला सुंद इरशाद जील तो ही ब्रोह कनी कुरान करीम च तिलावत ही करन तुहि रुजो खामोश कान दित बूजो ताकि तो ही पेठी रहम करने।

يقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول

समीन आपको याद दिला दें, सुबह 10 बजे आप प्रोग्राम सुनेंगे सूफी सदा। आज के प्रोग्राम में बात होगी हजरत सैयद सौलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, तहरीर मजीद मसरूर।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में खबरें सुनते हैं।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकाई चेत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीययात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकायची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिकयात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारतजापानयोः मध्ये विशेषरणनीतिकवैश्विकसहमतिम् अग्रे वर्धनदिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिकसञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापकचर्चायाः आशां करोति, यया भारतजापानयोः विशेषरणनीतिकवैश्विकसहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्जक्षेत्रस्य नेल्सन् मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्लीनगरे 48

0: एकशत एई राष्ट्रीय राजमार्गस्य कृते षट्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रीय राजधान्यां वार्ताहरान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् उत्तर प्रदेशे राष्ट्रीय राजमार्गस्य चतुस्त्रिंशत् इत्यस्य सप्तदशांशोत्तर सप्तदशाधिकैकशत किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगमन नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः षड् मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी राम जी अधिनियमस्य पञ्चविंशत्यधिक 2000तमस्य अन्तर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25 उत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000 गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदातृसूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000 प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरन कप इत्यस्य 35,100तमं संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली

0: आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. Meanwhile, Prime Minister Modi said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi today that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. Mr. Modi said he is delighted to host her on her first visit to India. Mr. Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The government has issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. Sources said the Ministry of Information and Technology directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. The ministry also directed Meta not to roll out the usernames feature until consultation on the matter is over. Lieutenant Governor Manoj Sinha, Jammu and Kashmir, flagged off the first batch of pilgrims of the annual Sri Amarnath Ji Yatra from Bhagwati Nagar Base Camp in Jammu this morning. Our correspondent reports that the 15

0: जी रिफत जी कहते हैं ना कि एक लड़की जो है ये पूरे खानदान की पहचान होती है।
1: बिल्कुल।
0: और आईन की नजर में अगर देखें मर्द और औरत दोनों बराबर हैं और ये सियासी समाज और समाजी या मुआशी मैदानों में यकसां मौके हासिल है। ख्वातीन को अपने करियर के इंतखाब बराबर उजरत के हुसूल और काम की जगह हरासां होने से तहफ़ुज़ का हक भी हासिल है।
1: सही कहा आपने, बिल्कुल। देखिए एक पढ़ी लिखी और बाइख्तियार औरत ही एक मुहज़्ज़ब माशरे की तश्कील करती है। माँ बहन बेटी और बीवी के रूप में वो खानदान की देखभाल करती है, जबकि बतौर उस्ताद डॉक्टर और रहनुमा मुल्क की तरक्की में मर्दों के शाना बशाना किरदार अदा कर रही है।
0: बिल्कुल रिफत जी, बल्कि यूं कहे कि जिंदगी का कोई शोभा हमारी लाइफ का कोई हिस्सा ऐसा है ही नहीं जहाँ पे हमारी औरतें हमारी माँ बहन उनकी मुदाखलत ना हो।
1: सही कहा आपने।
0: और जब औरतों की बात आती है तो बात घर की आती है।
1: बिल्कुल।
0: और जब बात घर की आए तो ये गजल दोस्तों तक पहुँचाना जरूरी मैं समझता हूँ।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे राकेश, चिप्स खाएगा?
2: एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
1: अच्छा, वो पैकेट दिखा, ओए ये तो एक्सपायर्ड है।
2: क्या
3: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? इसलिए ध्यान रखें, खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1800-11-2100 पर।
4: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
7: जी,
6: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
7: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
6: पर ये होगा कैसे?
7: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
6: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
7: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
6: बस समझ गया।
7: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गूंजता बम बम भोले का जयकारा हर भक्त के लिए एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव लेकर आता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन दिल से स्वागत करता है।
11: इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी निर्देशों का पालन अवश्य करें। यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यात्रा रूट में प्रवेश करने के लिए वैलिड RFID कार्ड अनिवार्य है। बिना RFID कार्ड किसी भी यात्री को यात्रा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसीलिए इसे हर समय अपने पास रखें। सफर हमेशा ग्रुप में शुरू करें और पहाड़ी रास्तों को ध्यान में रखते हुए ट्रैकिंग शूज और आरामदायक कपड़ों का इस्तेमाल करें।
10: यात्रा के दौरान स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें। रास्ते में कचरा ना फेंकें और निर्धारित डस्टबिन का उपयोग करें। चढ़ाई करते समय अपनी रफ्तार संतुलित रखें, जल्दबाजी से बचें और बीच बीच में छोटे विश्राम जरूर लें। खाली पेट यात्रा शुरू ना करें। पानी और हल्का भोजन साथ रखें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में तकलीफ या तबीयत खराब महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप में संपर्क करें।
11: सभी निर्देशों का पालन करें और अपनी यात्रा को सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय बनाएं। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
12: जी हां सामीन, आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2103.5 MHz मीडियम वेव 268.8 मीटर। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो प्याम सुबह 7:10 से लेकर ठीक 11:30 तक हम आपके साथ इस लाइव शो में रहेंगे। बहुत सी बातें, मुलाकातें हम आप तक पहुंचाएंगे और हमारी कोशिश ये है कि आप तक वो बातें पहुंचे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और मैं आपकी मेज़बान रिफत आरा और मेरे साथ है परवेज़ मीर। परवेज़ साहब, इससे पहले हमने गज़ल अपने सामीन तक पहुंचाई है, तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। वाकई में घर जैसा सुकून हमें कहीं नहीं मिलता है।
13: सही बात है कि घर जैसा हसीन कोई मंज़र नहीं है, कोई भी जगह पे आप जाएं, लेकिन घर जैसी राहत, वो एक अजीब सा फील। यथे रिफत जी कृषि पचवरण सो वश त्रित इंसान सो अक रिलीफ फील करन कि बस जैसे सारी दुनिया की खुशियां, सारी दुनिया का सुकून उसमें सिमट आया।
12: क्या बात है। देखिए, अगर हम किसी 5-स्टार होटल में भी रहते हैं ना, लेकिन उसके बाद जब हम घर आते हैं तो घर में अलग सुकून पाते हैं। घर में बैठना, हम कहीं भी जाएं, लेकिन उसके बाद हमारा जो है ना, हमारा

0: बड़ा कंसर्न रहता अपने घर के साथ
1: तबै छु प्राणी उगुनमुत के घर बन्धाई घर सासा
0: बारनिया
1: रहै न जा त रिफत जी यम सातन तोही आज सुबह गैरे द्रो स्टूडियो वस कुनो
0: जी जी
1: चूंकि गर्मी होंद मौसम छ त आज सुबह यिल तो हित्रो त क्यत फील होस त मौसम क्यत
0: वरिया असल ओस रूदोस पेमान हल्का हल्का ओस वो बूंदाबांदी हो रही थी लेकिन बहुत अच्छा मौसम था इतना खूबसूरत कि इंसान जो मैंने रोज हाथ ये रोज छावा बस हो रही पाना सन हाँ तो लेकिन इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए एक तो ये राहत का सामान है अगर बारिश होती है हमारे लिए लेकिन कुछ चीज़ें हम खुद भी कर सकते हैं परवेज़ जैसे इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें खुद लेनी चाहिए इसमें सैलड का इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम सेहत के हवाले से भी बात करें तो गर्मी की शिद्दत जो ही बढ़ जाती है तो इसे बचने और जिस्म में पानी की कमी को दूर करने के लिए चंद कुदरती और रवायती मशरूबात की अगर हम बात करें ये मशरूबात हमारे जिस्म को हाइड्रेट रखने के साथ साथ फौरी तवानाई भी फराहम करते हैं
1: सही बात है और रिफत जी यहाँ पे दोस्तों को बताना चाहेंगे कि लीमू का पानी पीने से हमारे जिस्म को वाफर मकदार में विटामिन सी मिलता है ये मशरूब गर्मी के असर को जाहिल करता है और हमारे जिस्म को फौरी ताजगी बख्शता है
0: सही कहा आपने और वैसे भी अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो तो पानी बहुत ज्यादा लेना चाहिए और इसके साथ साथ अगर आप पुदीने की लस्सी लेना तो हमारे जिस्म को सख्त गर्मी से बचा लेती है देखिए दही में पुदीना मिलाकर पीने से हाजमा दुरुस्त रहता है और जिस्म को अंदरूनी सुकून मिलता है जिसमें पानी की कमी और ठंडक के लिए ये जो देसी मशरूबात है ना ये बहुत ही मुफीद होते हैं जिस्म के लिए
1: बिल्कुल रिफत जी ये तो बात मशरूबात की हुई है यहाँ पे एक बात मुझे याद आई कि हमें मौसमी फलों का भी भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी सेहत जो है ये तंदुरुस्त रहे कहा जाता है कि मौसमी फल जो है हमारी सेहत के लिए हमेशा ही बेहतर होते हैं और मुफीद रहते हैं
0: सही कहा आपने देखिए ये नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर ने जो हमें दिया है उसमें इंसान का फायदा ही फायदा है और नेचर हमसे कुछ लेता तो है नहीं है ना बहुत सारे फल जो हमें कुदरत ने मयसर रखे हैं इस दुनिया में उनका इस्तेमाल हमारे जिस्म के लिए वाकई में सही है
1: और इसीलिए उनका इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि जो हमारी सेहत है हमारी सोच या पूरी हमारी जो बॉडी है उस पर एक अच्छा असर पड़ जाए और यहाँ पे इशारा हो रहा है एक नगमे के लिए हम जाए फिल्म सड़क का नगमा क्यों करके रखा है आइए सुनते हैं

0: सड़क फिल्म कनक में अनुराधा पोडवाल, मनहरू दास की आवाज। रिफत जी, कैसा लगा?
1: बहुत ही बढ़िया।
0: और उम्मीद करते हैं हमारे सुनने वाले दोस्तों को भी ये नगमा बहुत अच्छा लगा होगा।
1: नब्बे की दहाई का नगमा है और जितने भी नब्बे की दहाई के नगमे हैं बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू लेने वाले नगमे आज भी जब हम सुनते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं।
0: रिफत जी, बात हम नगमे से पहले मशरूबात की करते थे और मशरूबात की बात करते हुए याद आया, जहन में आया कि जब बारिशें होती है ना तो बड़ी जोरदार बारिश होती है, धूप निकल आती है तो कड़क धूप होती है कि जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।
1: जी जी जी।
0: तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर एक इंसान जो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए मौसम के तई या एनवायरनमेंट के तई।
1: सही कहा आपने परवेज। देखिए, अभी हमने बात की नेचर की कि नेचर ने बहुत सारी चीज़ें हमें दी हैं। अगर हम फल सब्जियों की बात करें, वो हमारे जिस्म को कितना तरोताज़ा रखते हैं। नेचर ने बहुत कुछ दिया, हवा देता है हमें, पानी हमें मिला है नेचर से, और हम हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है अगर हम नेचर की बात करें। नेचर के हवाले से ख्याल रखना चाहिए हमें और नेचर का जो तहफ़ है उसके तई हमें बहुत ही जिम्मेदार होना चाहिए।
0: सही बात है। और रिफत जी की जो भी हमें मिला है ना कुदरत से, वो सारा प्योर मिला है, लेकिन मिलावट जो है हमारी तरफ से जा रही है, पोल्यूशन जो है हमारी ओर से हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे जिम्मेदार बनना है कि जब हम खुद से शुरू करें। मैं कहूँ कि चलो आज मैं स्टेप लेता हूँ कि जो पोल्यूशन है उसको मैं कहीं ना कहीं अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, और तब जाके अगला भी सोच सकता है कि ऐसा हम करेंगे।
1: सही कह रहे हैं आप। जब नेचर ने हमारा इतना ख्याल रखा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम नेचर का ख्याल रखें, तभी जिंदगी रवां दवा है।
0: लाइव मॉर्निंग शो पे आमे सुब आप सुन रहे हैं। रिफत जी, आप गए हों देशार गड़ बोजो कशर फेट खबर तंपत करो मजीद का।
2: ये छे आकाशवाणी सुबह 7:05 सपद खबरन हुंद बुलेटिन है चुस्ब तजम्मुल अहमद। गड़ अख नजर खास खास खबरन हजन सुर्खियन पेट। मरकजन चे दिलित उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपये मालियत किन सड़कन हिंदे बुनियादी ढांच किन दोन बड़न प्रोजेक्टन मंजूरी दिसमस। जम्मू कश्मीरिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान कर आज सुबह जम्मू की भगवती नगर बेस कैंप पे श्री अमरनाथ जी यात्रियों हज गुड़ चौक कशीर कुन रवाना। विकसित भारत जी राम जी एक्ट गो रात पे द्रुस मुल्क अंदर लागू, अत एक्टस तहत उजरतिक नजरसैनी करना आमित शरह लागू करना आमित। तो सुप्रीम कोर्टन मुआवजे किन दावहन अंदर हिशर अन्न बापत सड़क हादसन हिंदन मुतासर हज आमदनी हूं तयन कर सिलसिलस मज रहनुमा खतूत जारी कर। हुकूमतन दोन बजन शहरान हिंद बुनियादी ढांच कन प्रोजेक्टन मंजूरी दिसम यथ पट कुलहम पे 14,134.8 करोड़ रुपये लागत ये। इन प्रोजेक्टन मू दिल अख टनल प्रोजेक्ट शामिल यथ पे 6,979 करोड़ रुपये लागत ये। अमुक मकसद ट्रैफिक दबाव कम कर। दोम प्रोजेक्ट 7,135 करोड़ रुपये हूं ग्रीन फील्ड शाहरा प्रोजेक्ट। ये शाहरा ये उत्तर प्रदेश अंदर तमीर कर नई दिल मन काबीना फैसलन मुतलिक नामनगार सत कर इतला तो नशरियात मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो इन प्रोजेक्टन मकसद पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान तहत कनेक्टिविटी पोचर दिन सफर वक् कम कर इकतसदी सरगर्मियन पोचर दिन। काबीना दिस दिल कौमी शाहरा अखत 48 AE पे 8.1 किलोमीटर तवील सुरंग तमीर कर मंजूरी इस द्वारका एक्सप्रेस वे वसंत कुंजस मज नेल्सन मंडेला मार्ग सलव। काबीना उत्तर प्रदेश मौमी शाहरा नंबर 34 पे 17

0: विकसित भारत जीराम जी एक्ट जसास पुंचास ताच होर्यमान उजरतन हुन निफाज दुरुस मुल्क संदर रात पट सपुदमुत गैमी तरक्की हिंज वजारत दे जारी नोटिफिकेशन मुताबिक तमाम रियासतन ते मरकजी इंतजाम वालन इलाकन मंज उजरतन अंदर हुरर करनामुत वजारत वोनमुत जे गोडनिकी फिर चु 300 रोपी रोजान उजरतुक अक अबूरी बुनियादी शरह मुतारिफ करना आमुत युत यकत यकीनी बनि जे कुन त प्रोग्राम तहत आसन कह नोटिफाई करना आम उजरत अमि सोत खोत कम विकसित भारत जीराम जी एक्टस तहत चु कौमी सोतरच फी दो उजरत एम जी नरेगा तहत जहत अरनमत रोप शीत पोस पे हुर त्रहत सतोह रोप चतजी पोस करना आम तो यथ कन चु अंदर औसतन फी दह फीसद हुर करना आमुत सुप्रीम कोर्टन रात रहनुमा खतूत जारी कर इनकम टैक्स रिटर्न किस बुनियादस पे गाड़न हिंदिस हादसस मज मार सपदन वाल मुतासर या दावा पेश कर वाल जख्मी सालान आमदनी हूं तयन कित हे अदालत कर गाड़न हिंद हादस किस सूरत मज मुआवजन अंदर हिज अन्न बापत अख अहम फैसल बोजनावान वोन सुप्रीम कोर्टन तनखा प्रावन वाल नफर बापत आ पत्म पुंचन वर्यन हूं इनकम टैक्स रिटर्न सालान आमदनी हाव बापत काफी पन रोजगार पान चलावन वाल नफर हिंदिस बारस मु अदालतन वोनम पत्म त्रेन वर्यन दौरान दाखिल कर आमतिस आई टी आरस मज हा आम औसत आमदनी यी रेफरेंस पॉइंट बनाव जस्टिस संजय करोल तो जस्टिस एन कोटेश्वर सिंहस पे मुश्तमिल एक बेंचन वोन मोटर गाड़न हिंदिस एक्टस तहत सालान आमदनी हूं हिसाब किताब लगावन बापत हे अख तय कर आमुत फार्मूला तवे अदालतन तनखा प्रावन वाल मुलाजमन तो पन रोजगार पान पकनावन वाल नफर दरमियान अख वाजे फर्क कायम करम यु तिंदिस पन्नस पन्नस आई टी आर किस बुनियादस पे मुआवजा साम हन हे य इजाजत हेन ब्रो बूजू खास खास खबर बे एक फिरे मरकजन दिल्ली तो उत्तर प्रदेश में 14 सास करोड़ रुपये मालियत कन सड़कन हिंदे बुनियादी ढांच कन दोन बड़न प्रोजेक्टन मंजूरी दिजमुच जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कर आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पे श्री अमरनाथ जी यात्रा हज गोडनी छोक कशीर कुन रवाना विकसित भारत जीराम जी एक्ट गो रात पे दुरुस मुल्क अंदर लागू अत एक्टस तहत उजरत नजरसानी कर शरह लागू कर तो सुप्रीम कोर्टन मुआवजे कन दावान अंदर हिशर अन्न बापत सड़क हादसन हिंदन मुतासर हज आमदनी हूं तयन कर सिलसिलस मज रहनुमा खतूत जारी कर खबर बुलेटिन अंद कशर खबर ब्या बुलेटिन सपद आकाशवाणी श्रीनगर पे 9 बजे तो 10 मिनटन पे नशर अव इजाजत खुदा हाफिज
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है मीडियम 268.8 एक मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समय सुबह के 7:55 हुए हैं अबके बाद नशर होने वाले जन प्रोग्रामों पर नजर डालते हैं समय आपको याद दिला दें 9:30 पर प्रोग्राम नशर होगा बजरगन हिंद खतर आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं सूफी शायर अली मोहम्मद मिस्कीन साइंस सीरियल समाप्त करे शब 10:30 पर पंजाबी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां आप सुनते हैं हर रोज सुबह 9:30 पर शोबे खबर की पेशकश शहर शहर मंजर आप समाप्त करेंगे

सपहर 3 बजे फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा। पहाड़ी प्रोग्राम समाप्त करें 4 बजे, 4:45 पर चलंत आप सुनेंगे। फनकार हैं निसार हुसैन डोलवाल और साथी, इनसे आप कलाम सैदुद्दीन सैदी और कलाम जानबाज कश्तवाड़ी सुनेंगे।

गोजरी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा शाम 5 बजे। शाम 6:05 पर अगमी बाइन हिंद खतर प्रोग्राम नशर होगा। हालात हाजरा का प्रोग्राम शहरबीन ब्रॉडकास्ट होता है हर रोज़ शाम 7 बजे। रात 8 बजे प्रोग्राम समाप्त करें वादी की आवाज़।

रात 9 बजे सुपंसर प्रोग्राम समाप्त करें हम सफर। मौजू है क्या दूसरों के बच्चों से ज़ाती खिदमत लेना दुरुस्त है। आज इस मौजू के तहत हम सफर प्रोग्राम की दूसरी किस्त आप सुनेंगे। मुकर्रर हैं हज़रत मौलाना फयाज अहमद ज़रू, पेशकश सलीम एजाज कपड़ा।

0: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں، میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمن صبح کے 8 بجنے والے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں آکاشوانی دلی سے آپ ہندی میں سماچار سنیں گے۔
1: نمسکار، آکاشوانی سے سماچار پربھات کے ساتھ میں فرحت ناز۔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईजी के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईजी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के 2 तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है।

0: वे भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल डीजल सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस

0: वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस, ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा

0: अच्छा असर राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने एक खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चार धाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सालों का तजुर्बा, मियारी नशरियात की रवायत
3: और आपके एतमाद का नाम आकाशवाणी श्रीनगर,
2: अब एक नए अंदाज में।
4: आग लगे इस आंगन को,
3: हर सुबह मालूमात, रहनुमाई और बेहतरीन पेशकश के साथ सुनते रहिए
2: पयामे सुबह। मॉर्निंग लाइव शो
3: आकाशवाणी श्रीनगर से हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
2: पयामे सुबह।
5: लाइव शो पयामे सुबह आप सुन रहे हैं परवेज मीर और मेरे साथ हैं
6: रिफत आरा। जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2 103.5 MHz पर और मीडियम वेव 268.81 मीटर। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। लाइव मॉर्निंग शो, इस शो में हमारी कोशिश रहती है कि आप तक बहुत ही अच्छी जानकारी पहुंचे, अच्छी मौसीकी आप तक पहुंचे, ताकि आप एंटरटेन हो जाएं। और आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आज 10:30 से 11:30 तक हमारे साथ मेहमान रहेंगी राफिया रसूल साहिबा, जो कि एक जर्नलिस्ट है, कार्टूनिस्ट है और अफसाना निगार भी है, राइटर भी है। बहुत ही अच्छी नॉवल जो कि मंजरे आम पे आई और बहुत ही नाम कमाया उस नॉवल ने, उनके साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप भी सुनना मत भूलिएगा 10:30 से 11:30 तक
5: जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइव शो पयाम सुबह जारी है।

0: तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, किशोर कुमार की मधुर आवाज।
1: जी हाँ परवेज, ये नगमा सुन के ना दिल को बड़ा सुकून आता है। देखिए कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के नहीं होते हैं, लेकिन खून के रिश्तों से कहीं कहीं बढ़ के मिसालें हमें मिलती हैं।
0: सही बात है।
1: कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो दोस्ती के रिश्ते होते हैं
0: जी,
1: जो दोस्त पर सब कुछ लुटा देते हैं।
0: हाँ, एक एतबार की ऐसी हद होती है कि कोई भी बात जो आप अपनों से, अपने खूनी रिश्ते से शेयर नहीं कर पाते हैं, वो बात बिला झिझक आप अपने दोस्त से दिल खोल के करते हैं।
1: तो अच्छा पता बेचने ये आकत के अगर इस पन्नस बेन ब्राइस सितन या वालिदन सुचु रिश्ता आक अल्लाह तलहन बनो।
0: बिल्कुल।
1: आप मुझे मजहब इसका कह दे, अगर दोस्त है आपका तो वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, लेकिन आपके इतने करीब आ जाता है कि आप हर एक दिल की बात शेयर करते हो उनके साथ, और आपको ये भी महसूस नहीं होता है कि उनके साथ जो चीजें आप शेयर करते हैं, पैसा शेयर करते हैं, बातें शेयर करते हैं, ये एक लगाव, अलग सा लगाव, ये एक इतना प्यारा रिश्ता है। अगर हम इस रिश्ते को सही से निभाएं ना तो जिंदगी आसान हो जाती है।
0: शायद सब रिश्तों पर ये सबकत ले जाता है।
1: बिल्कुल भारी
0: और
1: है।
0: रिफत जी, ये भी देखते हैं कि जो दोस्ती की बात आपने छेड़ी कि ये याराना जो है ये दोस्ती है, ये एक ऐसा ट्रस्टवर्दी रिश्ता है कि हम बात करने से पहले ये सोचते भी नहीं है कि जिस दोस्त से हम बात शेयर कर रहे हैं क्या ये इस बात को राज रख भी ले या ना भी रख ले, क्योंकि ये एतबार की एक हद होती है।
1: बिल्कुल।
0: और वालिदैन जो हमारे हैं, भाई बहन हैं, अपने जो

0: नहीं रिश्ते हैं जिनके जिनका जिक्र आपने किया है, उनमें हम एक चीज हमेशा ये सोचते हैं बात करने से पहले कि एक लेवल है, एक लिमिट है जिसको हमें क्रॉस
1: नहीं कर सकते
0: हैं। लेकिन दोस्ती में ये चीज नहीं देखी जाती है।
1: सही कहा आपने, दोस्ती का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है और इसे निभाना ये एक अलग सी बात है। अब कौन कितना निभा पाता है, लेकिन है ये एक सुकून वाला रिश्ता जहाँ आप सुकून हासिल करते हैं। देखिए कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो बचपन से हमारे साथ चलते हैं, अगर हम स्कूल की बात करें फिर कॉलेज की बात करें, बदलते रहते हैं दोस्त हमारे, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बचपन से हमारे साथ चलते हैं और जिन जब आप खुद वालिदैन बनते हैं तो वो रिश्ता कायम रहता है।
0: सही बात है रेखा जी। एक बात आप बात कर रहे थे, बीच में मुझे बात याद आ गई कि जो दोस्ती का रिश्ता है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये दोस्त आपका जो है आपके प्रोफेशन से बिलोंग करता हो, आपकी किसी और चीज से बिलोंग करता हो जिसकी आप जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। ये कोई ऐसा शख्स भी होता है कि मान लीजिए कोई एक इंसान जो है ये प्रोफेशनली एक अच्छी लेवल पर है, लेकिन इसका दोस्त ऐसा होता है जो किसी पेशे में नहीं होता,
1: बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल होता,
0: बिल्कुल तो लेकिन ये बंदा जाके अपने अपना काम करके उस बंदे को ढूंढता है, वहां जाता है, उससे बात करता है और अपने जो दिल पे सो बोझ सा लगा रहता है वो उसके साथ बिल्कुल उसे देख
1: शेयर करके दूर हो जाता है।
0: बिल्कुल सही बात है और ये एक ऐसा ही कनेक्शन है जो बात आपने छेड़ी है, बल्कि मैं कहूं कि आपने दिल के तारों को जरा सा छेड़ा है कि दोस्ती में ये सारी चीजें होती रहती है और होना भी चाहिए।
1: सही कहा आपने।
0: तो पैम सुब जारी है, एक नगमे के लिए जा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें, इज्जत फिल्म का नगमा है
1: जी।

0: जी रिफत जी, आप नगमा सुनते सुनते पता नहीं कहाँ खो गई, और लता मंगेशकर और साथियों की खूबसूरत आवाज है।
1: जी जी, लता जी की आवाज में खो गई, कोयल जैसी आवाज लता जी की।
0: सही बात है, और जब भी सुनते हैं ना एक अलग सा टेस्ट आता है।
1: क्या बात है।
0: और यहाँ घड़ी का इशारा है कि आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन होगा, हम उसे रिले करेंगे थोड़ी ही देर में। और दोस्तों को बताना चाहेंगे कि लाइव मॉर्निंग शो जो है वो जारी है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, खबरों के उस पार और भी बातें होंगी। फिलहाल आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन।
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अलावामी मैच बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। सरबरा सतह के मुज़ाकरात दोनों फरीकों को इस बात का मौका फराहम करेंगे कि वो अपने तमाम बाहमी तआवुन का जायज़ा लें और उन्हें मुस्तहकम करें। साथ ही साथ आपसी मफादात के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची के दरमियान बातचीत के बाद कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जापान की वज़ीर-ए-आज़म भारत के 3 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची का भारत का ये पहला दौरा है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को आगे ले जाने में अहम कदम है। हमारे नामा निगार ने इतला दी है कि इक्तसादी सलामती के ताल्लुकात का एक कलीदी सुतून समझा जा रहा है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: नवंबर 2024 में टोक्यो में हुए पहले इक्तिसादी सलामती मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने कलीदी इश्तराक के लिए तरजीह शोबों के तौर पर 5 शोबों की निशानदेही की थी। इन शोबों में सेमीकंडक्टर्स, अहम मादनियात, दवासाजी, साफ तवानाई और इत्तलात व मवासलाती टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इन आला सतही सियासी मुसफियात से भारत जापान ताल्लुकात की अक्कासी होती है। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू की थी। इससे पहले दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता साल नवंबर में जोहान्सबर्ग में G7 समिट

0: मौके पर मुलाकात की थी। बाहमी सतह की सालाना सरबरा मीटिंग शराकत दारी के करीबी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफार्म है। 2025 में सालाना समिट के दौरान जापान भारत के दरमियान इंसानी वसाइल के तबादले और तवाउन के लिए एक एक्शन प्लान शुरू किया था, जिसमें दोनों मुल्कों की तरफ से भारत से जापान के लिए 50,000 हुनरमंद और नीम हुनरमंद अमले समेत 5 साल में 5,00,000 अमले का तबादला का मंसूबा है। सालाना समिट के अलावा वजीर खारजा, वजीर दिफा, NSA, खारजा सेक्रेटरी और दीगर सतहों पर भी आला सतह के तबादले और मीटिंगें बाकायदा तौर पर होती रहती हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाए ताकाइची के साथ आज वसीतर उमूर पर तबादले ख्याल के मुंतजिर हैं, जिससे भारत और जापान के दरमियान खुसूसी कलीदी और आलमी शराकत दारी को मजीद वसत मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जापान की वज़ीर-ए-आज़म के भारत दौरे पर उनकी मेज़बानी करना उनके लिए बायस मसरत होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मोहतरमा ताकाइची की मुश्तरक कोशिशों के जरिए भारत और जापान भारत बहरुल काहल और उससे आगे भी अमनो इस्तेकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर शरह सूद 8.25% रखने से मुतालिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। EPF स्कीम 1952 पर मेहनत और रोजगार की वजारत की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद इस शरह सूद का ऐलान किया गया है। EPFO ने अपने इलाकाई और जोनल दफातर को हिदायत दी है कि वो अराकीन के EPF खातों में मंजूर शुदा शरह के मुताबिक सूद की रकम मुंतकिल करे। हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। जराए ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: ज़राए ने बताया कि वजारत ने व्हाट्सएप की जानिब से किए गए अवामी ऐलान को नोट किया है, जिसके तहत व्हाट्सएप ने भारत समेत आलमी सतह पर यूजर नेम फीचर का मरहलेवार तरीके से आगाज किया है। व्हाट्सएप ने बताया कि यूजर नेम फीचर के फ़ाल हो जाने के बाद पैगाम भेजने वाले का मोबाइल नंबर पहली मरतबा राबता करने वाले शख्स को नजर नहीं आएगा और इख्तियारी यूजर नेम की इजाफी कंट्रोल के लिए सेट की जा सकती है। ज़राए ने बताया कि इस बारे में तशवीश है कि यूजर नेम फीचर के जरिए ऑनलाइन धोखाधही, जालसाजी, डिजिटल गिरफ्तारी जैसे मामलों और जाली शनाख्त जाहिर करने जैसे जराइम में इजाफा हो सकता है। इस बारे में भी तशवीश है कि यूजर नेम फीचर जाली शनाख्त जाहिर करने और खुद को कोई और जाहिर करने जैसे मामलों को बढ़ावा देगा। ज़राए ने मजीद बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने मेटा को यह भी हिदायत दी है कि वो इस मामले पर मुशावरत खत्म होने से पहले यूजर नेम फीचर की शुरुआत ना करे। नई दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा में फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है, जो कौमी राजधानी में हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
0: दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि नया फ्रेमवर्क आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक मौजूदा इकदामात को जवाबित के वाहिद सेट के तहत यकजा करेगा और हर मौसम सरमा में अलग अलग अहकाम जारी किए बगैर इन जवाबित के बरवक्त निफाज को यकीनी बनाएगा। ये नोटिफिकेशन हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन CAQR के नज़रसानीशुदा GRAP रहनुमा खतूत और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को भी यकजा करता है। नए जब्तों के मुताबिक मजाज पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों को पूरी दिल्ली में साल भर पेट्रोल पंप, CNG और LPG स्टेशनों पर ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली से बाहर रजिस्टर BS6 इखराज से कम दर्जे की गाड़ियों का दिल्ली में दाखला ममनू रहेगा। न्यूज डेस्क से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: हुकूमत ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री को अगले साल 14 जुलाई तक 1 साल की तौसी दे दी है। जनाब मिस्री ने 15 जुलाई 2024 को खारजा सेक्रेटरी की हैसियत से ओहदा संभाला था। वो जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारत के सफीर रहे हैं।

ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोजा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के दो रास्तों से शुरू हो गई है, जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। यात्रियों का पहला जत्था सख्त सिक्योरिटी के दौरान आज सुबह सवेरे जम्मू से रवाना हुआ। यात्रा अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर, रिवायती नुनवन, पहलगाम और गंदरबल जिले में 14 किलोमीटर बालतल रास्ते से शुरू हुई। सीसीटीवी कैमरे और आरएफआईडी ट्रैकिंग रास्तों पर कसीर सती सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। यात्री जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH44 पर सफर करेंगे। यात्रा ट्रैफिक के लिए मुगल रोड और धार रोड जैसे मुतबादिल रास्तों पर सख्त ममानियत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों पूरी तरह से सरगर्मी से जारी हैं। तकरीबन 4 लाख यात्रियों ने यात्रा के शुरू होने से पहले ही अपना इंदराज कराया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे ने अगले 2 दिन तक साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने मजीद कहा कि अगले 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। इस दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। केरलम के ज्यादातर हिस्सों में आज बारिश के कमजोर होने की तवक्को है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि केरलम के कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के अलावा तमाम जिलों में बारिश की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। कन्नूर और कासरगोड, जो कि गुज़िश्ता 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट पर थे, आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महकमे ने कोझिकोड जिले के लिए बदस्तूर येलो अलर्ट बरकरार रखा है। सीबीआई ने डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी केस में गुजरात के राजकोट से हरियाणा के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा है कि डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी के तहत एक खातून मोहम्मद शहरी को 2 मुख्तलिफ बैंक खातों से 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया था। शिकायत के मुताबिक मुतासर खातून को उन नामालूम अफराद की जानिब से धमकी भरे फोन कॉल मौसूल हुए थे, जो खुद को सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी अफसरान के तौर पर जाहिर कर रहे थे। फोन करने वाले नामालूम अफराद ने झूठे दावे किए थे कि खातून मोहम्मद शहरी के बैंक खाते को दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उस मोहम्मद खातून को गिरफ्तारी और उनकी जायदाद जब्त करने की धमकी दी गई थी। अपने दावों को मोतबर साबित करने के लिए उन्होंने एक फर्जी कुर्की का हुक्म भी भेजा। तहकीकात के दौरान मजाज अदालत से जरूरी अहकाम हासिल करने के बाद मुतासर खातून को 2,65,000 रुपये रिफंड भी किए गए थे। सीबीआई ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो धोखाधही पर मबनी सरकारी सरमायाकारी स्कीमों, कानून नाफिज करने या रेगुलेटरी एजेंसियों और डिजिटल गिरफ्तारी घपलों के नाम पर की गई फर्जी कॉल समेत साइबर धोखाधही के खिलाफ चौकन्ना रहें। ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसकारों के जरिए जारी बिलवास्ता मुजाकिरात कल दोहा में खत्म हो गए। खतर की हुकूमत की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस महीने की 9 तारीख को ईरान के साबिक रहबर आला अली खामिनाई की आखिरी रसूमात के बाद मुजाकिरात जारी रखने से इत्तेफाक किया है। मीडिया के अफराद से बात करते हुए अमरीका के नायब सदर JD Vance ने बताया कि दोहा मुजाकिरात खुश असलूबी से जारी हैं। कुछ तकनीकी सतह पर बातचीत पहले से ही जारी है। उन्होंने कहा कि अगले मरहले की बातचीत के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई के बाद मुजाकिरात एक मुस्तहकम मौकफ के साथ किए जा रहे हैं। फीफा आलमी कप में बेल्जियम इजाफी वक्त में सेनेगल को 2-3 से हराने के बाद नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। इस तरह वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। प्री क्वार्टर फाइनल में अब बेल्जियम का मुकाबला अमरीका या बोस्निया हर्ज़ेगोविना मैच के फातह से होगा। मर्दों के क्रिकेट में कल रात चेस्टर ली स्ट्रीट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अल-अक़वामी मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 47 गेंदों में 68 रन बनाए।

0: किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं। मुतासरा आबादी के लिए फौरी अलर्ट जारी।
1: जम्मू कश्मीर की काबीना में नए वजीरों को शामिल करने की तैयारियां। स्टेट हुड की बहाली के लिए नई दिल्ली में एहतजाज से कबल ऐलान मुतवक्का।
0: मूसलाधार बारिशों के बाद गोरी डुरमन लारनू में अचानक सैलाब। स्कूल में फंसे तलबा को महफूज निकाल लिया गया।
1: वजीर आजम का डिजिटल इंडिया के 11 साल मुकम्मल होने का खैर मकदम। फ्लैगशिप इकदाम ने अवामी खिदमात की फराहमी में इनकलाब बरपा कर दिया।
0: अखबारात लिखते हैं, डिक्सम के जंगलाती इलाके में पैर फिसलने से एक शख्स जहां बहक, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर आज पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर ट्रैफिक को मुनज्जम रखने के लिए सख्त हिदायत जारी।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तवी आरती और लाइट एंड साउंड शो का इफ्तिताह किया। श्री अमरनाथ यात्रा को नज्म जब्त और रूहानी बेदारी की अलामत करार देते हुए मुल्क भर के अकीदतमंदों को इस मुकद्दस सफर में शिरकत करने की दावत दी।
1: 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी का ऐलान। 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई।
0: अखबारात लिखते हैं, एयर मार्शल दीक्षित ने फजाए के नायब सरबरा और लेफ्टिनेंट जनरल जैन ने आर्मी के नायब सरबरा का अहदा संभाल लिया।
1: बड़गाम में बस हादसे में 25 सवारियां जख्मी हो गई, ड्राइवर भी घायल। पटन में 3 गाड़ियों में टक्कर, 5 मुसाफिर जख्मी।
0: शुमाली हिंदुस्तान की कई रियासतों में 6 जुलाई तक शदीद बारिश का इम्कान। गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात।
1: सतह समंदर से तकरीबन 2500 मीटर बुलंद गुलमर्ग में नया ट्रैफिक निजाम। ताक और जुफ्त ऑड एंड इवन के तहत आमदरफ्त की इजाजत।
0: दिल्ली में आलूदगी से निमटने का मास्टर प्लान नाफिज। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक पार्किंग फीस दोगुनी होगी।
1: कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर की जायदाद जब्त।
0: तो ये थी मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बाइख्तियार डीलर। कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।

0: लाइव शो पे हम सब आप सुन रहे हैं भूपिंदर और मिताली सिंह की मिली जुली आवाजें आप सुन रहे थे। घड़ी का इशारा है, खबरों के लिए जाते हैं। पहले कश्मीरी में, उसके फौरन बाद उर्दू में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, आकाशवाणी श्रीनगर, सुबह 9:00 सपित कृष्ण खबरों बुलेटिन सारा अख्तर। सालानी श्री अमरनाथ जी यात्रा हिंदी सिलसिलस में कौर यात्रियों हूं गोडन कैफला आज सुबह सुले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब के भगवती नगर बनेरी कैंप पे जिन्हें रवाना अत कैफलस में कुल 4,800 यात्रियों पे मुश्तमिल 3,707 मर्द तो 8,14 खवातीन शामिल। 127 गाड़ियों में सवार 2,332 यात्री बालतल ये जन 72 गाड़ियों में सवार 2,510 यात्री पहलगाम बापत रवाना सपद मित अत मौक पे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा श्री अमरनाथ जी यात्रा अजीम रूहानी सफर तो अमि बाप तुलना आमुत प्रेथ कदम बाबा अमरनाथ मजबूत एतिकाद अक्सी कर तमो वावि यात्रियों हिंद बाप नेक ख्वाहिश अम ब्रो तुल लेफ्टिनेंट गवर्नर राजमी यात्रियों हिंद इस्तकबाल बाप मुनद कर आमतिस तवी आरती तो लाइट एंड साउंड शो दास अत मौक पे वो एल जी एन जी श्री अमरनाथ जी यात्रा मुख्तलि जबान सकाफतन तो रवायतन सलुक थवन वाले लूकन इकवट कर एतकाद किस अक्सी बंधन मोड़न जरिया।
2: हम पूरी दुनिया को यह संदेश दे मिल करके भारत की पहचान में उसकी प्राचीन संस्कृति, उसकी सेवा परंपरा, अतिथि सत्कार और मानवीय संवेदनाओं का बड़ा भारी योगदान है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा भारत की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा का एक उज्ज्वल प्रतीक और हमारी आध्यात्मिक विरासत तथा उसके मूल्य आज भी संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए। इस पावन अवसर पर मैं ऐसे जम्मू शहर की कल्पना करता हूँ जहाँ पवित्र नगरी विश्व स्तर पर आध्यात्मिक पर्यटन सांस्कृतिक अध्ययन और मानवीय मूल्यों के प्रमुख केंद्र में स्थापित हो। मैं ऐसा तभी रिवर फ्रंट देखना चाहता हूं जो पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और मॉडर्न अर्बन प्लानिंग का एक उदाहरण बन सके। ऐसा स्थान जहां प्रकृति, संस्कृति और आधुनिक सुविधाएं एक दूसरे के पूरक बनकर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करें।
1: हपर हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रात भगवती नगर जमी यात्री निवास दौर कर श्रद्धाल हिंद बाप कर आमत इंतजाम जायजा तमो दुतल अफसर हदायत जम लगन तमाम वसील काम तो बनवि यह कथ यकी जात्रियों गुन कस्म कह मुश्किल वतरुन पे तद जवंजा दोहन यात्रा वात 28 अगस्त आंद यपर हूँ डिवजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग रात नौगाम रेलवे स्टेशन सत चौक यात्रा ट्रांजिट कैंप तो यात्री निवास दौर कर श्री अमरनाथ जी यात्रियों हिंद बापत कर आमत इंतजाम जायजा तमोन बडगामिक तो श्रीनगर जिले इंतजाम यात्रियों हिंद सहूलत बापत तमाम इंतजाम मुकम्मल करम। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जमिक सबक सदर एडवोकेट विक्रम चौधरी को रात लोक भवन जमिस मज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मुलाकात। वजीर अजम नरेंद्र मोदी कर आज नवी दिल्ली में पन्ने जापान के मनसब सनाई तकाई ची सालाना समिट सत्रच कतबात सपद दुशवी मुल्कन दरमियान रिश्ते नवे थजरन तम वातन तो इलाकई तो आलमी नवीत कें बाहमी मामलन पे ख्याल बात कर मौका फराहम कतबात पत्

सनाई तकाईची के साथ सालाना समिट सतह की बातचीत करेंगे। बातचीत से दोनों मुल्कों के माबेन रिश्तों को नई बुलंदियों तक ले जाने और इलाकाई व आलमी नौवियत के बाहमी मामलों पर तबादले ख्याल करने का मौका फराहम होगा। बातचीत के बाद मुतअद्दिद मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। वाज़ेह रहे कि जापान की वज़ीर आज़म कल शाम भारत के 3 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इतू ने कल बिमना में बच्चा अस्पताल का दौरा करके वहां मरीजों के लिए दस्तियाब तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी कि वो मरीजों और तीमारदारों को आला मैयार की सहूलियात दस्तियाब रखें। उन्होंने डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टरों और तिब्बी अमले को मुबारकबाद दी। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कल एक मीटिंग में बड़गाम जिले में RRB महकमे की तरफ से दरदस्त लिए गए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो बिला किसी ताखिर के तमाम प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाए ताकि बुनियादी सतह पर आम लोग इन प्रोजेक्टों से इस्तेफादा कर सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत के मुनसिफाना तसरुफ को यकीनी बनाते हुए

0: ने जल शक्ति महकमे की सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हाइड्रोलिक सेंट्रल श्रीनगर अमरीन अंजुम की नोटिस में लाया तो उन्होंने कहा,
1: जी इसमें मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगी। पहला ये कि इस टाइम पे हमें एज सच रॉ वाटर या पानी का पीछे से कोई कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे दो जो मेजर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, एक है रंगील वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और है दूधगंगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इन दोनों में ही डिसरप्शन देखने को मिली। तो जो रंगील का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ पर हमारी सासगरीपोरा में मेन चौक में हमारी 450 mm डाया की लीक हो गई थी पाइपलाइन किसी वजह से, जिसको हमें ऑलमोस्ट इमरजेंसी बेसिस पे रिपेयर करके पीडीडी का उसमें हमें ताउन रहा, उन्होंने शटडाउन फैसिलिटेट किया और 24 घंटे में हमने उसको रिस्टोर कर दिया, जिस वजह से डाउनटाउन के और कुछ इलाकों में ये डिसरप्शन हो गई पानी की। दूसरा जो हमारा दूधगंगा का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां का जो हमारा ट्रांसफार्मर है जो लिफ्ट स्टेशन पे लगा हुआ है, जो वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसको रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लग गया, जिससे हमारी जो लिफ्ट करने की कैपेसिटी थी वो थोड़ी कम हो गई, जिससे हमारे टेल एंड्स पे कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला। दूसरा उसके अलावा ये बात है कि क्योंकि गर्मी का मौसम है और पीक इरिगेशन सीजन भी है, तो इस वजह से लोगों का जो टेंडेंसी रहती है वो पानी का इस्तेमाल करने की ज्यादा रहती है, डिमांड इसमें बढ़ जाती है। अब ड्रिंकिंग वाटर या जो नॉर्मल डिमांड है वो तो हम आराम से पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने किचन गार्डन्स में या गाड़ियां या कश्मीर में यहाँ पाथ जो होता है गेट टू ये एंट्रेंस, उसको धोने का काफी यहाँ पे चलन रहता है, तो जिस वजह से लोग अननेसेसरी पानी का ज्यादा इस्तेमाल करके जो टेल एंड के एरियाज होते हैं उनको उससे वाटर स्कैर्सिटी का ये फील हो जाता है। अदरवाइज पानी की कोई कमी नहीं है, वी हैव सफिशिएंट वाटर अवेलेबल विद अस, डिमांड इंक्रीज हो चुकी है, बट वी आर इन अ पोजीशन टू केटर दिस।
2: अमरीन जी, वांगुड तेलबल एक इलाका है, वहाँ की वाटर सप्लाई स्कीम वहाँ के लोगों ने कहा है कि अगरचे वो मुकम्मल हो गई है लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई है।
1: देखिए तेलबल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, हमने रिसेंटली वहाँ पर एक वाटर सप्लाई स्कीम का इनॉग्रेशन किया जिसमें हमने ट्यूबवेल के जरिए उनको पानी पहुंचाया, जो रिसेंटली हमने इनॉग्रेट की, जिससे काफी कुछ इलाके हैं, खुशीपोरा है और भी कुछ इलाके हैं, उनको हेल्प हुआ। हाँ, ये जो तेलबल वांगुड का आप जो आप कह रहे हैं, इसका भी हम कमिशनिंग जल्द ही करेंगे ताकि वहां का जो पूरा वाटर स्कैर्सिटी का इशू है बिल्कुल खत्म ही हो जाए। और गासू में भी हमारी एक ट्यूबवेल सप्लाई स्कीम चल रही है जो उस एंटायर बेल्ट को ही बूस्ट करेगी और पानी का उसमें होपफुली हम जल्द ही वो कंप्लीट करके उनको वो इशू रिजॉल्व कर पाएंगे।
2: शहर के कुछ इलाकों से हमें शिकायत मौसूल हुई है कि उन्हें नल के जरिए जो पीने का साफ पानी मुहैया होता है वो पीने के लायक नहीं है, नाकाबिले इस्तेमाल है, उसमें कुछ गंदगी पाई जाती है।
1: देखिए इसमें मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर कहीं पर भी किसी भी कंज्यूमर को कोई शिकायत है पानी के क्वालिटी के लिहाज से, तो वो अर्जेंटली हमारे 24/7 कंट्रोल रूम पे उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि ये इशू लोकल हो सकता है, कहीं लोकल कंटेमिनेशन ड्रेनेज की वजह से हो सकती है। बाकी ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है, सिनेरियो है, हमारा एक रोबस्ट सिस्टम है जिसमें पानी की पहले फिल्ट्रेशन, पूरी सफाई होती है IS 30500 स्टैंडर्ड के हिसाब से, हमारी टेस्टिंग होती है, उसके अलावा हमारे कंज्यूमर एंड पे या हमारे प्लांट्स में जो डेडिकेटेड लैब्स हैं हर लेवल पे मल्टीपल टेस्टिंग होती है, और पानी तभी लोगों को हम डिलीवर करते हैं या तभी उसको हम अपने प्लांट से उसको रिलीज करते हैं जबकि हमें पहले पूरी टेस्टिंग उसकी कंप्लीट करती है, और ये टेस्टिंग डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे चलती है। कंज्यूमर एंड्स पे भी हमारे फील्ड के टेस्ट होते हैं, वो हम करते हैं। हाँ, अगर कहीं शिकायत है, काइंडली उनसे मेहरबानी करके दरख्वास्त करूंगी कि वो प्लीज हमारे 24/7 कंट्रोल रूम पे या हमें राबिता करें, क्योंकि वो हमें चेक कराना पड़ेगा और हमें कुछ लोकल प्रॉब्लम हो सकती है वहां पर, तो वो हम रिस्टोर कर देंगे। अदरवाइज पानी ओवरऑल देखा जाए, इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग कंप्लीटली एज पर द रिक्वायर्ड BIS स्टैंडर्ड्स।
2: हर घर नल से जल, ये जल शक्ति महकमे की एक इम्पोर्टेंट स्कीम है, श्रीनगर में इसकी क्या पोजीशन है इस वक्त?
1: देखिए हर घर नल से जल जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये JJM की स्कीम है जो कि रूरल एरियाज के लिए है। श्रीनगर में जो हमारे रूरल एरियाज है वहाँ पर हमारी दो स्कीमें थी, पोषपथरी और अपारपोरा बालहामा, वो दोनों स्कीमें कम्प्लीट है, हर घर जल सर्टिफिकेशन भी हो चुकी है। जहाँ तक श्रीनगर अर्बन का ताल्लुक है तो यहाँ पर हमारी जो अमृत की स्कीम है इस टाइम पे फुल स्विंग में चल रही है, दो हमारा श्रीनगर का मैं कहूंगी 95% से भी ज्यादा कवरेज है। अगर कहीं कुछ बैलेंस हमारा FHTC या हाउस टैप कनेक्शन कहीं भी पेंडिंग है तो वो हमारे अमृत में कवर होंगे। मोरओवर अमृत में हमारे पैरामीटर्स जो होते हैं, जो मैं टेल एंड की बात कर रही थी जहाँ पे प्रेशर कम होता है, सो वहाँ पर प्रेशर का इशू रिजोल्व हो जाएगा और एक इक्विटेबल उसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी ताकि टेल एंड एरियाज को भी कोई शिकायत ना हो। मोरओवर हमारे 14 नंबर OHT जो है उनका काम चल रहा है, उसके अलावा टोटल श्रीनगर में जो है 20 प्रोजेक्ट अमृत के अंडर है जिनका काम फुल स्विंग में चल रहा है, होपफुली इसी साल में हम उनको कंप्लीट करेंगे जिसमें क्वालिटी क्वांटिटी दोनों के इश्यूज जो हैं वो एड्रेस हो जाए।
2: अमरीन जी, आपने अभी जिक्र किया कि लोग पानी का गलत भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाड़ियां धोने में, बागात की सिंचाई करने में, तो एक मैसेज दीजिएगा आम लोगों के लिए।
1: मेरे सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी

0: कि गर्मी का मौसम है, हम समझ सकते हैं डिमांड ज्यादा है, लेकिन जो पीएचई आपको पानी सप्लाई कर रहा है 135 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से या उससे भी ज्यादा हम सप्लाई दे रहे हैं इस टाइम, उसका मेहरबानी करके गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जैसे ही आप इस पानी का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि ड्रिंकिंग पर्पसेज, वॉशिंग पर्पसेज या खाना बनाने के लिए है, जब ये आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो टेल एंड के जो एरियाज हैं, जो आपके बाद पानी जिनको पहुंचता है, वो लोग काफी क्राइसिस में आ जाते हैं, उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये अननेसेसरी पर्पसेज के लिए पानी का इस्तेमाल ना करें, वो जो इरिगेशन के लिए भी जो ये पानी है ये इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे आपके किचन गार्डन की सिंचाई है, आपके बाग की सिंचाई है, या गाड़ी धोना है, या पाथ को धोना है, या ऐसे कुछ एक्टिविटीज है, मेहरबानी करके ये इससे रेस्ट्रेन करें, पानी का सही इस्तेमाल करें, जुडिशियल इस्तेमाल करें, ताकि पानी जो है वेरी कहूंगी नायाब एक हमारे पास रिसोर्स है जो हर किसी तक पहुंच जाए। और पानी रिप्लेनिशेबल एज सच नहीं है, हमारे यहाँ अभी सर्कुलर वाटर इकोनॉमी भी नहीं है कि हम जो इस्तेमाल किया हुआ पानी है उसको रीयूज करें, अभी हमारे यहाँ पे इतना सिस्टम डेवलप नहीं है, तो इस वजह से हमें पानी को सेव करना चाहिए, पानी को जुडिशियसली इस्तेमाल करना चाहिए।
1: अमरीन अंजुम साहिबा, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के प्रोग्राम शहर शहर मंजर के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।
2: सामईन, कुलगाम जिले के कई इलाकों में भी लोगों को इस तरह की मुश्किलात दरपेश हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू की ये रिपोर्ट।
3: कुलगाम जिले के काजीगुंड इलाके के तकरीबन नसब दर्जन देहात पिछले कई सालों से पीने के पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के बढ़ते हुए खदशात के दरमियान रिहायशियों को नदी नालों के आलूदा पानी पर इंहसार करना पड़ रहा है। वाइकेपोरा, बागपोरा और चुरट और मुल्यका देहात के रिहायशियों ने कहा कि पीने के साफ पानी तक रसाई की कमी सेहत आमा की एक बड़ी तशवीश बन गई है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि हुक्काम को बार बार आगाह करने के बावजूद भी मसला हल नहीं हुआ। मुकामी लोगों ने कहा कि ज्यादातर घरानों के पास करीबी नदियों से पानी लाने के सिवा कोई चारा नहीं है, जो अक्सर आलूदा और इस्तेमाल के लिए गैर महफूज होता है। मुकामी लोगों का कहना है,
4: मैचना बिस्मा जान तो रोजन चुरठ तो बेसिक फैसलिटी नीड्स तम बिल्कुल कुन नजरे ग सारे खोत त्रेश तो यह कुन अगर तुम वो हर वक्त अमिश प्रॉब्लम ये तो अम पे डिस्पेंसरीज ये दो बड़ हॉस्पिटल दिन ये तम तुन मतलब ननी हज बाकी रोड लिंक रोड गली कोय बाकी ड्रेन वेन कुन ये मतलब बेसिक फैसलिटी बाकी विलेजन मन तम नजर नजर
3: गंकस
4: बहजन प गर्च हालत कि पत्क नार तक आब कतरा कतरा वसान तो रूद पे तक सह आब कतर वसान अस मोटर थे गरवाल तो सूचे खारा तथ मैं गरवाल ड्रेन तम तथ डायपर वायपर तम तथ मावान तो अम नबर वे ज्यादा अस कल गान आब बात चीज पे अनान दूर दूर पन्न गाड़ियों मजने कैन मज नटन वटन बाल्टियन मे तो सूचाल करान।
5: मैं एक चुरट का रहने वाला एक बाशिंदा हूँ। जो प्योर वाटर फैसिलिटी वो भी नहीं है, अगर हॉस्पिटल की बात करें वो भी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी अभी अच्छी नहीं है, कॉमन सिटीजन को जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अभी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज है, इतना ज्यादा देश आगे तरक्की कर रहा है, लेकिन जहां पे अभी पीने का पानी मैसर ना हो तो आप लोग सोच सकते हो कि वो लोग किस चीज से अभी गुजर रहे होंगे।
6: मेरा नाम डॉक्टर सोहेल अहमद भट्ट है, मैं चुरट का एक बाशिंदा हूं। तो हमारे गांव में पीने की पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, तो यहां पर हमें गंदी नालों का पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है। बदकिस्मती की बात ये है कि हमारे बच्चे बीमार पड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा मोहलिक बीमारियां हमारे गाँव में पाई जाती है, थ्रोट इन्फेक्शन और जो ऑलरेडी स्टोमक की प्रॉब्लम वो हमेशा लगी रहती है।
3: इस हवाले से जब ये शिकायत AEE काजीगुंड इरशाद अहमद वानी के साथ उठाई गई तो उन्होंने कहा,
7: चुरट जो है ये मेरे ज्यूरिडिक्शन में आता है। चुरट जो है इनको है शॉर्टेज, उनको पानी का है किसी हद तक। इनको स्कीम हमने बना के दिया था JGM में, उसका सोर्स प्रोडक्शन वेल रखा गया था क्योंकि आसपास इनको किसी जगह स्प्रिंग वगैरह पॉसिबल नहीं था। तो प्रोडक्शन वेल, लेकिन उसकी जब टेस्टिंग हुई तो प्रोडक्शन वेल में अमोनिकल नाइट्रेट निकला है, दैट्स वाई वो प्रोडक्शन वेल पॉसिबल नहीं है, वो पानी उनको दे देना। इसके साथ साथ दो तीन गांव ऐसे हैं कि जिनको हम प्रोडक्शन वेल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, लाइक प्रतापपुरा एक है और दो तीन गांव है जिनको कलेक्टिवली हम चाहते हैं कि उनको हम पानी कुटबल से दे, जो कुटबल से हम एक मेन ट्रंक मेन ला रहे हैं, बट उसका कॉस्ट जो है 12 करोड़ रुपीज लगती है। 7 स्कीम्स का हम क्लब करके एक ट्रंक में लाते हैं, वहां से उनको जो है पानी पिलाएंगे। अब रही बात जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको बाकायदा जो है स्लो सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट है, तो पानी जो है वो हम एक जगह पे

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे तक नश्र सदान बलि बोजो प्रोग्राम।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये प्रोग्राम प्रत दो आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तम नशर सपदान।

0: एक जामिया लाइव शो पयामे सुब,
1: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
0: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु। पयामे सुब
2: यारो वन बाजी यारो वन।
1: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से
0: मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर पयामे सुबह
3: सुनो सजना।
0: पयामे सुबह हमारी जिंदगी के लिए जरूरी मालूमात,
1: माहिरीन की आरा, तजुर्बात,

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशित सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: जहां जाएगा हमें पाएगा।
5: जी हां सामीन, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2 103.5 MHz पर, मीडियम वेव 268.8 मीटर पर, और इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि 10:30 बजे हमारे स्टूडियो में एक मेहमान होंगी जिनके साथ हम बात करेंगे। जी हाँ, हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है राफिया रसूल साहिबा, जो एक जर्नलिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं, अफसाना निगार हैं, एक राइटर हैं। हाई, इनसे बात करते हैं। बहुत ही कामयाब औरत और बहुत ही अच्छे मूड में, मुस्कुराहट के साथ हमारे साथ बैठी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राफिया साहिबा।
6: वालेकुम अस्सलाम।
5: पहले ये बताइए हाल चाल अपना, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं?
6: अल्हम्दुलिल्लाह।
5: ना यहाँ आने में कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं हुई?
6: बिल्कुल भी नहीं।
5: चलिए, आपका शुक्रिया कि आप आई सुबह सुबह हमारे कहने पर।
6: आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मधु किया।
5: और आज हल्की सी बारिश हो रही थी सुबह सुबह।
6: बिल्कुल, मौसम था।
5: मौसम बड़ा खुशगवार था। राफिया साहिबा, आप जर्नलिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं, अफसाना निगार हैं, राइटर हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं?
6: डलगेट में एक इलाका आता है बुछवारा, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है।
5: अच्छा,
6: तो
5: वहीं से हैं आप? ये बताइए तालीम कहाँ से हासिल की आपने?
6: इब्तदाई तालीम मैंने वुडलैंड साउथ स्कूल से हासिल की है।
5: जी जी।
6: उसके बाद हायर सेकेंडरी कोठीबाग और फिर ग्रेजुएशन वुमेन्स कॉलेज से।
5: जी, ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि घर का माहौल कैसा था, सपोर्ट मिला जो भी काम आपने किया?
6: काफ़ी सपोर्टिव रही है मेरी फैमिली।
5: अच्छा।
6: खासकर मेरे ग्रैंडफादर, उनका एक ख्वाब था कि हम अपनी पहचान बनाएं, सोसाइटी में हमारा नाम हो।
5: जी,
6: तो उनका ख्वाब किसी हद तक पूरा हुआ। उस बात की मुझे बहुत खुशी है।
5: क्या बात,
6: कि उनका ख्वाब मैं आज पूरा कर पाई।
5: बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जर्नलिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं, राइटर हैं, बहुत कुछ हैं आप, वो तो हम जानेंगे ही जानेंगे आपसे, लेकिन एक जहन में बात आ रही है यहाँ पे कि अक्सर जब हम मैट्रिक कर लेते हैं उसके बाद हमारे जहन में यही होता है कि अब हमने स्ट्रीम कौन सी पकड़नी है। स्ट्रीम पकड़ी तो ज़्यादातर हम मेडिकल में ही जाते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको कभी ख्याल नहीं आया कि डॉक्टर बनना है?
6: डॉक्टर ही बनना था। डॉक्टर ही बनना था, मेरी फैमिली की भी ख्वाहिश थी और खुद मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश भी थी कि

0: मैं डॉक्टर बनूँ।
1: अच्छा
0: फिर 10+2 हुआ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया लेकिन कामयाब नहीं हो पाई।
1: ओके
0: उस दौरान मैं फिर बीएससी में मैंने दाखला लिया,
1: जी
0: तो उस दौरान मैं पोइट्री लिखने लगी। पोइट्री के साथ साथ मेरी ड्राइंग अच्छी रही है, उसके साथ साथ मैंने कार्टून्स, लकीरें खींचना मैंने शुरू किया।
1: अच्छा
0: और फिर जो मेरी ये पोइट्री मैं लिखती थी, ये ग्रेटर कश्मीर और बाकी रोजनामों में पब्लिश होती
1: होती
0: गई।
1: थी भी
0: तो एक बार कार्टून्स मैंने ऐसी लकीरें खींची तो जो एडिटर साहब को बहुत पसंद आई, तो उन्होंने बोला ये पेपर में आएगा। तो मैं हैरान रह गई, मैंने कहा एक मामूली सी ड्राइंग मेरी तो इस मतलब हद तक जा सकती है कि पेपर में आएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप वीकली कार्टून्स बनाओ,
1: ओके
0: जो मेरे लिए उस वक्त नामुमकिन था, क्योंकि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी मैं, तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम था।
1: जी जी जी
0: तो उन्होंने काफ़ी हौसला दिया मुझे कि आप बनाओ, आप आज अगर वीकली बनाओगी, कल को आप डेली कार्टूनिस्ट खुद ब खुद बनोगी। और मैंने भी हिम्मत कर ली और मैंने भी कमर कस ली और मैंने कार्टून्स बनाए। मैंने कहा देखते हैं आगे क्या
1: क्या
0: रहता
1: होता
0: है।
1: है।
0: तो कार्टून्स मेरे वीकली आते थे और उसके बाद एक मतलब रूटीन सा बन गया। मैंने कहा जब वीकली आते हैं तो क्यों ना डेली ट्राई करें।
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: इस तरह से मैंने कार्टून्स की दुनिया में कदम रखा।
1: अच्छा, ये कार्टून बनाने का ख्याल आपको 12th के बाद आया, जब आप, या उससे
0: मैं
1: पहले, या बचपन में कभी ऐसा हुआ, कभी 5th 6th स्टैंडर्ड में आप थी तो आपने थोड़ा सा शौक पैदा हुआ?
0: ड्राइंग का शौक तो मुझे पहले से ही था। घर की वो कोई दीवार नहीं, वो कोई खिड़की नहीं, वो कोई दरवाज़ा नहीं जिस पे मैंने लकीरें ना खींची। तो मदर कभी कभी गुस्सा होती थी लेकिन फादर के ज़रिए मुझे पूरा सपोर्ट मिला।
1: क्या बात है।
0: तो शायद वही उसी बात ने एनकरेज किया और फिर मैंने कागज़ पे लकीरें खींचना शुरू किया,
1: अरे अरे क्या बात
0: जो
1: है।
0: अखबार तक आ गई।
1: बढ़िया, बहुत बढ़िया। मलेच्छा ना आसान, दरअसल कूट टट पान
0: बिल्कुल माचा सा गर
1: माचा सा गर
0: जाद वेगस ने
1: जाद
0: गरज गा सुन गई
1: बिल्कुल। तावे की ना सहती मन बासा की शम लाभ खराब
0: दारो
1: करन।
0: दीवार तो माँ ही
1: लेकिन
0: खूबसूरत
1: जो
0: बनाती है।
1: बिल्कुल जो वालिद का नज़रिया होता है वो बहुत बड़ा उनका एक विजन होता है,
0: जी
1: और जो बेटी के लिए वो सोचते हैं वो सबसे बेहतर होता है, सबसे आला होता है।
0: बिल्कुल
1: आपके साथ हम राफिया जी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक नगमा हो जाए और नगमे के उस पर आपसे और बात होगी।

0: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम पयाम सुबह, और आज हमारी जो मेहमान हैं वो हैं राफिया रसूल साहिबा, एक जर्नलिस्ट, कार्टूनिस्ट, अफसाना निगार, एक राइटर, एक कामयाब औरत, और बात इन्हीं के साथ हो रही है। राफिया जी, हम बात कर रहे थे आपके कार्टून की। जब पहला कार्टून आपने बनाया तो पहले किसको दिखाया?
1: पहला कार्टून जब मेरा बना तो वो मैंने अपने ग्रैंडफादर को दिखाया, और अच्छा। मुझे उतनी खुशी नहीं उस वक्त हुई जितनी उनको।
0: क्या बात।
1: तो वो सीधा वो कार्टून लेके बशीर साहब के पास गए, बीएबी
0: जी जी जी जी,
1: जो जानी मानी शख्सियत है।
0: बिल्कुल।
1: तो बोला देखो मेरी बेटी ने भी
0: कार्टून बनाया,
1: कार्टून बनाना शुरू किया, तो वो भी उस वक्त बहुत खुश हुए। तो उस तरह से वो मेरा पहला कार्टून ग्रेटर कश्मीर में आया था
0: जी।
1: तब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो फिर उसी मतलब बेसिस पे मैंने फिर वीकली कार्टून्स बनाने शुरू किए, तो आते रहे वो ग्रेटर कश्मीर में, और उसके बाद डेली कार्टूनिस्ट मैं कैसे बनी, तो वो हालात पे नज़र रही और एक अंदर वो हिम्मत थी, एक जोश था कुछ करने का, तो मैंने सोचा चलो इसी के जरिए यही फील्ड अपनाएंगे और अपने ग्रैंडफादर का सपना पूरा करेंगे।
0: क्या बात है। देखिए, आपका सपना था पहले कि आप एक डॉक्टर बनती, फिर वो किसी वजह से आप हो नहीं पाया, उसके बाद दिल तो टूटा होगा आपका।
1: बिल्कुल टूटा, रोए भी मगर ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ से एक और लाइन तैयार थी कि मैंने सोचा अगर डॉक्टर नहीं बनेंगे लोगों का इलाज नहीं कर पाया, लेकिन मैं सोसाइटी का इलाज कर पाऊंगी, जहाँ पे खामी होगी अपनी कलम के जरिए वो सामने लाऊंगी।
0: अरे क्या बात।
1: तो फिर मैंने सोसाइटी में झांकना शुरू किया, कहाँ दर्द है वो बाहर लाया,
0: अरे अपनी कलम के जरिए,
1: अपनी कलम के जरिए और अपने कार्टून

0: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन लाइव इंटरैक्टिव शो ये पयाम सुबह है जो आप सुबह 7:10 से लेकर 11:30 तक एंजॉय करते हैं, संवाद करते हैं और इस लाइव ट्रांसमिशन में हम बातें करते हैं, आप तक मौसीकी पहुंचाते हैं, मुलाकात भी होती है और वही हमारा इंटरैक्टिव लाइव शो इस वक्त आप समाप्त कर रहे हैं। स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है राफिया रसूल साहिबा, जो एक जर्नलिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं, अफसाना निगार हैं, एक बहुत ही अच्छी राइटर हैं। इनके कार्टून के हवाले से बात हुई, इनकी जो अफसाना निगार है, इन्होंने जो अफसाने लिखे उस हवाले से बात हुई, नावल निगार हैं ये, इस हवाले से भी बात हुई। और अब एक सवाल राफिया जी मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो आप कार्टून बनाती हैं तो क्या इसके लिए पहले आपको कोई स्टोरी दी जाती है कि इस स्टोरी के रिलेटेड आप कार्टून बनाइए, कि इसमें खुद ही आपको खुद अपने जहन से बनाती हैं, कैसे बनाती हैं?
1: स्टोरी तो दी नहीं जाती है लेकिन खबरों पे नज़र रहती है, अपने इर्द गिर्द माहौल पे नज़र रखती है, रखते हैं तब जाके हमें एक आइडिया लेना पड़ता है। आइडिया जो ही माइंड में आया तो कार्टून ड्रा किया और सवेरे वो पब्लिश होता है फिर।
0: तो मतलब अपने
1: बिल्कुल बिल्कुल अपने आइडियाज हम लेते हैं, अपने आइडियाज के बलबूते पे कार्टून बनता है।
0: अच्छा,
1: न्यूज देख के।
0: जी बढ़िया। ये एक बात मेरे जहन में आती है, जब आप काम करती हैं, लिखती भी हैं, फिर घर को भी संभालती हैं,
1: बिल्कुल
0: कैसे अगर इस ऑफिसन मस्तिष्क काम करान
1: बिल्कुल
0: ये एक बहुत अच्छी बात भी है और बहुत बड़ी बात भी है जो हमारे इसमें है। लेडीज ऑफिस भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों को संभालना, रिश्ते बरकरार रखना,
1: बिल्कुल
0: रिश्तों में कभी दरार न पड़े इसमें भी कोशिश करती हैं खातून की, ये सारी रिश्ते के पानस मयारस मसरूस
1: रोजी
0: कैसे संभाल पाती हैं आप, ये सारा कितना वक्त देना पड़ता है अपने काम को, अपने घर को?
1: वक्त तो दोनों काम में देना ही पड़ता है लेकिन अब एक चीज़ है, एक स्केड्यूल बनाना पड़ता है कब हम घर की ओर जाए और कब हम अपने काम की ओर जाए। लेकिन घर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है,
0: बिल्कुल
1: ये तो औरत के लिए ही बना है।
0: क्या बात,
1: घर को संभालना, उसके बाद अब टाइम निकालना, अपना काम, अपना ऑफिस संभालना, इसके लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। और अगर टाइम ना भी हो तो टाइम ज़रूरी देना पड़ता है, निकालना ज़रूरी है क्योंकि एक औरत को अगर घर संभालना है उसे अपनी पहचान भी बरकरार रखनी है। अगर सलायत उसके अंदर है वो सामने आए, वो छुपे ना, क्योंकि उसका वजूद भी माने रखता है।
0: सही बात है,
1: घर संभालती है, होम मेकर है, लेकिन अपनी जो सलायत है उसको भी दफा ना करे कहीं जिंदगी के कोने में, उसको सामने लाए, उसके लिए टाइम निकाले, अपनी पहचान बनाए,
0: बिल्कुल,
1: तो तब जाके वो खुशहाल औरत बनती है,
0: घर भी खुशहाल बनता
1: है और घर के इधर दीवार भी उनसे भी खुशियां अच्छा लगती है।
0: अरे क्या बात है। अच्छा, कुछ हर्डल्स आई जिंदगी में, कहीं रुकी है आपकी, अब नहीं, अब आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, आगे नहीं बढ़ना है या अब बहुत हो गया, ऐसा कभी दिमाग जहन में आया?
1: हर्डल्स तो बहुत सारे आए लेकिन उनका मुकाबला किया, लेकिन ये माइंड में मैंने कभी नहीं लाया कि अब रुकना है।
0: अच्छा,
1: नेवर। तो मतलब मेरे फादर चले गए तो वो कमी मुझे आज भी महसूस हो रही है, लेकिन जो मकबूल नाम में देखती हूँ हर्डल्स कितने भी आए वो हट जाते हैं रास्ते में, क्योंकि मैंने एक ये रखा है कि माइंड में कि मकमूम जो है जब तक मैं हूँ ये नाम जिंदा रहना चाहिए, तो हर्डल्स की परवाह मैं नहीं करती, वरना हर एक की ज़िंदगी में, हर एक की लाइफ में हर्डल्स आते रहते हैं, उनका मुकाबला करना चाहिए। जब तक हम मुकाबला नहीं करेंगे तो रास्ता हमवार कैसे बनेगा हमारे लिए?

0: तो हर्डल्स तो हर एक इंसान की लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए, लेकिन मैंने सामना किया, मुकाबला किया,
1: बिल्कुल,
0: तब जाके आज हम आपसे यहाँ बात कर रहे हैं।
1: क्या बात है। बिल्कुल, हर्डल से, मुश्किलात से गुजर कर जिन ख्वातीन ने अपना नाम कमाया नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, एक मकाम अपना बनाया, उनको यहाँ लाने का मकसद यही होता है कि इंस्पायर किया जाए
0: इंस्पायर, बिल्कुल
1: उन लेडीज़ को जो चाहती हैं कि हम आगे बढ़ें, कुछ करें। कहीं ना
0: बिल्कुल
1: कहीं वो रुक जाती हैं, तो आप जैसी खातून जब ऐसी बात कहती हैं कि हर्डल्स बहुत आई लेकिन हमने रुकने का नाम नहीं लिया, तो उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता बन जाता है।
0: आजकल बहुत सारे वसाइल है, तो आज कमी नहीं है वसाइल की, और प्लेटफॉर्म्स बन के है आज,
1: बिल्कुल,
0: तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं है एक औरत के लिए, एक खातून के लिए कि मैं कुछ करती लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है। आज खुद अपने घर में बैठकर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: मतलब अपनी पहचान बना सकते
1: सही
0: हैं।
1: कहा आपने।
0: तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी पहचान बनाओ, हर्डल्स आएंगे, सामना करो, तो खुद ब खुद आपकी लाइफ में एक सुकून मिलेगा कि हम भी कुछ है, हमारी भी पहचान है,
1: बिल्कुल
0: हम भी कुछ कर सकते हैं।
1: सही कहा आपने। और देखिए, हर एक औरत जो होती है ना, उसमें कोई ना कोई सलाहियत तो होती ही है, कोई होम मेकर होती है जो घर को जन्नत बनाती है, हर
0: बिल्कुल
1: एक औरत में होता है, लेकिन किसी में कुछ एक्स्ट्रा सलाहियतें होती हैं, जैसे कोई खाना बहुत अच्छा बनाती है
0: अच्छा
1: तो क्या आप खाना बनाती हैं?
0: खाना तो बनाते हैं, मगर अच्छा कितना है वो तो खाने वाले, टेस्ट करने वाले कहते हैं, करने वाले मतलब खाने वाले कहते हैं कि भाई खाना अच्छा है,
1: अच्छा, तो
0: लेकिन
1: पजीराई
0: अपनी
1: मिलती
0: तारीफ
1: है।
0: ही मैं खुद नहीं कर सकती हूँ, खाने वाले कहते हैं अच्छा है।
1: अच्छा,
0: तो
1: स्पेशली क्या बनाती हैं आप?
0: हर एक चीज
1: अच्छा, ये बताइए, हमारा जो कश्मीरी वाजवान है बहुत ही मशहूर है और खाने के हम शौकीन भी हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन आज जो है मार्केट में ऐसे भी कुछ फूड्स आए हैं, तो वो खाना पसंद करती हैं कि अपने ही रवायती खाने को आप अहमियत देती हैं,
0: रिवायती खाना, क्योंकि
1: ज्यादा अच्छा है।
0: बिल्कुल उसका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता है, वाजवान भी हमारी एक पहचान है
1: बिल्कुल,
0: कश्मीरी मतलब आवाम की, तो वाजवान ही पसंद करते हैं हम।
1: अरे बहुत बढ़िया। बच्चों, ये कजा चाहिए मिस लेडी मस कोता सब्र तो चु अल्लाह ताला हम दे तुम था
0: वारिया
1: कोता छु तो संभालन तो चु ले खान दे पत्तम खतर टाइम करन कार्टून बनाऊं
0: बिल्कुल
1: पत ऑफिस गसुन पत तोर यु घर संभाल घर समझन ती यमन सारनी बजन हन ख्याल था। अलग अलग घर में जो हमारे अफराद होते हैं अलग अलग चॉइस होती हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, उनका ख्याल रखना, ये छु एक जनानी रबन
0: इशू रबन
1: सलाहियत
0: जिसमें
1: इसमें,
0: सलाहियत तो इशू पाकुन
1: ये छुपाकुन। तो ये बताइए, आप किताबें लिखती हैं, नॉवल आपने लिखी हैं, क्या किताबें पढ़ती भी हैं?
0: जी, जब टाइम मिलता है तो पढ़ ही लेते हैं।
1: अच्छा, किताबें पढ़ती भी हैं। आजकल जो हम ये कहते हैं कि ये रुझान थोड़ा कम सा हो गया है, आज काम पहनना मैंने आज, क्योंकि हमारे पास जो फोन आ
0: फोन
1: गया
0: है
1: है इसमें सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है,
0: बिल्कुल
1: हम सर्च करते हैं एक क्लिक पर सब कुछ आ जाता है, लेकिन जो किताबें पढ़ने का एक रुझान था वो, उसमें हमें एक नॉलेज अलग गेन होती थी, एक टाइम हमारा स्पेंड होता था, तो आज कुछ इसमें कमी नजर आती है, आपको क्या लगता है?
0: इसमें तो बहुत कमी आई, लेकिन शौकीन भी बहुत है आजकल किताबों के, जो किताबें लेते हैं पढ़ते हैं उनको एक तसल्ली मिलती है कि नई किताब पढ़ी, तो
1: सही बात,
0: वरना मोबाइल ने तो काफ़ी मतलब शौकीन बहुत है इसके, लेकिन कमी भी काफ़ी आई इसमें, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ते हैं,
1: पढ़ने वाले पढ़ते हैं और
0: पढ़ते
1: पढ़ने चाहिए,
0: चाहिए भी।
1: सही बात है। तो बात करेंगे आपके साथ और भी झांकने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है आपके अंदर, क्या क्या करती हैं आप, लेकिन एक नगमा सुनते हैं।

0: टाइगर का मॉर्निंग लाइव शो पयामे सुबह
1: इल्म और आगही का संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयामे सुबह
0: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर पयामे सुबह।
2: जी हाँ सामीन, पयाम इस प्रोग्राम जारी है। लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान रिफ़त आरा और मेरे साथ आज जो हमारी मेहमान हैं वो है राफिया रसूल साहिबा, जो एक कार्टूनिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, अफसाना निगार और राइटर हैं। इनके साथ हम बात कर रहे हैं। राफिया जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जो आप कार्टून बनाती हैं, किस तरह के क्या ख्याल रखना पड़ता है इसमें कि क्या पॉलिटिकल जो होते हैं, कुछ न्यूज़ ऐसी भी आती हैं, कुछ खबरें ऐसी आती हैं जो पॉलिटिकल इससे ताल्लुक रखते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि कोई ऐसा कार्टून न जाए जिससे कंट्रोवर्सी हो।
3: बिल्कुल, बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है। आजकल के दौर में काफ़ी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए सोच समझ के इसलिए कार्टून बनाया जाता है, पॉलिटिकल कार्टून, ताकि कल को वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ज़्यादातर सोशल कार्टून्स पर ही मैं ध्यान देती हूँ।
2: अच्छा,
3: तो क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी मतलब मुश्किलात है, उनको सामने लाना मैंने यही मतलब स्टार्ट किया है कि उनको सामने लाए, वो प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के ज़रिए सॉल्व हो, क्योंकि सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उससे बढ़कर और कोई काम नहीं है।
2: सही बात है।
3: तो अच्छा, पॉलिटिकल कार्टून्स तो होते रहते हैं,
2: आप उन पर ज़्यादा काम नहीं करते?
3: नहीं, उन पर बहुत कम ही काम करते हैं और बहुत कुछ सोचना भी पड़ता है उस बारे में।
2: अच्छा,
3: ताकि कल को कंट्रोवर्शियल न बने।
2: कभी कोई तनकीद हुई?
3: तनकीद का सामना तो काफ़ी दफ़ा करना पड़ा, लेकिन रुकना मेरा काम नहीं था, आगे बढ़ते ही गए। तनकीद तो बहुत हुई, हर मतलब हर एक कार्टून में नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्टून्स बने जिन पे बहुत सारा मुझे फेस करना पड़ा।
2: अच्छा,
3: हालात बिगड़ गए उस वक्त काफ़ी, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिर सोशल कार्टून्स पे ही ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। नो डाउट आजकल पॉलिटिकल कार्टून्स भी बनते हैं, लेकिन ज़्यादा मेरे सोशल ही रहते हैं।
2: अच्छा, जो आपने आज तक कार्टून बनाए हैं, हजारों की तादाद में बनाए हैं
3: जी,
2: वो आपके पास हैं, अवेलेबल हैं?
3: बिल्कुल,
2: कभी देखती हैं उनकी तरफ?
3: बिल्कुल।
2: तो खुशी,
3: यादें मासी। हाँ, बहुत खुशी होती है कि कहाँ से कहाँ तक आ गए। तब तो कार्टून्स ब्लैक एंड वाइट आते थे, फिर इनमें भी आजकल कलर कार्टून आता है, तो उस पर भी काम करना पड़ा, उसमें भी मतलब मेहनत करनी पड़ी, और आज मैं कलर कार्टून्स मेरे आते हैं रोज़नामा आफ्ताब में।
2: अच्छा रफा जी, ये बताइए कि कार्टून्स के अलावा कुछ और पेंटिंग्स भी बनाई आपने? क्योंकि
3: जी जी, पेंटिंग्स
2: में मुझे बड़ा ये था, बचपन से फिर शौक था, मैं लिखती थी, ऐसे लकीरें खींचती थी।
3: बिल्कुल,
2: कभी कोई ऐसी पेंटिंग बनाई जिसकी पज़ीराई बहुत ज़्यादा हुई?
3: वो मैं अपनी तक ही रखती हूँ।
2: अच्छा,
3: मतलब घर के लिए जब टाइम मिलता है तो ब्रश उठाते हैं और स्ट्रोक्स मारते हैं। उससे टाइम भी निकल जाता है और कुछ हाथ भी आता है।
2: चलिए बढ़िया, मतलब यादों का एक कैनवस आपने रखा है।
3: कैनवस में यादें रह जाती है,
2: कैनवस में यादें रह जाती है। कभी किसी ऐसा कोई ये नहीं हुआ कि शो नहीं हुआ कि जहाँ आप चाहें कि मैं, मेरी ये पेंटिंग अच्छी बनी है तो मैं इसमें ये डाल दूँ?
3: पेंटिंग्स तो नहीं रखी, लेकिन हाल ही में ये नशा मुक्त अभियान में मेरा कार्टून सेलेक्ट हुआ।
2: अच्छा,
3: तो वो जम्मू में अभी चल रहा है वो अभियान, तो उसमें मेरा कार्टून डिस्प्ले होता है, तो पेंटिंग्स मैंने अपनी हद मतलब अपने तक ही रखी।
2: किस तरह की पेंटिंग्स बनाना पसंद करती हैं आप?
3: नेचर, नेचर से मुझे बहुत लगाव है।
2: अच्छा,
3: नेचर को मद्देनज़र रख कर मैं ड्राइंग करती हूँ, आर्ट बनाती हूँ, मतलब कैनवस पे उतारती हूँ।
2: बढ़िया। अच्छा, ये आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ भी वाबस्तगी

0: रही है
1: जी जी
0: आपकी,
1: जी
0: क्या करते हैं वहाँ पे आप?
1: मैं वादी टेलीविज़न में काम करती थी, फिर मतलब वहाँ मैं कार्टूनिस्ट भी थी और एनालिस्ट भी, तो अब रिपोर्टिंग भी मेरी होती थी, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी मेरी बनती थी, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी मैं पे भी मैंने काम बहुत किया है, आउटसाइड शूटिंग में भी जाती थी मैं, आउटडोर शूटिंग पे।
0: अभी
1: अभी फ़िलहाल मेरा ध्यान नावल पे है और कार्टून्स पे,
0: अभी उस पे ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज में आपका ये
1: नहीं
0: नहीं है?
1: अभी मैंने बंद किया है वो काम, क्योंकि नॉवल रुकी पड़ी है, तो उसका इंशाल्लाह पब्लिश हो जाएगी वो, तो उसके बाद सोचते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ का। फ़िलहाल मैंने टाइम दिया नॉवल को और कार्टून्स पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ आजकल।
0: ये जो आप नॉवल लिख रही हैं अभी, ये किस जबान में है?
1: उर्दू
0: उर्दू
1: जी
0: जबान में
1: जी
0: है। इसका
1: मैंने
0: क्या रखा है आपने नाम?
1: अभी तो कांच के बंधन,
0: कांच के बंधन, जो रिश्तों पे आपने अभी
1: बिल्कुल
0: करा।
1: रिश्तों, हाँ
0: अभी किस मरहले पे है?
1: बस कंपोजिंग हो रही है उसकी, 1-2 महीने के बाद आ जाएगी इंशाल्लाह।
0: ओवरऑल क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको अपनी डे टू डे लाइफ में? अगर हम बात करें ये कार्टून बनाना, ये रोज़ का काम है, कोई एक नॉर्मल सी चीज़ भी नहीं है।
1: बिल्कुल
0: हर रोज़ दिमाग में एक नई चीज़ को लाना, फिर उसको ड्रॉ
1: ड्रॉ
0: करना,
1: करना
0: क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं कि अब ऐसा जहन बन गया है कि ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाती है ये बात कि मुझे ये ड्रॉ करना है?
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं पेंटिंग में बहुत ख़राब रही हूँ। हालांकि
1: अच्छा
0: पेंटिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरी जो ड्राइंग है वो सबसे ख़राब रही है। मैं कहना नहीं चाहूँगी कि मैंने कभी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया, और अगर हिस्सा लिया भी तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी मैं,
1: अच्छा।
0: इसलिए मुझे ये बड़ा चैलेंजिंग सा लगता है। तो क्या चैलेंजेस है इसमें?
1: कार्टून्स अब तो एक आदत बन गई है, अब तो रूटीन में आइडियाज़ भी आते हैं और ड्रा भी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है ये काम,
0: तो
1: तो यही
0: ये
1: रूटीन मतलब है अब, डेली रूटीन।
0: अच्छा, मतलब आपको कोई भी स्टोरी मिले, कोई भी आपको
1: बिल्कुल
0: खबर मिले, न्यूज़ मिले, तो आप उस पर ड्रॉ कर सकती हैं?
1: बिल्कुल आदत रूटीन बन गई है। और रहा सवाल पेंटिंग का, मैंने स्कूल्स में भी बहुत सारे मतलब पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, वहाँ मैं मेडलिस्ट रही हूँ।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: मेडलिस्ट।
1: जी, पेंटिंग में मैंने मेडल भी हासिल किया है।
0: अच्छा, चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छा लग रहा है राफिया आपके साथ हमें बात करके। देखिए, जब ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसका जो हमारा आज का जो हमारा थीम, अलग अलग दिन में हमारे अलग अलग थीम्स रहते हैं, और आज जो हमारा ये दिन है, इसमें हम लेडीज़ के हवाले से ही बात करते हैं। और मकसद हमारा यही होता है कि हमारी जो माएँ बहनें हैं जिनमें टैलेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उनके टैलेंट को निखारा जाए, उनमें उनके जहन में ये बात आए कि हम कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: हम आगे बढ़ सकते हैं, हम किसी भी फील्ड में अपना नाम कमा
1: कमा
0: सकते हैं
1: सकते
0: अगर
1: हैं
0: हमारा दस्तरस है उस फील्ड में, और अगर लगन है, हम मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी घर की चार दीवारी में, किसी कोने में बहुत सारी ऐसी हमारी लड़कियां बैठी हैं जिनके पास है सलाहियत, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, या तो कहीं पर सपोर्ट की कमी रहती है। आपका सपोर्ट कैसा रहा? ओवरऑल जो आपका सपोर्ट था वो सही रहा?
1: बहुत सपोर्टिव रहे, मेरी फैमिली भी और मेरे हस्बैंड भी, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि टाइम कम है, टाइम दे रही हो आप कार्टून्स में या नहीं,
0: या
1: सपोर्टिव
0: पेंटिंग्स में या,
1: सपोर्टिव काफ़ी रहे मेरी फैमिली भी और मेरे हस्बैंड भी।
0: अरे क्या बात है, विच वी एम सैटिस्फाइड, हम सैटिस्फाइड,
1: जब
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो हमारी
1: बिल्कुल
0: जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाती हैं, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जैसे कहो
1: जब
0: यू कि मर्द के बगैर ना औरत ज़्यादा चलती है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी है जिन्होंने बहुत नाम कमाया, लेकिन हम साथ मर्द सुन साथ ना रोजान इंसान शुभ आसान जिंदगी गई आसान।
1: और वही तो आगे बढ़ती है,
0: सही बात है।
1: सोई जनान ची ब्रोंट पकान, ये मिस प्रेत को सुन सपोर्ट मिल, माँ बाप को सपोर्ट तो मिलता ही है, बहन भाइयों को मिलता है, लेकिन अगर हस्बैंड का सपोर्ट आपको मिलता है तो फिर कोई हर्डल हर्डल नहीं रहता है आपकी लाइफ में, आपकी मतलब इसमें रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं, क्योंकि वो बेफिक्र होके चलती है कि नहीं है कोई पीछे सपोर्ट करने वाला, जिसे
0: बिल्कुल।
1: मेरा काम पसंद है, जिसे मेरे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह।
0: بالکل یہ راستے آسان ہو جاتے, جیسے آپ نے کہا کہ مجھے کوئی ہے اکسکیورٹی سے باسا انسان,
1: بالکل
0: اگر بھی کہتے کرے
1: بالکل پرواہ نہیں اس معاملے میں.

0: जी हाँ सामीन, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2 103.5 MHz पर और मीडियम में 268.8 मीटर पर। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। लाइव इंटरेक्टिव शो आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं और हमारी जो मेहमान हैं राफिया रसूल साहिबा हैं, जो एक बहुत ही बड़ी कार्टूनिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं, अफसाना निगार हैं, राइटर हैं और पेंटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। तो यहाँ पर ये जानना चाहेंगे राफिया जी आपसे कि ये जो आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, कौन सा कंपटीशन था ये?
1: ये स्कूल में 10th में तब मैं पढ़ती थी, तो तब एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ, तो उसमें मैंने कश्मीर की कली ड्रॉ की। अच्छा। एक खातून, तो वो बेस्ट पेंटिंग रही और उस पे मुझे मेडल मिला। फिर हासिल किया मैंने मेडल उसमें।
0: अच्छा, 10वीं जमात में?
1: 10th क्लास में ही।
0: क्या बात है।
1: और बहुत सारी सर्टिफिकेट्स भी मिली, लेकिन मेडल 10th में ही मिला मुझे।
0: क्या बात है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप पेंटिंग में।
1: जी
0: बहुत बढ़िया। और ये बताइए, आपने इस बात से पहले, नगमे से पहले मुझसे कहा था कि आप के शौहर साहब ने बहुत साथ दिया आपका, क्या वो भी इसी फील्ड से वाबिस्ता हैं?
1: नहीं नहीं, उनका फील्ड टोटली डिफरेंट है, वो बैंक में जॉब करते हैं।
0: अच्छा।
1: लेकिन फिर भी उनका थैंक्स मेरा साथ देने के लिए।
0: अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे ये ना ये सुन के कि देखिए कितने सपोर्टिव होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, हमारे रास्ते आसान हो जाते
1: सही,
0: हैं।
1: बिल्कुल।
0: इस फील्ड में ना होने के बावजूद भी आपको सपोर्ट किया और सुन रहे होंगे आपके जनाब अभी, तो आपने शुक्रिया भी अदा किया। अब हमारे पास कुछ वक्त है राफिया जी, आखिर पे एक अच्छा सा मैसेज आप हमारी तमाम ख्वातीन के लिए, तमारी तमाम लड़कियों के लिए आपसे लेना चाहेंगे।
1: मेरी मैसेज यही रहेगी, अपने अंदर जो सलाहियत है उनको बाहर लाओ, रुको मत, हर्डल्स बहुत आएगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि रास्ता साफ है, हर्डल्स तो बहुत आएगी, मगर उनको मद्देनज़र रख के आप एक अज़म के साथ आगे बढ़ो कि नहीं कुछ करना है हमें। एक टाइम निकालो अपने लिए जिस पे आप घर के काम या बाकी कामों में नो एंट्री का बोर्ड लगाओ कि इसके अंदर मेरा अपना काम है, मेरी अपनी दुनिया है, मुझे अपने बारे में सोचना है, तो वो सलाहियत खुद ब खुद सामने आएगी। मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है हर एक को, मैंने भी अपने टाइम पे किया है, तो अगर कोई मुश्किल उन्हें आए वो डरे ना, सामने आए, आगे बढ़े और अपना

0: कमाई, अपनी पहचान कमाई और खुद ब खुद उनकी राहें हमवार होगी।
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छा मैसेज, बहुत ही बढ़िया मैसेज। हर्डल से रुके ना, डरे ना, मुश्किलात से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से आगे बढ़ें, क्योंकि वक्त का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वक्त कभी रुकता नहीं है। चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वक्त निकल जाता है। और बुरे वक्त के लिए भी तैयार इंसान को होना चाहिए। अगर कोई तकलीफ़ होती है तो आगे ये सोचकर आप बढ़ें कि आगे का जो वक्त है वो अच्छा होगा,
0: और उसमें वो हमारा इंतजार कर रहा है।
1: बिल्कुल, उसमें हमारा एक नाम बनेगा, एक पहचान बनेगी। राफिया जी, आप यहाँ आई, हमारे साथ बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आगे वक्त मिला तो ज़रूर आपके साथ और मुलाकात होगी। बहुत ही अच्छा लगा आपका यहाँ आना। तो समीन को बताना चाहेंगे कि अब आप हमें आज के लाइव शो से इजाज़त दीजिए, और आगे का जो ट्रांसमिशन है आप हमारी साथी नाहिदा के साथ

0: अच्छा हो या बुरा हो, वक्त
1: बिल्कुल
0: निकल जाता है और बुरे वक्त के लिए भी तैयार इंसान को होना चाहिए। अगर कोई तकलीफ होती है तो आगे ये सोचकर आप बढ़ें कि आगे का जो वक्त है वो अच्छा होगा,
1: और वो
0: उसमें
1: हमारा इंतजार कर रहा है।
0: बिल्कुल उसमें हमारा एक नाम बनेगा, एक
1: बिल्कुल
0: पहचान बनेगी। राफिया जी, आप यहाँ आई, हमारे साथ बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आगे वक्त मिला तो ज़रूर आपके साथ और
1: इंशाल्लाह।
0: मुलाकात होगी। बहुत ही अच्छा लगा आपका यहाँ आना। तो समीन को बताना चाहेंगे कि अब आप हमें आज के इस लाइव शो से इजाज़त दीजिए और आगे का जो ट्रांसमिशन है आप हमारी साथी नाहिदा के साथ सुनेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, हम मिलेंगे आपसे दोबारा इंशाल्लाह, जिंदगानी रही तो। तब तक के लिए आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह हामी व नासिर।

समीन, आप समाप्त कर रहे थे लाइव इंटरेक्टिव शो। आपको बताते चले कि हम आपसे मुखातिब हैं आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। ईच आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 68.88 मीटर ते FM 73.5 MHz पर। समीन, 9:30 बजे वाले सूफियाना मौसीकी बोजो फनकार छे वस्ताद गुलाम मोहम्मद साज नवाज दहीन सती युमन निश बुजुती मकामी तोड़े।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस

0: victory and extend Belgium's unbeaten run to 17 matches. Co-hosts US registered their first win in the knockout round after 2002 this morning. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 200.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर स्टेशन है। आई समीन आपको चंद फिल्म नगमे सुनवाते हैं। आगाज में सुनते हैं जिंदगी और ख्वाब फिल्म का नगमा, मुकेश ने इसे गाया है, प्रदीप ने लिखा है और मौसीकार है दत्ताराम।

जी दोस्तों, ये था जिंदगी और ख्वाब फिल्म का नगमा। प्रदीप के बोल थे, दत्ताराम की मौसीकी थी और ये आवाज़ थी सुमन कल्याणपुर की। जी हाँ, हम माजरत का है कि नगमे के आगाज़ में हमने ऐलान किया था कि ये नगमा मुकेश की आवाज़ में है। दरअसल ये नगमा एक और बार इस फिल्म में है जो कि मुकेश ने गाया है और हमने आपको सुनाया सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत। और अब अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे, जी हाँ, वासना फिल्म का नगमा है, साहिर लुधियानवी के बोल है, चित्रगुप्त का संगीत है, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ है।

जी दोस्तों, आपने यशोदास की आवाज़ में रविंद्र जैन का लिखा हुआ गीत सुना। मौसीकार थे रविंद्र जैन और फिल्म का नाम था चितचोर। और अब आखिर पर आपको सुनवाते हैं मजरूह के बोल आर डी बर्मन की मौसीकी में। फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण और इस नगमे को आवाज़ दी है किशोर कुमार ने।

0: समाप्त कर रहे थे। आखिर पर आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। आर डी बर्मन की मौसीकी में ये था फिल्म रामपुर का लक्ष्मण का नगमा, और आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। अब हमारे यहाँ से खबरें नशर होंगी, पहले उर्दू और उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आरिफ हुसैन। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का कल से बाजाबता तौर पर आगाज हो रहा है और कल से ही गुफा में श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह 4,822 यात्रियों पर मुश्तमिल एक काफिले को जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से झंडी दिखाकर वादी के लिए रवाना किया। इन यात्रियों में 3,707 मर्द और 816 खवातीन शामिल हैं। इस मौके पर एलजी ने यात्रियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड

0: 1822 यात्रियों पर मुश्तमिल एक काफिले को जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से झंडी दिखाकर वादी के लिए रवाना किया। इन यात्रियों में 3,707 मर्द और 816 ख्वातीन शामिल हैं। इस मौके पर एलजी ने यात्रियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज, मकामी लोगों और दीगर मुतलकिन ने यात्रा के असर इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए हैं। यात्रियों का ये काफिला अब से थोड़ी देर पहले नवयुग टनल क्रॉस करके काजीगुंड पहुंच गया, जहां समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इन यात्रियों का वालिहाना इस्तकबाल किया और उन्हें मशरूबात और खाने पीने की चीजें फराहम की। इस्तकबाल के लिए पहुंचे कई लोगों ने हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए कहा,
1: बहुत खुशी की बात है कि जो श्री अमरनाथ यात्रा जी जो है माननीय गवर्नर साहब ने सुबह सवेरे जम्मू से उसको रवाना किया है। हम कश्मीर में यहाँ सारे हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर टनल पे उनका वेलकम कर रहे हैं, जो कि गेटवे ऑफ कश्मीर है, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम सारे यहाँ हिंदू मुस्लिम यहाँ बैठे हैं और सुबह सवेरे से उनके इंतजार में इसी आशा में कि उनको हम वेलकम करें और उनकी जो यात्रा सफल हो उसकी मनोकामना करते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ कुलगाम की, अनंतनाग की, सारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस है, CRPF है, BSF है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंतजाम बहुत बढ़िया है।
2: जो बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा यहाँ आने वाली है, उनका स्वागत करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। सुबह से उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कश्मीरियों की जो हॉस्पिटैलिटी है वो हमेशा एक खूबसूरत रही है। हमने हमेशा हर किसी को, जो भी कश्मीर आया है, उनको तहे दिल से उनका स्वागत किया है।
0: इस मौके पर DC कुलगाम शहजाद आलम, DIG साउथ कश्मीर जावेद इकबाल मुत्तू, SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल जम्मू में यात्रियों के इस्तकबाल के लिए मुनाकिद की गई तवी आरती और लाइट एंड साउंड शो का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एलजी ने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा मुख्तलिफ जुबानों, सकाफतों और रिवायत से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुत्तहिद करने और एतिकाद के एक ही बंधन में जोड़ने का जरिया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि रामबन जिले के रामसू इलाके में 810 मीटर लंबा वायाडक्ट मुकम्मल किया गया है। इसके अलावा 3.5 किलोमीटर लंबा 8003 टनल को भी मुकम्मल किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में शाहराहों और सड़क राबतों को दवाम बख्शने के लिए वजीर अजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इन दो प्रोजेक्टों के मुकम्मल होने से शहरा पर सफर करने वालों के लिए आसानी पैदा होगी और श्रीनगर और जम्मू के दरमियान सफरी वक्त में मजीद कमी आएगी। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर बुनियादी ढांचे को फरोग देने की गर्ज से वजीर अजम फंड के तहत UT के लिए मसनू जहानत पर मबनी 275 पोर्टेबल एक्सरे मशीनें, 9 NRI यूनिट और 4 डिजिटल मेमोग्राफी यूनिट्स वागुजार किए हैं। इस तालुक से सेहत की मरकजी वजारत और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक मुफामत नामे पर दस्तखत किए हैं। ये तशखीसी आलात निशानदेही शुदा सरकारी तिब्बी इदारों में नस्ब किए जाएंगे। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कल श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान खान साहिब, हजरतबल, पांपोर, सोपोर और जैनपोरा असम्बली हलकों में तरक्याती मामलात और आवामी खिदमात की दस्तियाबी का जायजा लिया। इन हलकों के अरकान असम्बली ने अपने अपने हलकों के मसाइल वजीर मौसुफा की नोटिस मिलाए। वजीर मौसफा ने उन्हें यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मामलों को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कल श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान नूरबाग में 60 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर दस्त लिए गए कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने NBCC को हिदायत दी कि वो STP के इल्तवा में पड़े तमाम कामों को 31 जुलाई से पहले मुकम्मल करे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की मौसर अमल आवरी पर जोर दिया। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने महकमे सेहत में जाली तालीमी असनाद की बुनियाद पर सरकारी नौकरियां हासिल करने की पादाश में 4 अफराद के खिलाफ फॉरेस्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इनमें पंपोश कॉलोनी शाहपोरा श्रीनगर का शुजा जिलानी, उमर कॉलोनी लाल नगर शाहपोरा श्रीनगर का मोहम्मद इकबाल, मालवारी पुलवामा का निसार अहमद वानी और मिडोरा अवंतीपोरा पुलवामा का रियाज अहमद शाह शामिल है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अपनी जापान की हममनसब सनाई ताकाची के साथ सालाना समिट सतह की बातचीत करेंगे। बातचीत से दोनों मुल्कों के माबेन रिश्तों को नई बुलंदियों तक ले जाने और इलाकाई व आलमी नौयत के बाहमी मामलों पर तबादला ख्याल करने का मौका फराहम होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।

0: कई ऐसे बच्चे हैं जो गलत राह पे गामजन हो जाते हैं, जो गलत कामों में मुलव्वस हो जाते हैं। उन बच्चों के लिए भी मैं ये कहूँ कि सबसे पहले जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, और यहाँ पे मैं इस बात पे बहुत ज़ोर देना चाहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ माँ की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप की भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में दादा दादी हैं उनकी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाना नानी की है, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने पड़ोसी हैं, जो आपके खैरख्वाह हैं, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बच्चे को सही और गलत में, हमारे माशरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यंग जनरेशन को सही और गलत में फ़र्क करना सिखाएं। आजकल आप देखें कि कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो घर से निकलते हैं, स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, ट्यूशन जाने के लिए निकलते हैं, और फिर उसके बाद किसी को नहीं पता कि वो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते। स्कूल नहीं जाते तो स्कूल से निकल के क्या करते हैं वो? अक्सर हम ये देखते हैं कि ऐसे ही बच्चे जो हैं वो किसी गलत काम में मुलव्वस होते हैं, वो सब्सटेंस अब्यूज़ में मुलव्वस होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक माँ की तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे माशरे की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद जो है उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हम सब मिलकर कोई इनिशिएटिव लें।
1: देखिए रक्षंता, आज मैं जिस एक ख़ास बात को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ वो है हमारे बच्चों में जो नशे की लत है। तो क्या इसमें सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है, और क्या इसमें इकदाम हो सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि हमें हमारे सिर्फ समाज, हमारे सिर्फ गवर्नमेंट की या फिर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसमें सोशली कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक बच्चा अगर किसी बुरी लत में है तो इसको हम किस तरह से इसको दुरुस्त कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, जैसा कि अभी इससे पहले भी आपने भी कहा और फिर मैंने भी कहा कि एक बच्चे की तरबियत करना उसकी माँ उसके बाप का फ़र्ज़ है, लेकिन उसके साथ साथ एक सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है एक बच्चे की तरबियत में, एक बच्चे की परवरिश में। तो जैसे मैं आपको ये कहूँ कि अभी अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो जम्मू कश्मीर में 13 से 15 लाख लोग जो हैं वो सब्सटेंस अब्यूज़ में मुलव्वस हैं, और अफसोस का मकाम ये है कि इन 13 से 15 लाख लोगों की जो एज ग्रुप है वो 10 साल से लेकर 33 साल की है, और उससे भी बड़े दुख की बात ये है कि जो 10 साल से लेकर 17 साल के बच्चे हैं उनकी तादाद 1,70,000 की है जो ड्रग अब्यूज़ में, सब्सटेंस अब्यूज़ में मुलव्वस है। तो आप ये सोचें कि 10 साल का बच्चा जिसे दुनियावी बातों के बारे में शायद कुछ भी ना पता हो, वो भी एक ऐसी चीज़ में मुलव्वस है जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। आप देखें आजकल कितने ही ड्रग्स हैं, कितने ही ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको एक बार लेने से आपको ज़िंदगी भर के लिए उनकी लत लग सकती है, और ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सब्सटेंस अब्यूज़ और ड्रग अब्यूज़ से आपकी सेहत पर, आपकी फ़िज़िकल मेंटल इमोशनल हेल्थ पर, और एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी आप कितने ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो आप ये देखें कि अगर एक 10 साल का बच्चा ड्रग अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ में जुड़ा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि हम एज अ सोसाइटी फेल हो चुके हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई एक 10 साल का बच्चा ये गलत काम कर रहा है तो उसके पेरेंट्स ने उसकी सही तरबियत नहीं की या उसके आसपास का माहौल ठीक नहीं था। इसका ये मतलब है कि हम एज अ सोसाइटी अपने बच्चों को वो सही और गलत की जो सही और गलत में जो डिफरेंस है वो बताने में फेल हुए हैं। हम इसमें फेल हुए हैं कि हमारी ही सोसाइटी के लोग हैं जो ये ड्रग्स, ये सब्सटेंसेस इन बच्चों को फराहम कर रहे हैं। तो आप ये समझें कि ये ऑन अ ब्रॉडर लेवल एक सोसाइटी का फेलियर है।
1: देखिए रक्षंता, मुझे लगता है जब हमारा बचपन था तो कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, घर के बड़े हमारी तरबियत करते थे, लेकिन जहाँ तक आजकल के बच्चों का ताल्लुक है, जो 2000 के बाद के बच्चे हैं, तो मुझे लगता है इनकी तरबियत माँ बाप से ज़्यादा फ़ोन ने की है, क्योंकि फ़ोन के साथ ये सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, और कहीं ना कहीं माँ बाप को ये वक्त ही नहीं मिलता है कि उनकी तरबियत करें, क्योंकि माँ भी कहीं ना कहीं फ़ोन में बिज़ी हैं या फादर भी कहीं ना कहीं फ़ोन में बिज़ी हैं, और बच्चे की तरबियत जो है वो भी फ़ोन ही कर रहा है।
0: जी देखिए, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि मेरे ख्याल से, और जो

0: मेरा पर्सपेक्टिव है उससे मैं आपको ये कहूँ कि मेरे हिसाब से जब एक बच्चे की उम्र 10 साल से कम होती है, वही ये एज होती है फ्रॉम द एज ऑफ 3 to 10, ये 7 साल जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एक बच्चे की तरबियत में। वो बच्चा किन वैल्यूज़ किन मॉरल्स के साथ बड़ा होगा ये डिसाइड करने में 10 साल से नीचे के बच्चे जो हैं उनकी उम्र बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और
1: जी
0: आजकल अगर आप ये देखें तो 6-6 महीने के बच्चे अगर खाना खाने में थोड़े से नखरे करें, जो कि एक बच्चे का हक है, मैं ये
1: जी
0: कहूँगी कि शैतानी करना, बात ना मानना, एक बच्चे का हक होता है, उसका बचपन होता है, तो उससे हमने बच्चों को महरूम कर दिया है कि हम वो खाना ना खाएं तो हम उनके हाथ में फ़ोन
1: फोन
0: थमा
1: दे
0: देते हैं। तो जब बचपन से ही आपने वो चीज़ खुद एक बच्चे के हाथ में दे दी, तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि अब मेरा बच्चा फ़ोन नहीं छोड़ता। जब आपने अपना काम, चले मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स बिजी हैं, चाहते हैं कि जल्दी जल्दी काम निपट जाए, लेकिन जब ये वबाले जान आपने खुद उनके हाथ में दिया है, तो फिर हम किस मुंह से कंप्लेन करें कि हमारे बच्चों की जो तरबियत है वो मोबाइल फोन्स करते हैं। फिर आप ये भी देखें कि चलें बच्चा तो बच्चा, आजकल तो ग्रोन अप्स जो एडल्ट्स हैं, माँ बाप हैं, जिनके ऊपर एक पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ख़ानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप देखें वो लोग फ़ोन नहीं छोड़ते दिन भर, तो हम बच्चों से क्या शिकायत करें। ये भी मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माँ बाप की है, कि आप सबसे पहले ये देखें कि आपका बच्चा अगर फ़ोन यूज़ कर रहा है तो क्या यूज़ कर रहा है वो इस फ़ोन में। ये बात मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि 80% माँ बाप को मालूम ही नहीं होता कि हमारा बच्चा अगर फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है तो उस फ़ोन में ऐसा क्या है जो वो देख रहा है। कहीं वो कोई गलत चीज़ तो नहीं देख रहा, कहीं वो किसी ऐसे इंसान की कंपनी में तो नहीं है जो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की, क्योंकि आप देखें आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। आप देखें कि किस तरह से सब्सटेंस अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़ को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है। आप देखें आज मूवीज़ में कोई ऐसी मूवी नहीं आपको मिलेगी जिसमें कोई हीरो जो है वो सिगरेट नोशी ना कर रहा हो, शराब नोशी ना कर रहा हो। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक नज़र रखें कि हमारे बच्चे देख क्या रहे हैं। जैसे हम हैं, हम अगर अपने बचपन में कोई सुपर हीरो देखते थे, हम शक्तिमान देखते थे, तो हमारा भी बहुत मन करता था कि हम भी शक्तिमान जैसे बने, या कोई और कार्टून देखते थे, कोई और मूवी देखते थे जिसमें कोई हीरो, हमारा भी मन करता था कि हम वैसे ही काम करें। तो अगर आपका बच्चा ऐसी मूवीज़ देख रहा है जिसमें जो हीरो है वो किसी गलत काम में मुलव्वस है, तो सीधी सी बात है क्योंकि जहन कच्चा है, इस जहन में जो भी
1: गीली मिट्टी है।
0: एग्जैक्टली गीली मिट्टी है, तो जो कोरे कागज पे जो पहली चीज पड़ती है वो आपको यही लगता है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, इसको इस बात पे वाहवाही मिल रही है, जो कि बिल्कुल फिक्शनल होता है। लेकिन यही बात है कि पेरेंट्स को ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे आखिर किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं।
1: जिमरन, आपने कहा कि जिस तरह से बच्चे ही नहीं बड़े भी इस वबा में फ़ोन की जो है आजकल उसमें मुलव्विस हैं। ज़िमनन इस पे मुझे एक बात याद आई, रक्षंदा चूँकि शादियों का सीज़न है तो बच्चियों की तरबियत और बच्चों की भी, दोनों मैं ये कहूँगी कि जहाँ हम बच्चियों की तरबियत करते हैं वहाँ बच्चों की तरबियत करना भी ज़रूरी है। लेकिन पिछले साल एक बच्ची की शादी हुई तो कहीं ना कहीं उसमें उसकी माँ का भी कसूर है, उनको समझाना चाहिए था अपनी बच्ची को। लेकिन 2-3-4 महीने जब शादी के हुए तो उनकी सास ने उनकी मुमानी फुफो और उनकी खाला को बुलाया और अपने किचन में सारे जले हुए बर्तन दिखाए। हाँ, क्योंकि वो बच्ची जब अपने ससुराल गई वो गैस पे दूध चढ़ाती थी तो भूल जाती थी, चाय बनाती थी तो क्योंकि वो फ़ोन में लगी पड़ी रहती थी तो वो सब चीज़ें वो जो है वो भूल जाती थी। तो बच्चों के साथ साथ देखें कितना ज़रूरी है उन बच्चों की तरबियत करना। देखें, जहाँ बच्ची ने जाके अपना काम किचन में सही से नहीं किया और उसकी सास मजबूर हो गई अपने बर्तन दिखाने के लिए, ऐसे ही बच्चे की तरबियत भी करनी है कि आपको अपने, जैसे आप ऑफिस में अपना टाइम देते हैं, दोस्तों को अपना टाइम देते हैं, इस तरह से आप अपने घर वालों को, अपनी बीवी को भी अपना पूरा टाइम दें ताकि वो भी बेजार ना हो आपसे। तो बहुत ज़रूरी है ये। मुझे ज़िमनन, हमारा आज का मौजू ये नहीं है लेकिन ज़िमनन मुझे ये बात याद आ गई। और जहाँ जहाँ तक हम बच्चों की अभी तरबियत की बात कर रहे थे रक्षंदा, तो मुझे लगता है जहाँ हमने समाजी एक बात की कि समाजी तौर पे भी बच्चों की तरबियत होनी चाहिए।

0: कहीं पे भी आप किसी भी बच्चे को देखें, देखिए कहते हैं ना कि बच्चे सबके सांझे होते हैं, आप कहीं पे भी किसी भी बच्चे को देखें उसको रोकें, ये ना सोचें कि उसके घर वाले बुरा मानेंगे, उसे कान से पकड़ें और उसको घर तक ले जाएं। आपकी मोहल्ला कमेटी है, आपकी मस्जिद में छोटी छोटी कमेटीज बनाइए जहाँ पे इस ड्रग जैसी वबा के लिए आप उस पर रोकथाम लगाएं। हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो कि एक उनमें एक मोटिवेशनल पावर है, वो एक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं और उन लड़कों की तरबियत करें, उनकी इस बात पे रोक लगाएं कि वो ड्रग्स जैसी वबा में मुलव्वस ना हों।
1: बिल्कुल, देखें ये जैसा कि हम अभी प्रोग्राम की शुरुआत से ही बात कर रहे हैं कि ये हमारा एज अ सोसाइटी रोल है, क्योंकि आप ये देखें कि अगर कोई शख्स है जो ड्रग अब्यूज़ में या सब्सटेंस अब्यूज़ में मुलव्वस है, तो इसका असर सिर्फ उनकी घर की चार दीवारी में नहीं पड़ता, इसका असर जो है वो पूरे समाज में पड़ता है। यही लोग जो सब्सटेंस अब्यूज़ में मुलव्वस होते हैं, कल को ये चोरी चकारियाँ भी करते हैं, ये लोग लोगों को लूटते भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब इनको घर से पैसे मिलना बंद हो जाते हैं, घर वालों को एक बार पता चल गया तो वो रोकथाम लगाते हैं, और उसके बाद जो ये लोग हैं ये निकल जाते हैं सोसाइटी को हार्म करने और पहुंचाने के लिए। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एज अ सोसाइटी जो है इस चीज़ को देखें।
0: अभी आपने देखा होगा रक्षंता, बड़गाम में कितना बड़ा एक वाका हो गया कि किस तरह से एक एक नौजवान ने 11 साल की बच्ची जो थी और किस तरह से उसकी उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई। तो ये चीज़ें भी जो हैं इन पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मैंने पहले ही कहा जिस तरह से आप बच्चियों की तरबियत करते हैं उसी तरह से हमें अपनी लड़कों की भी तरबियत ज़रूरी करनी चाहिए। जी
1: जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि फिर एक सोशल ईविल से कई और सोशल ईविल्स जो हैं वो उभर कर आते हैं। आप ये देखें कि कोई इंसान, किसी ने अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ किया है तो फिर उसके बाद आप उस इंसान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने होशो हवास में रहकर कोई डिसीजन ले या कोई काम करे। तो जाहिर सी बात है कि फिर ऐसे लोग जो हैं वो कई और गलत काम भी करते हैं। लेकिन अब ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि आपने कहा कि एज अ सोसाइटी हमें इस चीज़ को टैकल करना है। ये सिर्फ गवर्नमेंट का, पुलिस का काम नहीं है। सबसे पहले हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो ये चीज़ें बच्चों तक या हमारे नौजवानों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमारे अपने हैं। ये लोग जो है चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचकर जो है किसी की ज़िंदगी तबाह करने के लिए, किसी का ख़ानदान, किसी की सात पुश्तें मैं कहूँ तबाह करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो हमें इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जो बच्चे हमें ऐसे मिलें कि जो इस गलत काम में मुलव्वस हैं, उनको समझाना, उनका ध्यान रखना, उनको इस चीज़ से निकालना हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं ये भी कहूँगी कि पेरेंट्स जो हैं, अपने घर के जो लोग हैं, उनको ये स्टिग्मा अपने दिमाग से निकालना होगा कि अगर हम अपने बच्चे के लिए किसी से मदद मांगने जाएं तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये लोग क्या कहेंगे से ही मुझे लगता है 90% लाइव्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। इतने सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर्स के पास, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लेकर नहीं जाते, क्योंकि वो यही समझते हैं कि बात बाहर आ जाएगी, लोग क्या कहेंगे, और फिर जब बात बाहर आनी होती है तो वो इस तरह से आती है कि वो बात फिर छुपाए नहीं छुपती। तो मुझे लगता है ये अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही कि इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप जो हैं वो घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि खुल के सामने आए। रक्षंता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबरक ताला आपको उम्र नूर शारे ज़ुल्करनैन अता फरमाए। आज बस इतना ही, अगला प्रोग्राम लेकर रहूँगे फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जब तक के लिए खुदा हाफिज़ नासिर।
2: समय आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम बज़्म निस्वा। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। अब आकाशवाणी दिल्ली से खबरें नश होंगी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह

0: प्रधानमंत्री तकाईची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाईची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
1: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी।
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
2: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में

0: कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है।
1: श्रोताओं,
0: एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे

0: भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हो।
1: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
1: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
1: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
1: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
3: महाराज की जय हो,
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
6: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
6: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
6: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
1: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
6: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
7: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
6: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
7: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
0: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
8: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा? गाड़ी में बैठ कर
9: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
8: किसके पास जा रहा
9: है?
7: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
1: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
0: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाते।

0: आता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी।
1: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, घबराओ मत।
0: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
3: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो।
7: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
8: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण

0: आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय

0: ए नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों शुरू करते हैं बातचीत, आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
9: आदित्य L1 के बारे में?
2: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
10: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
7: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
8: सुमित तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
9: अच्छा सर।
6: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
7: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
8: बच्चों दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती, सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
6: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
8: हाँ सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
6: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
8: शाबाश, समझ गए ना?
9: जी सर।
7: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?

0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहां चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
1: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
2: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
3: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
1: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना।
2: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
1: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
4: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
3: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
1: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
3: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
5: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
6: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
9: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
10: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित

0: बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहाँ प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
1: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
0: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: समय नाप समाप्त कर रहे थे NCERT का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम उमंग। हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आई समीन आपको शराबी फिल्म से अनजान और प्रकाश मेहरा के बोल सुनाते हैं। मौसीकार है बप्पी लहरी और आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की है।

0: जी दोस्तों, ये था शराबी फिल्म का नकमा। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें थी, प्रकाश मेहरा और अनजान के बोल थे, बपी लहरी की मौसीकी थी। हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 एक मीटर और FM 103.5 MHz पर। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेज़ी खबरों के बुलेटिन नशर करेंगे।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब सनाई तकाईची से सालाना सरबरा बातचीत की है। भारत और जापान ने मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें इक्तसादी, सिक्योरिटी और तवानाई की यकीनी फराहमी, अद्वियात और AI के शोबे शामिल हैं। अकवाम मुत्तहदा जनरल असम्बली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज़ की एक मरतबा फिर हिमायत की गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला जत्था रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई है। जुनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली में फैल

0: गया है, ये शुमाली और मगरबी रियासतों की जानिब मजीद आगे बढ़ रहा है। और फीफा आलमी कप में अमरीका ने 2002 के बाद से नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। बेल्जियम सेनेगल को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। भारत और जापान ने आज दवासाजी, मसनूई जहानत, एआई, इक्तसादियात और तवानाई की सिक्योरिटी समेत कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान के वजीर आजम सनाई ताकाइची के साथ सालाना छोटी मीटिंग की। इस मौके पर फरीकैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तआवुन और इश्तराक को मुस्तहकम करने पर बातचीत की और उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के बाद एक मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आज के दौर में भरोसा और एतमाद सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत और जापान का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में होता है और दोनों मुल्क आज़ादाना और खुले भारत बहरुल काहिल को तरजीह देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्क इक्तसादी और तवानाई की सिक्योरिटी की अहमियत को बखूबी समझते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के शोबे में साझेदारी भारत और जापान के दरमियान तआवुन का सबसे ज्यादा अहम सुतून होगा।
1: कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: इससे कबल आज जापान के वजीर आजम ताकाइची राष्ट्रपति भवन के अहाते में रस्मी इस्तकबालिया दिया गया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। जापान के वजीर आजम भारत के 3 रोजा दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची हैं। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा है। वजारत खारजा ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकत दारी को मजीद आगे ले जाने के सिलसिले में एक अहम कदम है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि भारत और जापान के ताल्लुकात मुसलसल आला सतह के सियासी राबतों पर मबनी हैं। अभी हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापान के वजीर आजम से बातचीत की थी। गुज़श्ता बरस नवंबर में जोहान्सबर्ग में G20 समिट के मौके पर भी दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी। बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी के बारे में एक जामे कन्वेंशन बनाने की भारत की तवील अरसे से चली आ रही तजवीज़ की अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली में एक बार फिर हिमायत की गई है। दहशतगर्दी से निपटने की हिकमत अमली से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा की नवी जायजा मीटिंग के दौरान भारत की तजवीज़ को 140 मुल्कों की हिमायत से मंजूर किया गया, जिसमें मेंबर मुल्कों पर जोर दिया गया है कि कन्वेंशन को कतई शक्ल देने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। कन्वेंशन की तजवीज़ भारत ने 30 साल पहले पेश की थी। अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि कानूनी खदुखाल पर आलमी सतह पर इत्तफाक राय ना होने की वजह से दुनिया में दहशतगर्दी की रोकथाम की कोशिशें कमजोर हुई हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से निपटते वक्त दोहरा मैार नहीं अपनाया जाना चाहिए। भारत ने इस सिलसिले में अपने पुख्ता मौकफ को दोहराया है कि किसी भी सूरत हाल में दहशतगर्दी को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता और इस लानत को ख़त्म करने के लिए उसने जामे आलमी कार्रवाई पर जोर दिया है। अक़वामे मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक आलमी हिकमत अमली के नवे जायजे को इख्तियार किए जाने के दौरान अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करते हुए UN में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि दहशतगर्द होता है और इस बात पर जोर दिया कि झूठे जवाब या सियासी मसलहत पसंदी की आड़ में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें कमजोर नहीं हो सकती।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बुनियादी कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोजा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के दो रास्तों से शुरू होगी, जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात के कुछ मजीद हिस्सों, मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ गया है। इसी दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी से लोगों को राहत मिली है और रियासत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई है। मानसून के रियासत में पहुंचने के बाद ऐसा हुआ है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: जनूब मगरबी मानसून बाज़ाब्ता तौर पर मंगल को उत्तर प्रदेश पहुंच गया और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता 24 घंटे में औसत से शदीद बारिश दर्ज की गई, जिससे गर्मी के तवील सिलसिले से लोगों को राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत शदीद बारिश हुई, जिससे कुछ इलाकों में मामूलात जिंदगी मुतासर हुए, ताहम दिन का दर्जे हरारत नीचे आ गया। किसानों के लिए बारिश एक बड़ी राहत साबित हुई है, क्योंकि धान की बुआई मुकर्रर वक्त से पहले ही पीछे चल रही है। IMD ने आज कई अजला में शदीद बारिश की पेशगोई की है और कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के मजीद आगे बढ़ने के लिए मौसम साजगार है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। जराये ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची में लोक भवन में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जाम नजरसानी से मुतालिक फॉर्म को भरने और दस्तखत करने के बाद मुतालिका BLO के सुपुर्द किया। इस मौके पर आला चुनाव अफसर के रवि कुमार, रांची के जिला चुनाव अफसर मंजुनाथ भजंतरी और दूसरे चुनाव अहलकार भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत ने समाजी सिक्योरिटी 2020 पर कोर्ट के निफाज के हिस्से के तौर पर EPF स्कीम 1952 की जगह मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड EPF स्कीम 2026 को नोटिफाई किया है। नई स्कीम के तहत EPF की लाजमी हिस्सेदारी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। फीफा आलमी कप में नॉकआउट मरहले में एक्स्ट्रा टाइम के बाद शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए बेल्जियम सेनेगल को 2-3 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। दूसरी जानिब मुआविन मेजबान अमेरिका ने 2002 के बाद नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की। उसने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हराया और प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाई तकाइची से सालाना सरबराह बातचीत की है। भारत और जापान ने मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें इक्तिसादी, सिक्योरिटी और तवानाई की यकीनी फरहमी, अद्वियात और AI के शोबे शामिल हैं। अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज़ की एक मरतबा फिर हिमायत की गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला जत्था रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई है। जुनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली में फैल गया है, यह शुमाली और मगरबी रियासतों की जानिब मजीद आगे बढ़ रहा है। और फीफा आलमी कप में अमेरिका ने 2002 के बाद से नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly.

जी दोस्तों, आप फिल्म मैंने दिल तुझको दिया का ये टाइटल सॉन्ग सुन रहे थे। परवीन भारद्वाज ने इसे लिखा था, डब्बू मलिक की मौसीकी थी और इस नगमे को गाया था सोनू निगम, सुनिधि चौहान और साथियों ने। आपको बताते चले कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर का स्टेशन और मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय रात 9:23 पर प्रोग्राम नष्ट होगा बुजुर्गन हिंद खत्र। मेहमान हैं सूफी शायर अली मोहम्मद मिस्किन। साइंस सीरियल समाप्त करें शब 10 बजे और शब 10:30 पर पंजाबी प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए।

मीडियम वेव 200 हर्ट्ज 8.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर ये आकाशवाणी का श्रीनगर का स्टेशन है। पेश है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जी फौजी भाइयों, ये था प्रोग्राम का पहला नगमा। यह था एआर रहमान की मौसिकी में जावेद अख्तर का लिखा गीत, और इस नगमे को आवाज़ें दी थी एआर रहमान, श्रीनिवासन और साथियों ने। फिल्म का नाम था लगान, और लगान फिल्म ने आज 25 साल मुकम्मल किए हैं, और लगान के 25 साल मुकम्मल होने की तकरीबात आमिर खान मेलबोर्न जाएंगे इस सिलसिले में। फौज भाइयों, हिंदुस्तान से बाहर हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े फिल्मी मेले इंडियन फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न के 17वें एडिशन का इनेकाद 13 से 23 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। इस फिल्म फेस्टिवल का आगाज ऑस्कर के लिए नामजद फिल्म लगान की रिलीज के 25 साल मुकम्मल होने पर मुनक्कद होने वाली खसूसी तकरीब से होगा, जिसमें अदाकार और प्रोड्यूसर आमिर खान शिरकत करेंगे। फेस्टिवल के मुंतजमीन के मुताबिक खसूसी कर्टन रेजर प्रोग्राम 9 जुलाई को मेलबोर्न के मारूफ ACMI सिनेमा में मुनक्कद किया जाएगा। इस मौके पर फिल्म लगान की खसूसी नुमाइश की जाएगी, और इसके साथ इस साल के फेस्टिवल का बाज़ाब्ता आगाज भी होगा। साल 2001 में रिलीज होने वाली लगान फिल्म बेहतरीन गैर मुल्की जबान की फिल्म के जुमरे में ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद होने वाली हिंदुस्तान की दूसरी फिल्म थी। ये फिल्म आज भी हिंदुस्तानी सिनेमा की यादगार तरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। रियासत विक्टोरिया की हुकूमत के ताउन से मुनक्कद होने वाले इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न गुज़श्ता बरसों में हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए बैनुल अक्वामी सतह पर एक मोतबर प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, एआर रहमान, ऐश्वर्या राय बच्चन, रानी मुखर्जी, रामचरण, विजय सतोपीते, विजय कौशल, विजय वर्मा, कबीर खान और दीगर फिल्मसाज भी शिरकत कर चुके हैं।

जी फाजी भाइयों, ये था हद कर दी आपने फिल्म का नगमा। आनंद बख्शी के बोल थे, आनंद राज आनंद की मौसीकी थी और आवाज़ें थी उदित नारायण और विभा शर्मा की। फौजी भाइयों, जया जानकी 1 अरब व्यूज़ हासिल करने वाली पहली फिल्म बन गई है। अदाकारा रकुल प्रीत सिंह की रिलीज़ के बाद नाकाम होने वाली फिल्म जया जानकी नायक ने एक नई तारीख रकम करते हुए यूट्यूब पर 1 अरब व्यूज़ मुकम्मल कर लिए हैं। इस शानदार कामयाबी के साथ ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई है। ये संगे मील न सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए एक तारीखी लम्हा है, बल्कि डिजिटल दौर में फिल्म की गैर मामूली मकबूलियत का भी सबूत है। 2017 में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म को बाद अज़ यूट्यूब पर पेश किया गया, जहां इसने मुसलसल नाजरीन की तवज्जो हासिल की। फिल्म की मजबूत कहानी, जज्बाती मनाजिर, मुतासिर कुन अदाकारी और ख़ानदानी तफरी ने इसे दुनिया भर के शायकीन में बेहद मकबूल बना दिया, जिसके नतीजे में फिल्म ने 1 अरब व्यूज़ का तारीखी हदफ अबूर कर लिया। इस कामयाबी पर रकुल प्रीत सिंह ने सोशल मीडिया पर मदाहों का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा है कि आप सबकी मोहब्बत और हिमायत ने जया जानकी नायक के सफ़र को हमेशा यादगार बना दिया। शुक्रिया।

जी फौजी भाइयों, ये था रिफ्यूजी फिल्म कनकमा। जावेद अख्तर के बोल थे, अनु मलिक की मौसीकी थी, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ें थी। आइए अब एक और नकमा आपको सुनवाते हैं। ये है संघर्ष फिल्म कनकमा। समीर के बोल है, जतिन ललित की मौसीकी है, श्रद्धा पंडित और सोनू निगम की आवाज़ें हैं।

जी दोस्तों, ये था संघर्ष फिल्म कनकमा। समीर के बोल थे, जतिन ललित की मौसीकी थी, सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाज़ें थी। फौजी भाइयों, फिल्म आवारापन 2 का टीज़र जारी हुआ है, जो कि फिल्म आवारापन के टीज़र ने 2007 में रिलीज़ होने वाली कल्ट फिल्म आवारापन की याद दिला ताज़ा कर दी है। और शायकी ने इमरान हाशमी के मशहूर किरदार श्योम पंडित की वापसी का ज़बरदस्त खैर मकदम किया है। टीज़र जारी होने के बाद फौरन बाद सोशल मीडिया पर मद्दाहों के रद्दअमल की भरमार हो गई, जहां लोगों ने तकरीबन 2 दहाइयों बाद इस कहानी के दोबारा आगाज़ पर अपनी खुशी और जोश का इजहार किया। मद्दाहों की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत और पजीराई के बाद इमरान हाशमी ने मंगल को इंस्टाग्राम पर एक जज्बाती पोस्ट शेयर करते हुए अपने मदाहों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने असल आवारापन में अपने किरदार और इसके सिक्वल में अपनी नई झलक पर मुश्तमिल एक कोलाज शेयर करते हुए बताया कि ये फिल्म और इसके किरदार इनके लिए क्या अहमियत रखते हैं। अपने पैगाम में इमरान हाशमी ने लिखा है कि आवारापन मेरे लिए कभी सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि ये शुभम के साथ गुजरे हुए 19 बरसों का सफ़र है, जो हर जगह मेरे साथ रहा। मद्दाहों के मुसलसल मोहब्बत और हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने मज़ीद लिखा है कि शुभम से मोहब्बत करने, इस शानदार और पुरखलुस इस्तकबाल के लिए और इन तमाम लोगों के लिए अपने दिल खोलने का शुक्रिया अदा किया है जो इस सफ़र का हिस्सा बने। फौज भाइयों, आवारापन 1 मिनट और 45 सेकंड पर मुश्तमिल टीज़र का आगाज़ इमरान हाशमी के मोटरसाइकिल चलाने के मंजर से होता है, जहां इनका किरदार कहता है कि कुछ लोगों की कहानियां इनकी मर्जी से ख़त्म नहीं होती है, इसकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती है। टीज़र्स में 2007 के फिल्म में श्रिया शरण के अदा करदा किरदार आलिया हमीद को खराज अकीदत भी पेश किया गया है। पस मंज़र में मकबूल गाने तो फिर आओ के लिए इसका नया वर्जन के साथ इमरान हाशमी का किरदार कहता है कि दर्द से मेरा पुराना रिश्ता है। मुद्दाहों को टीज़र में अदाकारा दिशा पटानी, शबाना आज़मी और दीगर फनकारों की झलक भी देखने को मिलती है। हिदायतकार नितिन कटकर की हिदायत कारी में बनने वाली आवारापन 2 शिवम पंडित की कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस मशहूर फ्रेंचाइज में एक नया बाब शामिल करेगी। असल फिल्म आवारापन, जिसकी हिदायतकारी मोहित सूरी ने कभी की थी, 2007 में इमरान हाशमी और श्रिया सरन की अदाकारी में सजी यह फिल्म इब्तदाई तौर पर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसने मदाहों के दरमियान एक मजबूत कल्ट फैन फॉलोइंग हासिल कर ली।

0: जी दोस्तों, आपने ये नगमा सुना, ये था फैज़ अनवर का लिखा हुआ, निखिल वैनी की मौसीकी थी, उदित नारायण की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था जानम। आपको बताते चले कि आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से और आप हमें सुन सकते हैं DTH और ऑल इंडिया रेडियो की मोबाइल ऐप पर।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: जय बाबा बरसानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
3: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
2: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की पवित्रता बनाए भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें, अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
3: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

फौज भाइयों, ये थे निदा फाजली के अशार। तरकीब फिल्म का नाम था आदेश श्रीवास्तवा की मौसीकी थी और आवाज़ें थी जगजीत सिंह और अलका याग्निक की। फौज भाइयों, आप इस वक्त आकाशवाणी श्रीनगर से फिल्म संगीत का प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपके साथ हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में फिल्मी दुनिया की और अदाकार अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर एक्शन कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। अपने रिलीज के सिर्फ 4 दिनों के अंदर फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ का हिस्सा अबूर कर लिया है। पीर को फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 8.50 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जिससे भारत में इसका कुल मजमुआ 72.25 करोड़ हो गया। फिल्म के आलमी आमदनी 106.48 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अहमद खान की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म ने अपने चौथे दिन मुल्क भर में तकरीबन 21% का कारोबार रिकॉर्ड किया। तकरीबन 11,000 शोज में दिखाई गई फिल्म ने खास तौर पर शाम और रात के शोज में नाजरीन की अच्छी खासी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी, परेश रावल, अर्शद वारसी और राजपाल यादव शामिल हैं। फिल्म में कॉमेडी और एक्शन की भरमार है।

जी फौज भाइयों, ये था प्रोग्राम का आखिरी नगमा। इसे गाया था शान और सुनिधि चौहान ने, जावेद अख्तर के बोल थे, विशाल शेखर की मौसीकी थी और फिल्म का नाम है तारा रम पम। और आखिर पर आपको बताते चले कि यशराज फिल्म्स की जासूसी कायनात में पहली ख्वातीन की ज़ेर क़यादत फिल्म अल्फा 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।

मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। अब हमारे यहाँ से खबरें नष्ट होंगी।

0: उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो बिला किसी ताखीर के तमाम प्रोजेक्टों की बरवकत तकमील यकीनी बनाएं ताकि आम लोग इनसे इस्तिफादा कर सकें। उन्होंने रुकूमात के मुनसिफाना इस्तेमाल की भी हिदायत दी। जम्मू कश्मीर में माहौलियात को तहफ्फुज फराहम करने की गर्ज से जारी मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान द्राबी की सरबराही में आज जम्मू के ईदगाह इलाके में शजरकारी की एक मुहिम का आगाज हुआ। इस मौके पर एक पौधा लगाने के बाद डॉक्टर द्राबी ने कहा कि माहौलियात को तहफ्फुज फराहम करना न सिर्फ असर हाजिर का तकाजा है बल्कि ये मुस्तकबिल के लिए एक फायदेमंद सरमायाकारी भी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाएं। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी जराइम से मुतल्लिक विंग ने जाली तालीमी असनाद की बुनियाद पर महकमा सेहत में सरकारी नौकरियां हासिल करने की पादाश में चार अफराद के खिलाफ फॉरेस्ट मैजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इनमें पंपोश कॉलोनी छानपोरा श्रीनगर का शुजा जीलानी, उमर कॉलोनी लाल नगर छानपोरा श्रीनगर का मोहम्मद इकबाल, मलवारी पुलवामा का निसार अहमद वानी और मिडूरा अवंतीपोरा पुलवामा का रियाज अहमद शाह शामिल हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान नूरबाग में 60 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर दरिदस्त लिए गए कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने एनबीसीसी को हिदायत दी कि वो एसटीपी के इल्तिवा में पड़े तमाम कामों को 31 जुलाई से पहले मुकम्मल करे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की मुअस्सर अमल आवरी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब सनाई तकाईची के साथ भारत जापान सालाना इजलास के दौरान बाहमी मफाद के कई मामलों पर तबादले ख्याल किया। फरीकैन ने इलाकाई और आलमी नुयत के कई दीगर मामलों पर भी ख्याल का तबादला किया। इस मौके पर दोनों ममालिक ने दवासाजी, मसनू जहानत, इकतसादियात और तवानाई के शोबों में शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मफाहमत नामे तय किए। बाद में जापान की वज़ीर आज़म के साथ एक मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाजिर में एतमाद और भरोसा किसी भी कौम का सबसे बड़ा असासा है। मरकजी हुकूमत ने समाजी सिक्योरिटी 2020 से मुतलिक कोड की अमलावरी के सिलसिले के तहत ईपीएफ स्कीम 1952 को तब्दील करते हुए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 नोटिफाई कर दी है। नई स्कीम 29 जून से लागू की गई है और इसे गैजेट में भी मुश्तहिर किया गया है। दरियासना एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने माली साल 2025-26 के लिए ईपीएफ डिपॉजिटर्स पर 8.25% शरह सूद को सरकारी तौर पर नोटिफाई किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश है आज का पहाड़ी प्रोग्राम।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर तू अज दा पहाड़ी प्रोग्राम किनका में हां तुस्ती मेजबान गजाला मुमताज सामीन तुसा सारेयां को प्रोग्राम भी जी आया को आखती हां हर कदे आओ ते प्रोग्राम दी शान बताओ समीन असी कार दे अंदर जड़ा पानी इस्तेमाल करते हैं ओ पानी कई सारियां जाइयां तू आंदा ए पानी कठियां नालियां तू भी गुजर का आंदा बावलियां तू आंदा मगर जिजरा तक अस्ते कार पहुंचता है पानी उतना साफ नहीं होंदा काफी सारे लोग जड़े दरिया दे किनारे रहंदे हैं या कठियां दे किनारे रहंदे हैं ओ इस पानी को आलूदा कर सकते हैं और ए पानी जिजरा तक अस्ते कार पहुंचता इस बीच कई सारे जरासीम जड़े हैं उना सुन अपना बसेरा कीत्या दा होंदा ते ए पानी पींदे आई अगर असी भड़काए बगैर पानी पीसा तो असां दी सेहत जड़ी है खराब हो सकती है लिहाजा असां को चाहिदा कि अगर असां को इस चीज दा इल्म कि ए पानी जड़ा असीं अपने कार दे अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तोते वास्ते तो ठीक आ बाकी चीजा वास्ते ठीक आ साफ सफाई वास्ते ठीक आ मगर पीते वास्ते जड़ा ए पानी है वो सेफ नहीं होंदा असां को चाहिदा कि जड़ा पानी असीं पीते वास्ते इस्तेमाल करा उस पानी को असीं काढ़ा चंगी तरह और फिर असीं ओ पानी आ जड़ा ओ पीवा या अपने बच्चों को देवा और अपने बुजुर्गों को ते सामीन गला और करसा ते पहला सुनदे आ प्रोग्राम दी ए पहली सौगात सैफुल मलूक आवाज मास्टर करतार चंद औरां दी

0: इकदाम किए गए थे। यात्रियों ने हुकूमत इंतजामिया और मुकामी लोगों की जानिब से किए गए बेहतरीन इंतजामात और खुलूस इस्तकबाल पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। पिछले साल 4,15,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे, जबकि इस साल अब तक 3,60,000 से जायद यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन की है। यात्रियों की सहूलियात और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने पिछले साल के मुकाबले में इस साल बेहतर इंतजाम किए हैं, ताकि यात्रा पुरअमन और खुश असलूबी से मुकम्मल हो सके।
1: इस्तकबाल वास्ते पहुंचे कई लोगों सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर दे नाल गल करदे होया आखिया,
2: मेरा नाम फहाद है। हम बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। सुबह से उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कश्मीरियों की जो हॉस्पिटैलिटी है वो हमेशा एक खूबसूरत रही है। हमने हमेशा हर किसी को जो भी कश्मीर आया है उनको तहे दिल से उनका स्वागत किया है।
3: मेरा नाम है किरण वेली। हम सुबह से बैठे हैं, जो अमरनाथ यात्रा हर साल की तरह यहाँ उनका इस्तकबाल करने के लिए आए हैं।
4: बहुत खुशी की बात है कि श्री अमरनाथ यात्रा जी जो है, हम कश्मीर में यहाँ सारे हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर टनल पे उनका वेलकम कर रहा है, जो कि गेटवे ऑफ कश्मीर है।
1: इस मौके उतर डीसी कोलगाम शहजाद आलम, डीआईजी साउथ कश्मीर जावेद इकबाल मत्तू, एसएसपी कोलगाम अनायत अली चौधरी और दो अफसरान भी मौजूद आसे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन आख्या है जे बाख्तियार उस्ताद एक तालब इलम को पुरअतमाद बढ़ा सकता है और मजबूत तालीमी इदारे खुशहाल समाज को बढ़ाने बिच अहम रोल अदा कर रहे हैं। इन्हां गलों का इजहार एलजी सुन स्कूली तालीम महकमा SCERT और भारती एयरटेल फाउंडेशन दे सांझे एहतमाम थी जम्मू बिच मनकदा एक त्याड़ा सलाइत साजी प्रोग्राम नाल खिताब करदे होया कीता। मनोज सिन्हा सुन आखे जे तालीम दा मकसद इरतकाई अमल को बढ़ावा देना है।
5: यदि टीचर्स इम्पावर्ड होंगे तो स्टूडेंट्स आत्मविश्वासी बनेंगे। यदि शिक्षा सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर एक उज्ज्वल सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होगा। यह एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के व्यापक उद्देश्य से भी जुड़ा हुआ है।
1: इस मौके उतर एलजी सुन कई जहीन तालब इलमा बिच इनाम बंडे ते कई किताबां दी रस्म रोनवाई भी अंजाम दिती। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਨ AIR ਔਰ DTH ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੁਣ ਆਖਿਆ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਏਕ ਚੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਅਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਅੱਜ ਜਨੂਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੁਪਿਆਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਜਮੂਈ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਅਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਨ ਨਿਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੁਣ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਣ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਅਮਲ ਕੋ ਦਵਾਮ ਬਖਸ਼ਣੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਹਾਲੀਆ ਕਿਰੀੜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾ ਬਾਗਾਤ ਕੋ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਣ ਆਖਿਆ,
6: जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं ऑनरेबल MLA जैनपुरा, ऑनरेबल MLA शुपैया, इन दोनों से हम सुनना चाहते थे कि कहाँ पे खामियां हैं और क्या कुछ दुरुस्त करना बाकी है। यहाँ जो अफसरों की टीम है, एक अच्छी टीम है, DC साहब, इनकी लगातार कोशिश है कि जिले में जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जाए।
1: सेहत और तिबी तालीम दी वजीर सकीना इत्तू सुन अस्पतालां विच बीमारां वास्ते दस्तयाब तिबी सहूलतां विच मजीद बेहतरी आणने दी जरूरत उत्ते जोर दिता है। उन्हां सुन श्रीनगर दे बिमना इलाके विच कायम बच्चियां वास्ते मखसूस अस्पताल दा दौरा करके उत्थे दस्तयाब तिबी खिदमात दा तफसीली जायजा कीता। वजीर मौसूफा सुन तमाम अस्पतालां विच सफाई सुथराई को यकीनी बनाने दी वी हदायत दिती। मरकजी हुकूमत सुन जम्मू व कश्मीर बिच डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर दे बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने दी गरज थी। वजीर आजम फंड दे तहत UT वास्ते मसनूवी जहानत उत्ते मबनी 275 पोर्टेबल एक्सरे मशीना, 9 MRI यूनिट और 7 मैमोग्राफी यूनिट्स वास्ते रुकूमात वागुजार कीतियां हैं। इस हवाले थी सेहत दी मरकजी वजारत और जम्मू व कश्मीर हुकूमत सुन एक मफामतनामे उत्ते दस्तखत कीते हैं। ये तशखीसी आलात चुने गए सरकारी तिबी अदारियां बिच लाए गए सन। قانون ساز اسمبلی دے سپیکر عبدالرحیم رات سن بڈگام ضلع دے آر این بی محکمے دے افسران دی ایک میٹنگ بچ ضلع دے مختلف علاقیاں بچ جاری ترقیاتی پروجیکٹاں دی پیش رفت دا جائزہ کہدا انہاں سن افسران کو ہدایت دیتی جے او بلا کسی تاخیر دے تمام پروجیکٹاں دی ویلے اتا تکمیل کو یقینی بڑھاون تاں جے عام لوگ انہاں تے فائدہ چاہ سکن انہاں سن حکومت دے منصفانہ استعمال دی

0: जी सामीन, तुसा एक गीत सुनिया, आवाज आसी सैयद मुहम्मद इकबाल मलनगामी होरां दी।
1: ते सामीन, आओ प्रोग्राम दे आखिर विच सुनदे आं अनायतुल्ला खान होरां को।

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.8 एक मीटर के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। जमीन 5 बज चुके हैं। अब पेश होता है गोजरी प्रोग्राम।

मिन कमर महमूद हुसैन सलीम तक कैसरदीन कैसर ने कहानी सुनानी शुरू की ता नूर महमूद नूर मिजाइया शायरी आले पास है ऐसा मुड़िया जे इस मैदान का खिलाड़ी बन के रह गया। उनकी तकरीबन सारी शायरी तंज मिजाक की सूरत में है। तो उन्होंने इसके अलावा पहाड़ी जबान में भी मिजाक लिखण का कामयाब तजुर्बा किया है। गोजरी में उन्होंने कई खूबसूरत मिजाइया नज़म लिखी हैं जिनमें दो ब्याह शेर त कुत्तो तर लाडलो पूत शामिल हैं। गोजरी में शायरी के अलावा उन्होंने कई स्टेज ड्रामा लिखा तो स्टेज करवाया जिड़ा मिजाइया अंदाज की वजह से लोगों ने मुझ पसंद किया है। गोजरी ड्रामा की तारीख नूर महमूद नूर का नाम ते बगैर मुकम्मल नहीं। नूर महमूद नूर और ने पंजाबी शायरी में दो किताबचा जिनमा रब दे प्यारे ते वफातनामा साईं मीरा बख्श का नाम नाल शाया करवाया है।

0: मुश्ताक साहब हैं, इन लोगों को बाद में मैंने पता चला कि ना मजा में ये लोग भी लिखे लगा और अच्छो लिखे लगा। तो बहरहाल इनकी कुछ चंद चीज में पढ़ी, जिस तरह बाबू नूर और अंको दो ब्याह वो में पढ़े, तो इस तरीका ना आगे बद हो गए। तो एक बार हॉस्टल के बीच एक रजौरी को एक शायर तशरीफ ले आए, तो उसने कुछ शेर सुनाया कि ये मैं पढ़ना है जी महफिल के बीच, फलानी जगह कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें ये पढ़ना है। तो मैं भी सुने तो मैं सोचे हम इस तरह की चीज लिख सकूंगा, फिर मैं भी शुरू कर ली। बहरहाल उसकी वह नज़म थी सौकण, मैं क्यों हम ही सौकण लिखूँ, तो हूँ कितनी इस तो अच्छी लिख सकूँगा कि इस तो बुना ही रह के लिखूँ। बहरहाल मैं भी लिखी और उस ना बड़ी हौसला अफजाई हुई जिस वक्त मैं सुनाई, रेडियो ते सुनाई, टीवी ते भी नशर हुई, एकेडमी वाला ने छापी, मुशायरा में भी पेश होती रही, बड़ी जगह वहाँ पढ़ी गई। तो बहुत हौसला अफजाई लोगों ने की और बहुत लोग हंसे उस पर। तो फिर मैंने अपनी जगह एक हौसलों मिली कि ना हूँ लिख सकूँगा।
1: ताजुद्दीन ताज साहब एक शायर जुड़ा हुआ है, एक उस्ताद की हैसियत भी रखा है। इसके नाल नाल यूं थारा तो पूछना चाहूंगा कि घर के बीच या थारा इलाका में और भी कोई शायर थो जिससे तुम मुतासर हुआ कि इतफाकन तुम लिखता गया और दरिया के नालू चलता ही गया।
0: नहीं, ऐसो ग्राम कोई नहीं था, मेरे एक उस्ताद अहमदीन अनवर साहब है
1: जी,
0: वे उर्दू का शायर है तो उर्दू में भी लिखे हुए था। तो कितने स्कूल में कोई फंक्शन हुआ था तो वे शेर पाठ छुड़े था, तो मेरा जहन में भी शेर रहे था, अच्छा शेर क्या। तो वह एक थोड़ी जी थी कि ये उर्दू में लिखे हैं, तो गोजरी या पहाड़ी या पंजाबी इन चीज़ों अंदर किसी को ध्यान उस वक्त नहीं था। तो बहरहाल जिसको हम श्रीनगर में आ गए, मैं उन थारा का जिक्र कर छोड़े तो उन लिख तो गयो और मतलब गोजरी जबान में उत लिखने वालों उस वक्त में कोई नहीं था। बाद में जिसको तुम श्रीनगर में आयो फिर आस्ता आस्ता पता चलियो कि शरीफ शाहीन साहब लिखे था, वे लिखे हुए था शायरी। और उस तो अलावा डॉक्टर बारू साहब हैं, वे कहानियों का शाहकार है, ला उनकी किताब आपती छाँ आई है, उनकी कहानियों में मिजा है। मिर्जा खान वकार की जैसे गल करा कि वे कहानियों में उनकी मिजा है, बहुत अच्छी कहानी लिखी और मतलब वे इस वक्त दुनिया में मने जी उनकी शोहरत है, गोजरी कहानियों का कई तरजमा और
1: थारे गल बात को सिलसिलो जारी रहेगा और इस फन की गल हम करता रहेंगा। तुमने मारा सामीन वास्ते के कुछ आने
0: देखिए, गजल की गल करा था कि गजल जड़ी है संजीदा गजल मारा शायरा ने मुझे लिखी है, तो मैं भी थोड़ी जी कोशिश की कि मैं इस मैदान में थोड़ी जी हरकत करूं
1: जी।
0: तो मैं एक गजल लिखी है, मैं के ख्वाब बखानी रात होयो पानी पानी रात, अखां अगे सब कुछ फिरता आ गई याद पुरानी रात, अखां अगे सब कुछ फिरता आ गई याद पुरानी रात, चन की चान लोड़ू चन फिर अड़ीक ने खानी रात, या तरती है मेरी मुजरम या तरती है मेरी मुजरम, मेरो खादो हानी रात, मुक्की नींद ख्वाब गमा फिर के ताज टपानी रात, मैं के ख्वाब बुखानी रात होयो पानी पानी रात। ते दूजी एक गजल और है, छोटी बैर मैं लिखूंगा, छोटी बैर की है, आ तू दुनिया सारी ले जा इश्क की एक बीमारी दे जा, चंद तू उफरा उडारी दे जा कौम ना हिम्मत सारी दे जा, नोई एजाद की लारी लाता नोई इजाद की लारी लाता, तकड़ी एक सरदारी दे जा, तीर वफा को लाण की खातर नजर एक तेज शिकारी दे जा, ताज महल के बदले मीना ताज महल के बदले मीना, टूटी याद की टारी दे जा।
1: मारी गोजरी जड़ी शायरी है इसमें संजीदगी है और वह हमारा तवारीखी तौर पर शायद विरासत में मिली है, लेकिन मिजा या शायरी की तरफ घट लोग आए हैं और हमारा जरा नौजवान आज जी अकेडमी की तरफ किताब छापी जाए उस तरफ उनको रुझान बड़ो काट है, जो भी शेरी अदब है, क्योंकि हमारा जो लोक अदब है एक तो नसरी अदब है दूजो शेरी अदब है, इसके बीच कितनी गुंजाइश है तरक्की की ओर और लोगों तक मिजा या जड़ी शायरी है वो पहुंचे। एक तो उसको जो वसीलो है वो रेडियो है, बाकी और प्रोग्राम किस सतह का होना चाहिए ताकि ये जड़ी चीज है लोगों तक पहुंचे और बड़े जल्दी पहुंचे क्योंकि आज इंटरनेट को जमाना भी है।
0: तो जनाब हमारे को वसाइल का मामला है, वसाइल बहुत काट है, मिसाल का तौर पर कल्चरल अकेडमी जड़ी है हर साल बी टू थ्री तक इशू जरा किताबों का छापे, लेकिन बदकिस्मती यह है कि माम कभी खरीद के पढ़ने वास्ते हमारा लोग तैयार नहीं होता, वे किताब उन लोगों तक पहुंचे जेड़ा आपे लिखे तो आपे पढ़े। मिसाल के तौर पर हूँ लिखूंगा हूँ ही किताब लिया हूँ ही पढ़ू, तू जब कोई लिया सह नहीं, नौजवान तब को जड़ो है वो नहीं खरीदो किताब नहीं लिया, तो उसकी वजहत यह है कि जैसी नजर मारी एक गजल है वह संजीदा है, उसमें दुख भरे हुआ है दर्द है, सोचो जी छोड़ो दर्द को हमें क्या करना है, राख छुड़ी नहीं लेता उन्ना इंटर

0: उनका की दिलचस्पी की चीज नहीं मिलती, इस वजह तो भी मैं नहीं करता। और उस संजीदा शायरी का लिखने के पीछे भी एक राज है, क्योंकि हालात ने हम लोग इतना दबाया कि जो कुछ अपना ऊपर बीती वही उसने कलम बंद करके लिख छोड़ी। हालात ने मतलब संजीदगी की तरफ ज्यादा मोड़े, कम लोग के जड़ा मतलब मिजाज की तरफ हूँ आया या लिखने लगा, क्योंकि हालात ने दबाया हुआ था। मिजाज भी बजाते खुद जड़वा वो दर्द ही है, वो भी दुख है, उसकी सूरत है कि इंसान रो तो हुआ है अंदरों, लेकिन बार हुआ हैसी की जबान जड़ी है मजाक को जबान मखोलिया चीज लिख छोड़ा है। तो वह आम लोग उसने मजाक समझ के हंसे मी, लेकिन जिसे भल तरह समझे तो वह भी संजीदगी है, वो भी संजीदा चीज है।
1: ताजी दिन ताजी सर थारी गल दुरुस्त है, महाराज जो नौजवान है इस अदब ते आज तक बिल्कुल उनको कोई वास्तो ही नहीं, और उसके नाल नाल जो मारो नशर अशियात को जो तरीको है उस तक रसाई मारी नहीं, तो यो अदब जो इसकी निखार जड़ी है या इसकी फलाह बहबूद वास्ते के कोई करने की जरूरत है?
0: इस वास्ते सब तो बड़ो प्लेटफॉर्म यो ही है कि एकदम रेडियो तो का हवा में आई चीज चली गई
1: जी,
0: महफूज मत रही, किताबी सूरत में महफूज है लेकिन पढ़ने वाला काटे। इस वास्ते सेमिनार होना चाहिए, इस वास्ते एनजीओ काम करनी चाहिए, जिस तरीके ना बाकी जबानों का लोग करें लगावा। हमारी गमांडन जबान है कश्मीरी, इसके भी कितनी तरक्की हो रही है, कितना हर मतलब ग्राम हर इलाका हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे, सेमिनार करें, जबान पर गल करें, कॉन्फ्रेंस करें, इस तरीके ना हमारी भी होनी चाहिए। कल्चरल अकेडमी एकली नहीं कर सकती, क्योंकि उनको वसाइल काट हुए, वे एक कॉन्फ्रेंस कर छोड़ेंगे साल में, उसके भी ज्यादा तो ज्यादा 500 आदमी जमा हुआ है या 1000 जमा हो गए, बड़ी हद है। और वे लोग होएगा जेड़ा दानिश्वर लोग होएगा, अदीब लोग होएगा, आम लोग थोड़ा जा होएगा, आम लोग थोड़ी गल मत पहुंची, वो महदूद लोग तक पहुंची ना, जिन्हें ऑलरेडी पतो है कि ये क्या है, उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें यू पतो नहीं कि जबान क्या है, जबान के बीच किन चीजों की जरूरत है, के करनो है, अगर नई नस्ल जड़ी है उसने किस तरीका ना आम चलावेंगा, वे किस तरीका ना इस मैदान में आवेगा, वे जबान वास्ते के करनो चाहिए, उन्होंने के मसला मसाइले हमारी जबान दरपेश वे करना चाहिए, जिस तरह 8वां शेड्यूल में हमारी जबान आ जानी चाहिए, उस वास्ते जदोजहद मुझ लोग कर रहे हैं। तो बहरहाल किस साल हद तक कामयाब हुए के हुआ वो दूजी गल है, लेकिन कोशिश जारी है, उस वास्ते हमारा नौजवान नमी ज्ञान हो चाहिए।
1: ताज जी ताज साहब, चूंकि हमारी जी शायरी है और जो अदब है इसके बीच इनकलाबी शायरी की बड़ी गुंजाइश है, और इस फन के नाल तम जुड़िया अदीब होने के नाते किन लोगों और नौजवानों की जड़ी सलाहियत उन उभारे हो जाए, उन इस तरह रागब की हो जाए, क्योंकि 20वीं सदी का शुरुआत का दौर में जब अलामा इकबाल 1905-8 तक जब यूरोप में गया, या अल्ताफ हुसैन हाली की अगर हम गल करें तो उसने बड़ी इनकलाबी शायरी लिखी कुनोलियत दौर में, तो उस तरीका के जो बदलाव की जरूरत है जड़ा लोग ग्रायां ते शहरां में चाहे और शहरां ते बड़ा जड़ा शहरों में गए, तो बच्चा के अंदर नौजवानों के अंदर इनकलाब आने हो जाए, उनकी सोच में तब्दीली आनी जाए, उन्हें अपना माजी ऊपर फख्र महसूस करना चाहिए, इस वास्ते एक शायर होने के नाते तमकी महसूस करे
0: या कमी महसूस करूँ की ये इनकलाबी चीज जी हमारे को बहुत काट है। शुरू का जरा हमारा बुजुर्ग शायर था, उन्होंने शुरू में कुछ चीज ऐसी लिखी है जिनके बीच इनकलाबी चीज थी, जिस तरह के इसको फजल मुश्ताक को एक शेर याद आवे, हिम्मत करके मारो हलो ता बनेगो काम सखलो, इस तरीका ना और लोगों ने भी मतलब लिखी है चीज, मगर बहुत ज्यादा लिखी नहीं गई, कमी महसूस कर रहा इस चीज की। तो मैं मतलब कोशिश की है कि मिजाज के जरिए भी कई चीज जड़ी है तो वे इस तरह इनकलाबी चीज को तक हूँ कामयाब हूँ वह दूजी गल है, बहरहाल कोशिश में की है। तो सब पहला तो मैं ये हाजल सुना छोड़ू, और हाजल सुनाने तो पहला तो मैं यह गल कहूँगा कि हाजल जड़ी है या अरबी के बीच पहला आई, अरबी ते मतलब फिर आ गई फारसी के बीच, फारसी बीच उर्दू में मुंतकिल हुई। तो गोजरी माँ अल्लाह का फजल ना थारी दुआ ना, मैं कोशिश की है हूँ की सादा कामयाब हूँ वह तम लोगों की मर्जी है तम जी, तो हाजल एक सुनाऊ तमना, अग वफा की जोड़ अतेरा मीना हार जा लोड़ अतेरा, प्यार की ऊंची छाले छाले मेरे पीछे दौड़ अतेरा, अपना डंगर छोड़ के लुगा मेरी मैस ना होड़ अतेरा, प्यार वफा की पूरी अंगली मेरी नासे सोड़ अतेरा, तेरी कोट कचहरी मां फिर बिकिया मेरा खोड़ अतेरा, हेर के रक्कड़ मेरी डोगी शेर है, हेर के रक्कड़ मेरी डोगी रुठा चेची पोड़ अतेरा, पूरी नफरत डूंगी लाके दिल की मार मोड़ अतेरा, बैर वफा को जिस चोटा ना बन्ना उपरू रोड़ अतेरा, नफरत आला दिल को ताज पांडो पांडो तोड़ अतेरा। ते एक और निकी जी हजल है, सोच के गुथे बड़ो खुमार, सोच के गुथे बड़ो खुमार, मोटो नक है खुंडी तलवार, दुनिया का कन सुखड़ सुखड़, दुनिया का कन सुखड़ सुख।

खड़ अरारू पार है एको पटकार। हट्टी हट्टी चुरलू चलू कन्ना ऊपर जातक सवार, बाप न बुड्ढो कहता सुने तकड़ो सोचा को म्यार। चंडो चंडी आज वफा की आशिक कहिए या लोहार, नंग मुनुंगा जातक नचे कुदै गुरबत सिर के पार।

0: इस तो अगे हम तुम्हारा मतलब वह गल कर रहे थे कि शुरू की जड़ी मारी शायरी थी वह इस तरह थी कि माहौल जिस तरह को उसी तरह लोग अगे चलता गया। यानी शिंगरा को कितने जिक्र हुआ है, कितने मालन को जिक्र हुआ है, कितने हवा को जिक्र हुआ है, कितने तलन को जिक्र हुआ है, कितने सोना सोना कट्ठा को जिक्र हुआ है, ठंडा ठंडा पानियों को जिक्र हुआ है। इस तरह मतलब सीआरपी है बहते
1: मेरो
0: अपनो जो नजरिया वो यो है कि वो शायर पर डिपेंड है कि वो शायर किस हैसियत को वो के लिख सके, वह उसकी अपनी ताकत की है
1: जी।
0: वो किस तरीके ने माहौल तो मुतासर होकर लिखे या उस तो बगैर लिखे, किस तरीके ने लिखे, मगर उस जमाने का लोग भी इसी तरह लिखता रहे जिस तरीके नाल मतलब माहौल उन्हें मिलते हुए उसी तरह लिखता गया। यानी स्याल को मौसम थो तो फिर उन्होंने स्याल की गल की है, बाहर को मौसम आते हुए

0: चिराग को सुधार हो जाए। अदब जेड़ा साफ शफाफ अदब सामने आवा है, मतलब मेरा मैं कुताही अगर मेरे पर तनकीद लिखी जाएगी, चार आदमी तनकीद लिखे, पांच आदमी लिखे, जिस वक्त तुम सोचूंगा कि यार मेरे में इतनी गलती है, दोबारा हूँ भी गलती नहीं कर सकूँ, सुधर जाऊंगा, उसना सही तरीका ना पेश करने की कोशिश करूंगा, उस तरीका ना अदब जो है वो मेरी अदब आवा।
1: गोजरी जबान और अदब ना किड़ा किड़ा मसाइल जड़े वे दरपेश हैं, इसके बीच कोई रिसर्च भी हो रही है, क्योंकि मगरबी तहजीब उसका असरात है, इंटरनेट को दौर है, बाकी जबाना की जड़े लहजे हैं उनका असरात है,
0: वे चीज मारे सामने है, मतलब दूजी जबाना का असरात जड़ा है, बाकी मगरबी इस वक्त दौर को जड़ो हमारा असरात है वे हैं, लेकिन उस तो पाका कि हम उन चीजों में मतलब उस नहीं है जिन में बाकी लोग हैं, हमारा मारो कल्चर अजा भी सेफ है, लेकिन हमने भी कोशिश करनी है काफी ताकि हम इसे और सेफ कर सका, मारो फोक अदब है जो हमने उसमें प्रोजर्व करना चाहिए, वो कितने जाया ना हुआ है, कहानी है, गीत है, बाकी चीजें, तो वे चीज हमें प्रोजर्व करनी है और कोशिश यह करनी है कि हम अपनी जबान जड़ी है बोलने की कोशिश करा।
1: ताजिन ताजी साहब, तुमने जड़ी अपनी शायरी की उसमें कितनी फिर किताब छापी?
0: मेरी किताब ख्वाब सुलूना ना है
1: जी,
0: तो उसमें कुछ संजीदा चीज भी है, कुछ नात भी है, तो नजम भी है, कथा भी है, तो गीत भी है, तो उस हवाला ना तुम्हें दो नजम सुनाऊ। मेरी मुंह मंगलार बनी है, पूरा कार पर पार बनी है, टुक देखूं डडियार बनी है, तो बारार ते पार बनी है, पांडो टेंडर कार बनी है, चंडे मुच लोहार बनी है, मुंह लड़का अंगार बनी है, पारा रिच की नार बनी है, सुख सुख देखूं तार बनी है, चंगी मोटी खार बनी है, एक अंगल की चार बनी है, ओकड़ सिर तलवार बनी है, कंडा की सरकार बनी है, मेरा गाल को हार बनी है, यारी ला के यार बनी है, दिल के अद बचकार बनी है।
1: ताज दिन ताज साहब, तुमने किताब भी बड़ा ज्यादा लिखे हैं और अच्छा लिखे हैं, तुम्हारा सामी नोस्ते सौगात के थारे
0: ते मोबाइल के ऊपर है, कन मुंडा के फोन मोबाइल, उनका चावे कर में फाइल, गए के रसो काल होर किला के, डाडी कर ठकोर किला के, सजे खबे इखी करता, कटी तंगे जोर किला के, फिर अगे की तारीख ना मतलब इसको जोड़ा है, रात की दीती जगराता ने खटी, सुतंग कटा जागतंग की कटी, वेड़ो खड़ा के ताज नहीं था तो, पोता आज पोगते दादा की चटी, ख्वाब को ताणो कातले ता मनु, सूत वफा पड़कतले ता मनु, तकवा को मुला गातले ता मनु, जे अबलीस न प्रतले ता मनु। तो एक अगे हो रहा है कि मैं पिछली बार या पांडो तोयो, पानी आली बांथिंदी है, मैं पिछली बार या पांडो तोयो, पानी आली बांथिंदी है, नाल जमन के मक्खन खादो, सोच सरोड़ी तां थिंदी है, अंदरों पावे लुखो दिसे, बारों यार की हां थिंदी है, मां मुई है खाखा लुखो, ती उसकी को ना थिंदी है। तो अगे यो है बड़ी बार, बड़ी सथरो डा खुरली मां, तक फिर खोरो ता खुरली मां, जे ते खाणो दूध ते मक्खन, ता रख पूरो का खुरली मां।
1: ताज दिन ताज साहब, धारणा अदब बारे गल हुई, तुमने कितनो काम कियो और इसमें और कितनी गुंजाइश है, और वैसे ते शायर तम कड़ी चीजें की बेबसी जुड़ी है ना वह महसूस करें, ताकि नौ नौजवानों तक जुड़ा हमारा शायर था, कदीम शायरी जुड़ी हुई है, वह एक वरासत है, वह नौ नौजवानों तक पहुंचेगी ताही उसको फायदो है। तुमने स्टूडियो में तशरीफ आनी, थारो बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
2: गोजरी मिजाइया का नामवर शायर चौधरी ताज दिन ताज और हमने गलबात की थी, तो यो इंटरव्यू उनको आर्काइव्स से हमने कटे थो, अगला प्रोग्राम हमारा कुल नात शरीफ है, तो सुन ले।

तो अखा का बफुला की पारी तमन्ना दिल माना ले बेकरारी अड़ी का।

समय अभी आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 268.8 एक मीटर के नवा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला ऐलान सुनें।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। समय ने आपको बताते चले कि आज शब के 9:30 पर प्रोग्राम समाप्त करें बुजुर्ग हिंद खत्र। आज के प्रोग्राम के मेहमान बुजुर्ग हैं सूफी शायर फारूक अहमद पीर, उनसे हम कलाम होंगे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर गुलाम रसूल आखून। शब के 10:30 पर पंजाबी मैगजीन समाप्त करें। यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समीन 5:50 हो रहे हैं। आइए गोजरी में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन के नाल हूं शाजिया चौधरी। पहला एम खबरों की सुर्खी। भारत और जापान के दरमियान कई शोबा में मुफामतनामा पर दस्तखत। इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा का आगाज, 4,800 यात्री आज आया वादी दर। मजबूत तालीमी इदारा खुशहाल समाज का जामिन, लेफ्टिनेंट गवर्नर तय। वजीर आला ने शुपिया जिला का तरक्याती मंजरनामा को लियो जायजो। तफसील नाल खबर सुनो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसिब के नाल भारत जापान सालाना इजलास के दौरान आपसी मफाद का कई मामलात पर तबादलो ख्याल कियो। इस मौके पर दो मुल्का ने दुआसाजी, मसनूई जहानत, इक्तिसादियात तवनाई का शोबा में शराकतदारी न होर मजबूत करण वास्ते मफामतनामा तय किया। बाद में जापान की वजीर आजम के नाल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता में नरेंद्र मोदी ने कहो कि एतमाद और परोसो किसी भी कौम की सारंते बड़ी दौलत है।
2: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
1: सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा को बाजाबता आगाज कल यानी 3 जुलाई न पवित्र गुफा में दर्शन के नाल ही हो रहे है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह यात्रियों का पहला काफिला न जम्मू का भगवती नगर बुनियादी कैंप ते वादी वास्ते रवाना कियो। इन यात्रियों में 3,707 मर्द और 816 ख्वातीन शामिल है। इस मौका पर एलजी ने यात्रियों वास्ते नेक ख्वाहिशात को इजहार करता हुआ कहो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज, मकामी लोका और दूजा मुतलकीन ने यात्रा का इनकाद वास्ते तमाम इंतजाम मुकम्मल किया है। यात्रियों को पहलो काफलो नवयुग टंडल क्रॉस करके काजीगुंड गहरा वादी पहुंच गयो है। टंडल पर समाज का मुख्तलिफ तबका नाल ताल्लुक रखने आला लोगों ने इन यात्रियों को वालाना इस्तकबाल किया और उन्हें शरबत और खाउन पीउन की चीज पेश की। एक रिपोर्ट के नाल मारा नुमाइंदा खुर्शीद बडरू।
3: खुशगवार मौसम के बीच 4,800 यात्रियों को गेटवे ऑफ कश्मीर काजीगुड में पुलिस, सिविल इंतजामिया, मुकामी शहरियों, ताजर अंजुमनों और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस मौके पर यात्रियों पर फूल निछावर किए गए और इनके खैर मकदम के लिए खसूसी इंतजाम किए गए थे। यात्रियों ने हुकूमत, इंतजामिया और मुकामी लोगों की जानिब से किए गए बेहतरीन इंतजाम और खुलूस इस्तकबाल पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। पिछले साल 4,15,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे, जबकि इस साल अब तक 3,60,000 से जायद यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन की है। यात्रियों की सहूलियत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने पिछले साल के मुकाबले में इस साल बेहतर इंतजाम किए हैं ताकि यात्रा पुरअमन और खुश असलूबी से मुकम्मल हो सके।
1: इस्तकबाल वास्ते पहुंचा कई लोगों ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हुआ क्यों।
4: मेरा नाम फहाद है। हम बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ पे पहुंचे।

0: जो है सुबह से उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कश्मीरियों की जो हॉस्पिटैलिटी है वो हमेशा एक खूबसूरत रही है। हमने हमेशा हर किसी को जो भी कश्मीर आया है उनको तहे दिल से उनका स्वागत किया है।
1: मेरा नाम है किरण वेली। हम सुबह से बैठे हैं जो अमरनाथ यात्रा हर साल की तरह यहाँ उनका इस्तकबाल करने के लिए आए हैं।
2: बहुत खुशी की बात है कि श्री अमरनाथ यात्रा जी जो है हम कश्मीर में यहाँ सारे हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर टनल पे उनका वेलकम कर रहे हैं जो कि गेटवे ऑफ कश्मीर है।
3: इस मौका पर डीसी कुलगाम शहजाद आलम, डीआईजी साउथ कश्मीर जावेद इकबाल मट्टू, एसएसपी कुलगाम इनायत अली चौधरी और दूजा अफसर भी मौजूद था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क्यूआई बा अख्तियार उस्ताद एक तालिब इलम ना पुर एतिमाद बना सके और मजबूत तालीमी इदारा खुशहाल समाज की तश्कील में अहम रोल अदा करें। इन गलों को इजहार एलजी ने स्कूली तालीम महकमा एससीईआरटी और भारतीय एयरटेल फाउंडेशन का मुश्तरक एहतमाम नाल जम्मू में हुई एक दिन की सलाहित साजी प्रोग्राम में बोलता में क्यों। मनोज सिन्हा ने क्यों कि तालीम को मकसद इरतिकाई अमल ना फरोग देनो है।
4: यदि टीचर्स इम्पावर्ड होंगे तो स्टूडेंट्स आत्मविश्वासी बनेंगे। यदि शिक्षा सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर एक उज्ज्वल सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होगा। यह एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के व्यापक उद्देश्य से भी जुड़ा हुआ है।
3: इस मौका पर एलजी ने कई जैन तालिब इल्मों ना इनाम दिता जबकि कई किताबों की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई। ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज पुरानी मंडी जम्मू में वाका कदीम श्री राम मंदिर में हाजिरी दी और जम्मू कश्मीर का लोगों की खुशहाली और तरक्की वास्ते प्रार्थना की। उन्होंने साधुना श्री अमरनाथ जी यात्रा का आगाज की मुबारकबाद दी। एलजी ने आज जम्मू में एक मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट वेन न चंडी दसी या गड्डी एचडीएफसी बैंक ने कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी मुहिम के तहत फराहम की है। एलजी ने बैंक का इस कदम की तारीफ की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर का हर एक जिला की एक जैसी तरक्की वास्ते पुरजम है। उन्होंने आज जनूबी कश्मीर का शुपियां जिला को दौरा कर गए उत मजमुई तरक्याती मंजरनामा को जायजो लियो। उन्होंने जिला का बाग मालका और किसाना ना दरपेश मसला को भी जायजो लियो। बाद में मीडिया नुमाइंदा नाल गल करता वहां सीएम ने कहा
5: जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं ऑनरेबल एमएलए जैनपुरा ऑनरेबल एमएलए शुपिया इन दोनों से हम सुनना चाहते थे कि कहाँ पे खामियां हैं और क्या कुछ दुरुस्त करना बाकी है। यहाँ जो अफसरों की टीम है एक अच्छी टीम है। डीसी साहब इनकी लगातार कोशिश है कि जिले में जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जाए।
3: मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर का बुनियादी ढांचा ना फरोग देन वास्ते वजीर आजम फंड के तहत यूटी वास्ते मसनूई जहानत पर मबनी 275 पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स 9 एमआरआई यूनिट और 4 डिजिटल मेमोग्राफी यूनिट्स वास्ते रकम दी है। इस ताल्लुक नाल सेहत की मरकजी वजारत और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक मुफामतनामा पर दस्तखत किया। ये आलात मुंतखब शुदा सरकारी तिबी इदारा में लाया जाएगा। कानून साज असेंबली का स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने अचरार शरीफ का सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लेप्रास्कोपी और डिजिटल एक्सरे मशीन को इफ्तिताह कर गए उन्ना अवाम के ना वक्फ कियो। उन्होंने कहा कि इन सहूलियत की फरहमी ना अचरार शरीफ का लोगों की मांग पूरी हो गई है। अब्दुल रहीम राठर ने सेहत का शोबा में और बेहतरी आने वास्ते सरकार का अजम को आदो कियो। वजीर तालीम सकीना इतू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तालीमी मंजरनामा न और फाल बनाने हुकूमत की तरजियात में शामिल है। श्रीनगर में आज प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का एक वफद नाल गल करन के दौरान उन्होंने कहा कि इस शोभा की खामियां न दूर करने वास्ते मुनासिब कदम चाया जा रहा है। सकीना इतू ने वक्फ का मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करने को यकीन दवायो। જમ્મુ કાશ્મીરમાં માહોલિયાતના તહફુઝ દેવા વાસ્તે જારી મુહિમ કહેતા જમ્મુ કાશ્મીર વક્ફ બોર્ડ કી ચેરપર્સન ડોક્ટર સૈયદ અરશા અંદરાબી કી સરબરાહીમાં આજ જમ્મુ કા ઈદગાહ ઇલાકામાં શજરકારી કી એક મુહિમ કો આગાઝ હોયો. ઇસ મોકા પર એક બૂટો લાઉણ કે બાદ ડોક્ટર અંદરાબી ને કહ્યું કે માહોલિયાતના તહફુઝ દેણો ન સિર્ફ જરૂરી હૈ બલ્કિ યુ મુસ્તકબિલ વાસ્તે એક ફાયદામંદ સરમાયાકારી ભી હૈ. ઉન્હોંને લોકોં તે અપીલ કી કે વે અપને આસપાસ જ્યાદા તે જ્યાદા બૂટા

0: اعلام ہے۔ نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کو ایک اجلاس آج ونگ کی صدر شمیمہ فردوس کی صدارت میں منعقد ہوئے، جس دوران بیگم شیخ محمد عبداللہ کی ورثی کا سلسلہ میں کیا جاؤن آڑا پروگراما نا آخری شکل دیتی گئی۔ اجلاس کے دوران مرحومہ نا خراج عقیدت پیش کیو گیو۔ مرکزی حکومت نے سماجی سیکیورٹی 2020 کے متعلق کوڈ کی عملاوری کا سلسلہ کے تحت ای پی ایف اسکیم 1952 نہ تبدیل کرتا ہوا ایمپلائیز پروویڈنٹ فنڈ اسکیم 2026 نوٹیفائی کر چھڑی ہے۔ نوئی اسکیم 29 جون تے لاگو کی گئی ہے اور اس نہ گیزٹ میں بھی مشتہر کیا گیا ہے۔ اس دوران ایمپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او نے مالی سال 2025-26 واسطے ای پی ایف ڈپازٹس پر 8.25% شرح سود نہ سرکاری طور پر نوٹیفائی کیو ہے۔ اس کا نالی گوجری خبر ختم ہوئی۔ خبروں کو اگلو بلٹن آکاشوانی تے شام 6:05 پر کشمیری میں نشر کیا جائے گا۔ دیو اجازت، رب رکھو۔
1: آکاشوانی سری نگر ہے، سمینا یہ چلتے ہیں آکاشوانی دلی کے سٹوڈیوز ہندی خبروں کے لیے۔
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन

0: संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये छे आकाशवाणी श्रीनगर समीर मोहतरम छे बजे तो 5 मिनट सपद अक वक्फ बद बोजन गमी बी पन अजुक प्रोग्राम
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर

0: शेरबीन के समय को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं, श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में जायरीन का पहला काफिला वादी पहुंच गया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का शोपियां जिले का दौरा। डोडा में तुगयानी आई, सड़क राबिते मसदूद। और करना सब डिवीजन में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 9018074333।
5: 9018074333।
6: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी की कमी द्रामस।
7: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेल का इस्तेमाल करान?
6: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
7: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदार में त्रावनी है। विटामिन ए छो सानी इम्यूनिटी बढ़ावान, तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदार में,
6: मगर ये है आज सठा द्रो।
7: हाँ ना ना, सुई कमत मज मुशक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
8: पनुन तो पन्ने आयाल जिंदगी बनाई सेहत मंद, प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयो बाजरस में दस्तियाब। फोर्टिफाइड वसैलन जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in पर राइट तक।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
10: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
11: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहाँ प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत

0: से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
1: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
0: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ यात्रा के पहले काफिले को गुफा की तरफ रवाना किया। पहले काफिले में 4,822 यात्री, 259 हल्की और भारी गाड़ियों के काफिले में श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए। वाजिर है कि यात्रा के सिलसिले में बालतल और पहलगाम के बेस कैंपों पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मौसूल इत्तिलात के मुताबिक मजमूई तौर पर 2,510 यात्री पहलगाम रास्ते से सफर कर रहे हैं, जबकि 2,312 यात्रियों ने बालतल का रास्ता इख्तियार किया है। एलजी मौसूफ ने तमाम यात्रियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा एक ऐसा मुकद्दस सफर है जहां अकीदत और रूहानी बेदारी का हसीन इम्तिजाज होता है। उन्होंने कहा कि मैं तमाम यात्रियों के लिए महफूज, आरामदेह, खुशगवार और रूहानी तौर पर इत्मीनान बख्श सफर की दुआ करता हूं। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए मुनासिब सिक्योरिटी, तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई, रिहायश और दीगर तमाम तरह के जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इधर अनंतनाग से इस तारीख की इत्तला है कि आज जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात ने नुनवन फ्रिस्किंग प्वाइंट का दौरा किया और जायरीन की हिफाजत और उनकी पुरअमन आमदरफ्त के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया। इससे कबल जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग, एसएसपी अनंतनाग और एमएलए पहलगाम ने नुनवन बेस कैंप में यात्रियों के पहले काफिले का इस्तकबाल किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज भारतीय एयरटेल फाउंडेशन, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एससीईआरटी और महकमे स्कूली तालीम के बाहमी इश्तराक से मुनाकिदा एक रोजा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर असातिज़ा की पेशेवराना सलाहियतों को मजबूत बनाने और स्कूली तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरक तौर पर तैयार करदा तदरीसी वसायल भी जारी किए गए। अपने खिताब में एलजी मौसूफ ने कहा कि असातिज़ा को बाइख्तियार बनाना और दरअसल तलबा में एतमाद पैदा करने की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि तालीम का असल मकसद सिर्फ इम्तहानात में कामयाबी हासिल करना नहीं बल्कि जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाना है, जबकि एक मुखलिस उस्ताद तलबा की तकदीर संवारने में अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में मुनशियात, जहनी दबाव, समाजी दबाव और डिजिटल दुनिया के खतरात जैसे चैलेंजेस के पेश नज़र स्कूलों का किरदार मजीद अहम हो गया है, लिहाजा असातिज़ा को जदीद तरबियत और वसाइल फराहम किए जा रहे हैं ताकि तलबा की शख्सियत साजी और उन्हें जिंदगी के चैलेंजेस से निमटने के वो काबिल बना सकें। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नई कौमी तालीमी पॉलिसी के मकासद का जिक्र करते हुए कहा कि इसका हदफ जिम्मेदार, खुद कफील और बासलाहियत शहरी तैयार करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू डिवीजन में 10 अजला में 11वीं और 12वीं जमात के लिए ऑनलाइन क्लासेस के आगाज को भी तालीमी मुसावात की जानिब एक अहम कदम करार दिया। समिनाज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां का दौरा किया। दौरे के दौरान मौसूफ ने जिले के तरक्याती मंजरनामे का बगौर जायजा लिया। इत्तिलात के मुताबिक वजीर आला ने जिले में कई तरक्याती और तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और साथ ही कई दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार लोगों को तमाम बुनियादी सहूलियात की माकूल फराहमी यकीनी बनाने की वादेबंद है और लोगों की जिंदगी में हर तरह की बेहतरी लाने के लिए कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया जाएगा। एक रिपोर्ट के साथ शोपियां से फैयाज वानी।
3: वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शोपियां जिले का दौरा करके तरक्याती सरगर्मियों, अवामी फलाही प्रोग्रामों और मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया और इस मौके पर उन्होंने मजमूई तौर पर 76,45,21,000 रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले नए तरक्याती मनसूबों का इब्तदा किया और संग बुनियाद भी रखा। वजीर आला के इस दौरे को जिले में तरक्याती रफ्तार को मजीद तेज करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और अवामी मसाइल के बरवक्त अजाले की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। वजीर आला के हमरा नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी, वजीर बराई सेहत, मेडिकल एजुकेशन और आला तालीम सकीना यतू, जिरात के वजीर जावेद अहमद डार, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वाली और सिविल इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला तरीन अफसरान भी थे। दौरे के दौरान वजीर आला ने मनी सेक्रेट में एक आला

0: मूसलाधार बारिश के बाईस मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए। शदीद बारिशों से छोटे बड़े नालों में तुगयानी आई, जिससे नदी नालों के करीब रहने वाले मकीनों में खौफ हिरास फैल गया। इधर सिंथन के इलाके में रात के वक्त आसमानी बिजली गिरने से एक बकरवाल मोहम्मद खादिम को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बताया जाता है कि उसकी 110 भेड़ें इस वाकये में हलाक हो गईं। उधर डोडा जिले के कई इलाकों में भी कल रात बादल फटने के वाकयात पेश आए, जिसके नतीजे में इन इलाकाजात और मुढ़ी के इलाकों में न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचा बल्कि सड़क राबते भी मसदूद हो गए। बताया जाता है कि बादल फटने से इन इलाकों के नदी नालों में तुगयानी आई और देखते ही देखते सड़कें इस कदर जेरे आब आई कि चलना मुहाल हो गया। तफसीलात के साथ डोडा से नसीर अहमद खोड़ा।
1: गुज़श्ता रात की तेज आंधी तूफानी बारिशों व जिला डोडा के चार अलग अलग मुकामात पर बादल फटने के नतीजे में जहां एक तरफ खड़ी फसलों व मेवा बागात को नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी जानिब पानी के तेज बहाव की वजह से नदी नालों में तुगयानी आने से मुख्तलिफ राबता सड़कों पर पस्सियां गिराई हुई है। गुंदोबलेस के कालजू गासर देवड़ी तलोगड़ा गौड़ी कोटी व देसा में तेज बारिशों के साथ बादल फटने के वाकात पेश आए हैं, जिससे गुंदोबलेस के मुख्तलिफ मकामात के साथ साथ डोडा कोटी देसा तिब्बत हाश अलकुंड में फसलों व मेवा का जबरदस्त नुकसान हुआ है। गुंदों की शालरा चिल्ली पिंगल गौड़ी गुजरगौड़ी व दीगर चंद रहायशी इलाकों में राबता सड़कों पर पस्सियां गिर आई हैं और चंद रहायशी मकानों में नदी नालों का पानी दाखिल हुआ है, जबकि गुजरगौड़ी में वाका एक स्कूल को जुजवी नुकसान पहुंचा है और यहां के कई मकामत पर लकड़ी के आर्जी पुलों के ऊपर तुगयानी से पुल व फुटपाथ भी नुकसान ज्यादा हुई है, जबकि गुंदो बलेज गिलकना रोड जो कि इलाका के 5000 आबादी के लिए वाहिद रास्ता है, गुज़श्ता और काल रात की तूफानी बारिशों की वजह से बंद पड़ी है। इस पर पस्सियां गिराने की वजह से आबादी को अब पैदल सफर करना पड़ता है। दरी असना गुज़श्ता रात एक निजी गाड़ी को गुंदो से 3 किलोमीटर दूर शुक्रा के मकाम पर हादसा पेश आया और गाड़ी सड़क से लड़ककर एक गहरा नाला में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार एक नौजवान दानिश अहमद वालिद मोहम्मद अशरफ कोहली साकना गुंदो बलेस मौका पर ही जाम भाग हुआ। इस हादसा पर साबका MLC मोहम्मद इकबाल भट्ट बरेसी ने दुख का इजहार करते हुए गमजदा खानदान के साथ ताजियत की है और सरकार से इनके लवाहकीन के हक में माकूल मुआवजा फराहम करने का भी मुतालबा किया है।
0: डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। उधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि आज सुबह संग्राम भाटा के इलाके में एक वर्कशॉप में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में वहां खड़ी 3 गाड़ियां और मुतादिद पावर टिलर्स जलकर खाकिस्तर हो गए। ताहम वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लोलाब के चारी जब कलारूस इलाके में कल बादल फटने के वाकये में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि शदीद बारिश और तुगयानी के बाईस एक मस्जिद, एक पुल और इलाके को मिलाने वाली एक सड़क को नुकसान पहुंचा। मकामी जराये के बकौल सैलाबी रेले ने पानी की फराहमी की स्कीम को भी शदीद मुतासिर किया, जबकि तेज बहाव अपने साथ एक दर्जन से ज्यादा मवेशी भी बहा ले गया। समन वादी लोलाब अपनी बेमिसाल कुदरती खूबसूरती की वजह से एक मुनफरिद मकाम रखती है। इसी खूबसूरत वादी के दामन में वाकई देवर इंद्रबुग लोलाब का कायर वन पार्क आजकल सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। रोजाना बड़ी तादाद में मकामी और गैर मकामी सयाह इस पार्क की सैर के लिए आते हैं और इसकी कुदरती दिलकशी और पुरसकून माहौल की भरपूर तारीफ करते हैं। ताहम अभी तक इस पार्क को महकमे सियाहत ने अपने इख्तियार में नहीं लिया हुआ है, जिसके बायस यहां बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। बताया जाता है कि कायरवन पार्क में पीने के पानी और टॉयलेट की सहूलियात गैर तसल्ली बख्श हैं, जिसके नतीजे में यहां आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मकामी आबादी मुतालबा करती है कि कायरवन पार्क में तमाम तर बुनियादी सहूलियात के लिए हंगामी इकदाम किए जाए। और अब रुख करते हैं कर्नाका, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं इशफाक सैयद और बात कर रहे हैं करना सब डिवीजन में गैर तसल्ली बख्श तिब्बी सहूलियात के ताल्लुक से।
2: करना सब डिवीजन में महकमा सेहत अमले की शदीद कमी, खाली असामियों और मुसलसल तबादलों के बाद संगीन बोहरान से दोचार है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक ब्लाक में 36 तिब्बी इदारों में से सिर्फ 18 मुकम्मल तौर पर फाल है, जबकि बाकी 18 गैर फाल या जुज़वी तौर पर फाल है। शहरबीन के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक 149 मंजूर शुदा असामियों में से सिर्फ 53 पर मुलाजम तैनात हैं, जबकि 96 असामियां खाली पड़ी हैं। इसी तरह 13 डॉक्टरों की मंजूर शुदा असामियों में से सिर्फ 11 डॉक्टर खिदमात अंजाम दे रहे हैं और 20 असामियां खाली पड़ी हैं। सब सेंटर हरिडाल फगवान सतपुरा और शडपला में नामनासिब इमारत मौजूद है,

0: और ना ही तिबी अमला, जिसकी वजह से ये मराकज सिर्फ कागजों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। खोड पारा सब सेंटर कई बरसों से किराए की इमारत में कायम है, लेकिन वहाँ भी कोई अमला तैनात नहीं। इसी तरह धनी, कोना गबरा, पठान गली और हजीतरा में इमारतें मौजूद होने के बावजूद तिबी अमले की कमी के बाद लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात नहीं मिल पा रही है। न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर गुंडीशाट में भी अमला मौजूद नहीं, जबकि हाजीनाड़, शमसपोरा और कंडी के तिबी मराकज भी अमले की शदीद कमी का सामना कर रहे हैं। अपर जबड़ी में तैनात मुलाजम की वफात के बाद वहां का मरकज भी खाली पड़ा हुआ है। सीमारी, द्रगढ़ और गुंडी गुजरा मरकज भी अमले की किल्लत का शिकार हैं, जिसके नतीजे में पूरा हेल्थ निजाम तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। दस्तावेजात के मुताबिक ब्लाक करना में मजमुई तौर पर 36 टिबी अदारे हैं, जिनमें एक सब जिला अस्पताल, 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 5 न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 7 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और 20 सब सेंटर शामिल हैं। इनमें से सिर्फ 18 अदारे मुकम्मल तौर पर फाल है।
1: करना से इशफाक सईद की रिपोर्ट आपने सुनी। इशफाक सईद ने हमें तिबी सहूलियात की नाकिस फराहमी के ताल्लुक से और भी तफासील भेजी थी। हमें उम्मीद है कि हम वो तफासील कल के या परसों के प्रोग्राम में नश्र करेंगे। इधर आज जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग में एक मुमताज अदीब, सकाफत शनास और कलमकार जी आर हसरत गढ़ा के साथ एक मुलाकात तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत प्रोफेसर गुलशन मजीद ने की, जबकि डॉक्टर अब्दुल अहद ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोफेसर फारूक फैयाज ने मेहमान जीविकार की हैसियत से तकरीब में शिरकत की। तकरीब के आगाज में कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम ने खुतबे इस्तकबालिया पेश किया। और प्रोग्राम के आखिर में यह खबर कि आज एमएलए बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर बड़गाम बशीर अहमद गनाई और एडब्ल्यू आर एंड बी बीरवा शब्बीर अहमद मीर के साथ हल्के के कई स्कूलों का दौरा करके वहां जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया, जिनमें मिडिल स्कूल बच्चीपुरा, रोशनाबाद, बटपुरा, कानेहमा, पेट कानेहमा और कांधहमा वगैरह शामिल हैं। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपने तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, श्रीनगर। फोन नंबर 9419000025।
4: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग।
5: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
6: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
7: आज आई मेरी मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी की कमी द्रामस।
8: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
7: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
8: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्रावने यवा। विटामिन ए छो साने इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
7: मगर ये है आज सठा द्रोग?
8: हाँ ना ना, सुई कमत मज मुशक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
9: पनुन तो पन्ने आयाल जिंदगी बनाई सेहतमंद तो प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पानो। बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसाइलन जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in
10: इशूड इन पब्लिक इंट्रस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जेंट।
11: केंद्र
10: शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता है। यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए कृपया कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नरेंद्र मोदी ने कहा कि असरे हाजिर में एतमाद और भरोसा किसी भी कौम का सबसे बड़ा असासा है।
1: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि बाइख्तियार उस्ताद एक तालिब इल्म को पूरा एतमाद बना सकता है और मजबूत तालीमी इदारे खुशहाल समाज की तश्कील में अहम रोल अदा करते हैं। इन बातों का इजहार एलजी ने स्कूली तालीम महकमा, एससीईआरटी और भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के मुश्तरक एहतमाम से जम्मू में मुनक्किदा एक रोजा सलाहियत साजी के प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि तालीम का मकसद इर्तिकाई अमल को फरोग देना है।
2: यदि टीचर्स इम्पावर्ड होंगे तो स्टूडेंट्स आत्मविश्वासी बनेंगे। यदि शिक्षा सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर एक उज्ज्वल, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होगा। यह एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के व्यापक उद्देश्य से भी जुड़ा हुआ है।
0: इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई जहीन तालिब इल्मों में इनामात तकसीम किए, जबकि कई किताबों की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट वैन को झंडी दिखाई। ये गाड़ी एचडीएफसी बैंक ने कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी मुहिम के तहत फराहम की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बैंक के इस कदम की सराहना की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के हर जिले की यकसान तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने आज जनूबी कश्मीर के शुपया जिले का दौरा करके वहां मजमुई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने जिले के बाग मालिकान और किसानों को दरपेश मसाइल का भी जायजा लिया। शुपया से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट।
3: जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जिला शोपियान के अपने दौरे के दौरान डीसीएफएस कॉम्प्लेक्स में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और फलाई स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर वजीर आला ने तकरीबन 76,45,21,000 रुपये की मालियत की मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला ने कहा,
4: जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं ऑनरेबल एमएलए जैनपुरा, ऑनरेबल एमएलए शोपियां, इन दोनों से हम सुनना चाहते थे कि कहाँ पे खामियां हैं और क्या कुछ दुरुस्त करना बाकी है। यहाँ जो अफसरों की टीम है, एक अच्छी टीम है, डीसी साहब, इनकी लगातार कोशिश है कि जिले में जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जाए।
3: बाद में वजीर आला ने मेगा फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी अगलर का दौरा किया। उन्होंने ट्रेडर्स फेडरेशन, सिविल सोसाइटी के अरकान और स्ट्रीट वेंडर्स के नुमाइंदगान से भी मुलाकात किया। आकाशवाणी शोबा खबर श्रीनगर के लिए शोपियान से मैं जानिसार अहमद।
0: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज श्रीनगर में सीरबाग सेमपुरा पुल पर जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने अमलावरी एजेंसी को ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी, ताकि मकामी लोगों का मसला हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस पुल से सीरबाग सेमपुरा सुमरबुग के अलावा पांपोर, चाडूरा और श्रीनगर के मुलेका इलाकों में रहने वाले लोगों को अबूर मरूर की सहूलत दस्तियाब रहेगी। ज़िराअत के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि ज़मीनी सतह पर काम करने वाले अफसरान और अहलकार सरकार के मंसूबों को अमली शक्ल देने में अहम रोल अदा करते हैं। शुपया में विकसित भारत जी राम जी का रस्मी तौर आगाज करने के लिए मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी भलाई प्रोग्राम की कामयाबी का दारोमदार अमलावरी एजेंसी या महकमे की लगन और तनदही पर होता है। तकरीब में दीही तरक्की महकमे के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद के अलावा दीगर कई अफसरान ने भी शिरकत की। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर के बुनियादी ढांचे को फरोग देने की गर्ज से वजीर आजम फंड के तहत यूटी के लिए मसनूई जहानत पर मबनी 275 पोर्टेबल एक्सरे मशीनें, 9 एमआरआई इकाइयां और 4 डिजिटल मेमोग्राफी यूनिट्स के लिए रकूमात वागुजार किए हैं। इस ताल्लुक से सेहत की मरकजी वजारत और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। ये तशखीसी आलात मुंतखब शुदा सरकारी तिब्बी इदारों में नस्ब किए जाएंगे। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुलरहीम राथिर ने आज चराज शरीफ के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लेप्रोस्कोपी और डिजिटल एक्सरे मशीन का इफ्तिताह करके उन्हें अवाम के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा कि इन तशखीसी सहूलियात की फराहमी से चराज शरीफ के लोगों की देरे न मांग पूरी हो गई है। अब्दुलरहीम राथिर ने तिबी निगहदाश्त के शोबे में मजीद बेहतरी लाने के सरकार के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तालीमी मंजरनामे को मजीद फाल बनाना

0: न होने की वजह से दुनिया में दहशतगर्दी की रोकथाम की कोशिशें कमजोर हुई हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन ने मौजूदा मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वादी के बाग मालिकान के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। किसानों से इस एडवाइजरी पर अमल करने के लिए कहा गया है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.1 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.5 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:24 और गुरूबे आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीना पेश खिदमत है तबसरा।
2: समीना आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं तजम्मुल अहमद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर से आज सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का बाजाबता आगाज किया। 57 रोजा यात्रा जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी का पहला काफिला 4,800 यात्रियों पर मुश्तमिल था, जो बालतल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ। काफिले में मजमुई तौर पर 259 गाड़ियां थीं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए हर एजेंसी को मुतहरिक रखा गया था। अमरनाथ गुफा की यात्रा प्रथम पूजा के साथ शुरू होती है और इसके बाद ही सरकारी तौर पर यात्रियों को गुफा के दर्शन करने की इजाजत दी जाती है, जिसके लिए यात्रियों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन की हुई होती है। श्री अमरनाथ जी यात्रा की जम्मू कश्मीर के लिए खासी तारीखी अहमियत है। ये यात्रा साल हर साल से फिरकावाराना हम आहंगी, आपसी यगानगत, बाहमी रिश्तों और कश्मीरियत की बेमिसाल इनफरादियत की पहचान रही है। पूरे मुल्क में श्री अमरनाथ जी यात्रा वाहिद ऐसा सफर है जिसके लिए दूसरे फिरके से वाबस्ता लोग हर सतह पर न सिर्फ ताउन पेश करते हैं, बल्कि इनके ताउन से ही हमवार यात्रा मुमकिन बनती रही है। कई दहाइयों से मुस्लिम तबके से वाबस्ता लोग यात्रियों का खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं और उन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम करने की न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करते हैं, बल्कि बाहमी भाईचारा की एक मिसाल भी पेश करते रहते हैं। लाखों यात्रियों की हिफाजत और उन्हें बेहतर सहूलियात की फराहमी में सरकारी तौर पर जिम्मेदारी होती है, लेकिन मकामी लोगों की रजाकाराना तौर पर वाबस्तगी देखने लायक भी होती है और हालिया बरसों में इसकी शमूलियत में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है। अक्सरियती फिरके की यात्रियों के साथ इस तरह की वाबस्तगी उस भाईचारे की एक खूबसूरत झलक है जो इस यात्रा के हवाले से दहाइयों का मुशाहिदा रहा है और जो सबसे बड़ी भाईचारे की दलील भी रही है। कश्मीर वादी 1990 के बाद नामसाइद सूरत हाल के घेरे में रही, लेकिन अमरनाथ यात्रा कभी न बंद हुई और न अकीदतमंदों में कोई कमी वाका हुई। इसके बरक्स हर गुजरते साल में यात्रियों की रजिस्ट्रेशन बढ़ती गई और अब हजारों में नहीं बल्कि हर साल लाखों की तादाद में यात्री अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए आते हैं। अमरनाथ यात्रा की खास बात यह है कि हर साल इसकी रिकॉर्ड तादाद दर्शन करके चली जाती है, जो कश्मीरियत को परवान चढ़ाने के सफीर बन जाते हैं, जो जम्मू कश्मीर के भारत के साथ वाबस्तगी के बंधन को मजबूत से मजबूत तर करने का मुवज्जे बनते हैं। यात्रा सिर्फ 1990 से शुरू नहीं हुई है, बल्कि इसकी शुरुआत इससे कई दहाइयां कबल हुई है। तारीखी शवाहिद बताते हैं कि ये यात्रा रस्मी तौर पर 11वीं सदी में कायम हुई और तब से इसका मुशाहिदा किया जा रहा है। जदीद इलाकाई दास्तान के मुताबिक ये गार उस वक्त तक खो गई थी जब तक कि बूटा मल्लिक नामी एक मुसलमान चरवाहे ने 1850 में इत्तेफाकी तौर पर इसे सोने के एक थैले के बदले दोबारा दरियाफ्त कर लिया था, जो इसे एक फकीर ने दिया था। सालाना यात्रा का एहतमाम और इंतजाम श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड करता है। ये यात्रा आमतौर पर हिंदुओं के मुकद्दस महीने सावन के दौरान चलती है, जो अकीदतमंदों को पहलगाम या बालतल के बेस कैंपों से 3,880 मीटर ऊंचे गार तक ले जाती है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा कश्मीरियों की मेहमान नवाजी के लिए सबसे बड़ा मौका होता है और यहाँ का हर तबका यात्रा के साथ मुंसलिक रहता है। यही वो इंतहाई जज्बाती अय्याम होते हैं जहाँ यात्रियों को बहिफाजत गुफा तक पहुँचाने में कश्मीरी मजदूर अपना पसीना बहाते हैं, वहीं उनको सफरी सहूलियात पहुँचाने के लिए अपने आप को मयसर भी रखते हैं। यात्रा की एक और खसूसियत यह है कि मुख्तलिफ जात, नस्ल और इलाकों के लोग एक साथ मिलकर सफर करते हैं। समाजी और सकाफती हम आहंगी यात्रा के दौरान अक्सर तमाम मजाहिब या बरादरियों के लोग मिलकर इंतजाम करते हैं, जो कौमी यकजहती की उम्दा मिसाल पेश करता है। इसके साथ ही आज का तबसरा खत्म हुआ। इजाजत दीजिए। शब बखैर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
4: वादी की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नष्ट होता है।

वादी की आवाज़ प्रोग्राम सुनने वाले सभी सामईन को हमारा प्यार भरा आदाब। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आए रोज़ रोनुमा होने वाले जराइम के हवाले से। जराइम किसी भी माशरे के आम तरक्की और समाजी इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा चैलेंज होते हैं। जब किसी मुल्क में जराइम की शरह में इजाफा होता है तो उसके असरात सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि आम शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी, मईशत, तालीम, तिजारत और समाजी हम आहंगी भी मुतासिर होती है। पाकिस्तान जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क है, जहाँ करोड़ों अफराद मुख्तलिफ सकाफतों, ज़बानों और रवायात के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। गुज़श्ता बरसों में मुख्तलिफ ज़राए अबलाग और सरकारी रिपोर्ट्स में इस बात की निशानदेही की गई है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बास अकसाम के जराइम अवामी तशवीश का बाइस बने हुए हैं। इनमें स्ट्रीट क्राइम, चोरी, डकैती, मालियाती फ्रॉड, साइबर क्राइम और मुनशियात से मुतल्लिक जराइम शामिल हैं। ताहम मुख्तलिफ इलाकों में जराइम की नौइयत और शिद्दत एक जैसी नहीं होती और मकामी हालात के मुताबिक इसमें फ़र्क पाया जाता है। सामईन इकराम, माहरीन के मुताबिक जराइम के असबाब पेचीदा और कई जहतों पर मुश्तमिल होते हैं। गुरबत, बेरोज़गारी, महंगाई, तालीम की महदूद सहूलतें, समाजी अदम मसावात, मुनशियात का फैलाव और बाज़ औक़ात कानून पर मुअसर अमल दरामद में मुश्किलात ऐसे अवामिल हैं जो जराइम में इजाफे का सबब बन सकते हैं। इन मसाइल का ताल्लुक सिर्फ एक मुल्क से नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से तरक्की पजीर माशरों को भी इन जैसे चैलेंजेस का सामना है। आज के दौर में साइबर क्राइम एक नई और तेज़ी से उभरती हुई हकीकत बन चुका है। ऑनलाइन फ्रॉड, जाली सरमायाकारी की स्कीमें, शिनाख्त की चोरी, सोशल मीडिया के ज़रिए धोखाधड़ी और डिजिटल माली जराइम ऐसे मसाइल हैं जिनके लिए अवामी आगाही और जदीद तकनीकी सलाहियतों की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। कराची के इलाके लियाकत आबाद में एक खातून टीचर के साथ मुबैना तशद्दुद और इज्तिमाई ज़्यादती के मुकदमे में पुलिस ने स्कूल के एक सिक्योरिटी गार्ड और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है और वाकये के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में इंसानी आज़ा की मुबैना गैर कानूनी खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक केस में अहम पेशरफ्त हुई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद

गिरफ्तार पांच मुलजमान को चार रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर वफाकी तहकीकती इदारे FIA के हवाले कर दिया है। ये फैसला ड्यूटी जज मियाँ अजहर नदीम ने FIA की जानिब से मुलजमान को अदालत में पेश किए जाने के बाद सुनाया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद तीन गैर मुल्की और दो पाकिस्तानी मुलजमान का चार रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया ताकि तफ्तीशी इदारा मजीद तहकीकात मुकम्मल कर सके। याद रहे कि FIA ने होटा टीम के तआवुन से गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में कार्रवाई करते हुए पांच अफराद को गिरफ्तार किया था, जिनमें तीन चीनी शहरी भी शामिल हैं। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक मुलजमान मुख्तलिफ अस्पतालों से इंसानी प्लेसेंटा हासिल करने में मुबैना तौर पर मुलव्वस थे। इब्तदाई तहकीकात में यह दावा किया गया है कि प्लेसेंटा पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों से जमा किया जाता है, जिसे बादजा प्रोसेस करके बैरून मुल्क भेजा जाता था। ज़राए का मजीद कहना है कि मुलजमान मुबैना तौर पर प्रोसेस शुदा इंसानी प्लेसेंटा को भेड़ के आज़ा जाहिर करके बरामद करते थे ताकि मुतल्लिका हुकाम को धोखा दिया जा सके। अदालत ने FIA को हिदायत दी है कि जिस्मानी रिमांड की मुद्दत मुकम्मल होने पर तमाम मुलजमान को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। तफ्तीशी इदारे का कहना है कि केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी है और शवाहिद की रोशनी में मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान की बात आगे और भी होगी। यहाँ पर आपके लिए पेश करते हैं ये प्यारा सा नगमा।

वादी की आवाज़ प्रोग्राम आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं और बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सामिन इकराम, किसी भी माशरे में अमन अमान की कैफियत का अंदाज़ा सिर्फ आदाद शुमार से नहीं लगाया जाता, बल्कि इस बात से भी लगाया जाता है कि आम शहरी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को किस हद तक महफूज महसूस करते हैं। पाकिस्तान में हालिया अरसे के दौरान मुख्तलिफ नौयत के जराइम और सिक्योरिटी से मुतल्लिक वाकयात ने एक मरतबा फिर अवामी तहफ़ुज़ के मौजू को नुमाया कर दिया है। जून 2024 के आखिर में कराची में सिंध रेंजर्स के एक मरकज़ पर होने वाला हमला मुल्क के नुमाया सिक्योरिटी वाकयात में शुमार किया गया। हुक्काम के मुताबिक हमला आवरों ने धमाके और फायरिंग के जरिए मरकज़ को निशाना बनाया। इस वाक़े ने यह जाहिर किया कि अगर पाकिस्तान के बड़े शहरों में मजमूई सिक्योरिटी सूरतेहाल माजी के मुकाबले में बेहतर समझी जाती है, ताहम दहशतगर्दी का ख़तरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। इसी दौरान इस्लामाबाद में रवां साल के इब्तदाई 5 महीनों के दौरान डकैती, राहजनी, चोरी, मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी और मोबाइल फ़ोन छीनने के तकरीबन 2,500 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए गए। मकामी पुलिस हुकाम के मुताबिक इन मुकदमात की तफ्तीश जारी है और मुतअद्दिद मुलजमान को गिरफ्तार भी किया गया है। ताहम शहरी हलके इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए जदीद निगरानी के निज़ाम बेहतर पुलिस गश्त और अवामी तआवुन को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर और दीगर बड़े शहरों में भी स्ट्रीट क्राइम वक्तन फवक्तन अवामी बहस का मौजू बनता रहा है। इन जराइम में अमूमन मोबाइल फ़ोन, नकद रकम, जेवरात या मोटरसाइकिल छीनने जैसे वाकयात शामिल होते हैं। माहरीन का कहना है कि शहरी आबादी में मुसलसल इजाफा, बेरोज़गारी, तेज़ रफ्तार शहरी फैलाव और माशी दबाव बाज़ोकात ऐसे जराइम में इजाफे का सबब बन सकते हैं। अब कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए होने वाले जराइम भी एक अहम मसला बन चुके हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल अदायगियों और ई कॉमर्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ साइबर जराइम में भी इजाफा देखा जा रहा है। जाली वेबसाइट्स, सोशल मीडिया पर धोखादेही, शिनाख्त की चोरी, जाली मुलाजमतों के इश्तहारात, ऑनलाइन सरमायाकारी के फ्रॉड और बैंक अफसर बनकर मालूमात हासिल करने जैसे तरीके आम शहरियों के लिए खतरा बन रहे हैं। पाकिस्तान में ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद, हरासानी, घरेलू तशद्दुद, बच्चों से ज्यादती और कम उम्र बच्चों से मशक्कत जैसे मसाइल पर मजीद तवज्जो दी जाए। जराइम सिर्फ अफराद को ही मुतासर नहीं करते बल्कि मुल्की मईशत पर भी असरअंदाज होते हैं। अगर जराइम की शरह ज़्यादा हो तो कारोबारी तबका मोहतात हो जाता है, सरमायाकारी में कमी आ सकती है और माशी सरगर्मियाँ मुतासिर होती हैं। इसीलिए माहिरीन माशियात का कहना है कि माशी तरक्की और अमन अमान एक दूसरे से गहरा ताल्लुक रखते हैं। माहिरीन का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ शफाफियत, तरबियत और अवामी एतमाद में इजाफा भी ज़रूरी है ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारियां मजीद मौसर अंदाज में अंजाम दे सकें। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह मुसद्दिका मालूमात फराहम करे और सनसनी खैजी से गुरेज करे। मजहबी और समाजी रहनुमा भी आमन, रवादारी और कानून के एहतराम का पैगाम आम करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हालिया दिनों सरगोधा के इलाके झाल चक्किया में पुलिस ने उन दो मुश्तबे मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने मुबैना तौर पर एक नौजवान लड़के को उस वक्त जिंदा दफन कर दिया जब उसने अपने साथ होने वाली जिंसी ज्यादती के बारे में अपने घर वालों को बताया। इस खौफनाक जुर्म का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब एक राहगीर ने जमीन से बाहर निकलता हुआ लड़के का हाथ देखा, जिस पर मकामी लोग जाए वकू पर जमा हो गए। उन्होंने मट्टी खोदना शुरू की तो नौजवान तश्वीशनाक हालत में मिला। मकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी जिसके बाद लड़के को तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO सरगोधा शोएब अशरफ के मुताबिक 14 साल लड़के को तकरीबन 20 दिन कबल झाल चक्कियां के इलाके में तीन मुलजमान ने

मुबैना तौर पर बदफेली का निशाना बनाया था। डीपीओ का कहना था कि पुलिस ने दो मरकजी मुलजमान का सुराग लगाकर मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया है, जबकि तीसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक और टीम रवाना कर दी गई है। ये वाकया सरगोधा में एक 7 साल बच्ची के कत्ल के चंद दिन बाद सामने आया है, जिसकी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस के मुताबिक उसके साथ ज्यादती की तस्दीक हुई थी। रावलपिंडी जाते हुए कहोटा के इलाके चक्कियां पोस्ट के करीब कैदियों की वैन से 14 कैदी फरार हो गए। वाकये के फौरन बाद कहोटा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी कैदियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हुक्काम का कहना था कि कैदी वैन को चेकिंग के लिए रोका गया। एक कैदी ने पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंक दी। पुलिस ने इलाके का घेराव करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी कर दी है। सीनियर पुलिस ऑफिसर भी मौके पर पहुंच गए हैं और सर्च ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। दूसरी जानब इस वाकये के बाद चक्कियां और गिरदोनवाह में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई, जबकि बाकी मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। सामिन किराम, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात को आगे भी जारी रखेंगे। यहां पर आपके लिए पेश करते हैं ये खूबसूरत गजल।

वादी की आवाज़ प्रोग्राम पेश हो रहा है आकाशवाणी श्रीनगर से। बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सामईन, आज के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान में जरायम की मुख्तलिफ सूरतों, उनकी मुमकिना वजूहात, हालिया वाकयात, अवामी ज़िंदगी पर उनके असरात, किए जाने वाले इकदाम पर गुफ्तगू की। ये हकीकत अपनी जगह मुसल्लम है कि जब किसी माशरे में अमन अमान मुतासिर होता है तो उसके असरात ज़िंदगी के हर शोबे पर मुरतब होते हैं। आम शहरी खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर होती हैं, सरमायाकारी की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है और तालीमी और समाजी माहौल पर भी इसके मनफी असरात मुरतब होते हैं। ऐसे हालात में रियासती इदारों, सिविल सोसाइटी, तालीमी मराकेज, ज़राए अबलाग और आवाम के दरमियान बाहमी ताउन पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो जाता है। माहरीन का कहना है कि जराइम की रोकथाम के लिए सिर्फ सख्त कवानीन काफ़ी नहीं होते, इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे समाजी और माशी हालात पैदा किए जाएं जिनमें नौजवानों को बेहतर तालीम, हुनर, रोज़गार और तरक्की के मौके मयसर हों। जब नौजवान अपनी सलाहियतों को मस्बत समत में इस्तेमाल करते हैं तो वो न सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि पूरे माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद में इजाफा, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, शिफाफ तफ्तीश, बरवक्त इंसाफ और अवाम के एतमाद को मजबूत बनाना भी इंतहाई ज़रूरी है। अवामी एतमाद किसी भी मौसर निज़ाम कानून की बुनियादी शर्त होता है। जब शहरी ये महसूस करते हैं कि कानून सबके लिए यकसां है और इंसाफ बरवक्त फराहम किया जा रहा है तो माशरे में कानून की पासदारी का रुझान भी मजबूत होता है। डिजिटल दौर ने जहां नई सहूलतें फराहम की हैं वहीं नए चैलेंजेस भी पैदा किए हैं। साइबर क्राइम, ऑनलाइन माली फ्रॉड, जाली शिनाख्त, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और डिजिटल धोखादेही जैसे मसाइल इस बात की याद दहानी कराते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ अवामी आगाही और एहतियात भी बेहद ज़रूरी है। मीडिया ज़िम्मेदाराना सहाफत को फ़रोग दे, ये भी ज़रूरी है कि जराइम से मुतल्लिक किसी भी खबर को सनसनी खैजी के बजाय ज़िम्मेदारी से देखा जाए और आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा सकती है। समय इक्राम, ये थी बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। अब आखिर पर आपके लिए ये नगमा।

0: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर होता है। अगली मुलाकात तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
1: वादे की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल

0: कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
1: Trade also is an important element of this partnership.
2: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
1: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736

0: लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये छह आकाशवाणी श्रीनगर समय 9:00 बजे।
4: سمین پیش خدمت چھ پروگرام ہم سفر یہ پروگرام چھ تہ تام واتنوان ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھچبل سری نگر برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समीन 9:15 हो रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज उर्दू खबरों के लिए।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया ममुना।

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हममनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर और समुद्री नकलो हमल के निज़ाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अवी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात लॉस एंजलिस में राउंड ऑफ 32 के मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के ताल्लुकात हकीकी तौर पर बहुत खास हैं और इक्तिसादी शराकतदारी की कामयाबी की बहुत सी शानदार मिसालें मौजूद हैं। आज शाम नई दिल्ली में भारत जापान मुश्तरका इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब जापान की महारत और सरमायाकारी भारत की रफ्तार और पैमाने के साथ यकजा होती है तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों ने शराकतदारी को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और जापान ने इक्तिसादी तहफ्फुज, मस्नूई जहानत, दिफा और सेहत जैसे बहुत से शोबों में आज समझौते किए हैं जो इस शराकतदारी को मुस्तकबिल के लिए और लामहदूद बनाएंगे।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
0: जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाई तकाइची ने अपने खिताब में कहा कि ताउन के बहुत से शोबों के माबेन तवानाई का तहफ़ुज़ इंतहाई अहम शोबों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालिया G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तवानाई के तहफ़ुज़ को मुस्तहकम करने के लिए 3 तजावीज पेश की थीं ताकि पैदावारी और सारिफीन मुल्कों के दरमियान आज़ाद और शफाफ तवानाई की तिजारत करने, तवानाई के जामे ज़खीरे का ऐलान करने और ताउन को फ़रोग़ देने को यकीनी बनाया जा सके। मोहतरमा तकाइची ने कहा कि पावर एशिया इनिशिएटिव इस नजरिए को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने हरियाणा के शहर खारखोदा में मारुति सुजुकी की गाड़ी तैयार करने की चौथी फैक्ट्री का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इससे कबल भारत और जापान ने आज मुख्तलिफ शोबों में समझौतों का तबादला किया। इनमें इक्तिसादी और तवानाई का तहफ्फुज, अदविया और मस्नूई जहानत के शोबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर नई दिल्ली में अपनी जापानी हममनसब सनाई तकाइशी के साथ सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस सतह की बातचीत की। ये चोटी कॉन्फ्रेंस बाहमी ताल्लुकात के मुकम्मल शोबों का इहाता करने और उन्हें दवाम बख्शने की गरज से दोनों मुल्कों के लिए मौका फराहम करने के साथ साथ बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका भी फराहम करती है। बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज के दौर में भरोसा सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने उजागर किया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल हैं और एक आज़ाद और खुला भारत बहरुल काहिल दोनों ममालिक के लिए एक मुश्तरका तरजीह है।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात को तस्लीम किया कि ये ताल्लुक एतमाद

0: आज से पहले जयपुर में 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने के लिए इंतजामी सोच में बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अकीदतमंदों का पहला जत्था सख्त हिफाजती इंतजाम के साथ जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में वाकई नुनवान और जिला गांधरबल के बालतल बेस कैंप से कैंप पहुंच गया है। जम्मू से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए इस 57 रोजा यात्रा को लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने सुबह सवेरे झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का बाजाब्ता आगाज कल से होगा और ये 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भगवती नगर जम्मू के यात्री निवास से आज अल सुबह रवाना हुआ श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच आज दोपहर वादी पहुंच गया। ये काफिला 4,822 यात्रियों पर मुश्तमिल है। इनमें 2,510 यात्री पहलगाम जबकि 2,312 यात्री बालतल के रास्ते कल सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। बेस कैंप पहुँचते ही इंतजामिया के अफसरान और मकामी लोगों ने यात्रियों का वालेहाना इस्तकबाल किया। यात्रा के ऐसा इनेकाद के लिए दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के पूरे रास्ते पर पुलिस, नीम फौजी दस्तों और फौज के इजाफी एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके अलावा तिब्बी खिदमात की फराहमी, मौसमी हालात की निगरानी की सहूलियात के अलावा हसास मकाम पर क्विक रेस्पॉन्स टीम्स को भी मामूर किया गया है। अलावा अजी यात्रा के रूट पर सीसीटीवी कैमरे और यात्रियों नीज गाड़ियों के लिए RFID ट्रैकिंग निजाम भी नस्ब किया गया है। उर्दू खबरों के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के पेश नजर इंतजामिया ने आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने मंसूख कर दिए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। धारचूला के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने कहा कि इंतजामिया मौसम के हालात का जायजा लेकर परमिट फिर से जारी करने पर गौर करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ते हुए पूरी दिल्ली, गुजरात के मजीद इलाकों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, वस्ती महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में गर्म और हब्स वाला मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। गुजरात में मानसून ने शिद्दत इख्तियार कर ली है जिसकी वजह से 109 तालुका में तेज बारिश हो रही है। खास तौर पर सौराष्ट्र और जनूबी गुजरात में जूनागढ़ जिले के मंगरौल में आज रियासत भर की सबसे ज्यादा 8 इंच तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से सौराष्ट्र और जनूबी गुजरात खित्ते के नशेबी इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दीगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोशिया से होगा जबकि कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इससे कबल आज सुबह बेल्जियम सेनेगल को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल जखायर और समुद्री नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले 1 साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अलाक्वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: سمیر محترم رات ہن 9:30 بجے اکہ وقفہ بعد بوزو تو پروگرام بزرگن ہند خطرہ
3: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ

आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: अब सत श्री अकाल। पंच प्याले पंच पीर छठम पीर बैठा गुरपारी, अर्जुन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी, दल पंजन गुरसूरमा वड योदा बहुपर उपकारी। साथियो, सिख धर्म दे छेवें गुरु धन धन श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी दे जीवन नू जाचन दे लई अज साडे स्टूडियो दे विच डॉक्टर कीरत सिंह इनकलाबी नूरे इलाही श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी इस विषय ते गलबात करनगे। आओ सुनदे हां।
1: नूरे इलाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब, सिख धर्म दुनिया दे धर्मां चों एक अत आधुनिक धर्म दे तौर ते जानिया जांदा है। सिख धर्म दे बानी हदायत दे नूर यकजैतियत दे पैगंबर साहिब श्री गुरु नानक देव जी दा जन्म ननकाणा साहिब दी पाक धरती ते 1469 ईस्वी नूं होया। श्री गुरु नानक देव जी दे दूजे अवतार श्री गुरु अंगद देव जी, तीजे अवतार श्री गुरु अमरदास जी ते चौथे अवतार श्री गुरु रामदास जी, पंजवें अवतार श्री गुरु अर्जन देव जी दे घर 19 जून 1595 ईस्वी नूं माता गंगा जी दी कुख तों साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जिला बटाली अमृतसर विच होया। महान कवि लिखदे हन, पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी। पंज प्याले भाव पंज गुण, सत ट्रुथ संतोख कंटेंटमेंट दया मरसी धर्म रिलीजन ते धीरज पेशेंस। पंज पीर अर्थ पंज गुरु साहिबान, श्री गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी। दल पंजन गुरसूरमा वड जोदा बहु परे उपकारी, भाव के गुरु हरगोबिंद साहिब सिफतां जां वर्चूज दे मुजस्मा सन। अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सुहारी, भाव गुरु अर्जन साहिब ने गुरु हरगोबिंद साहिब इको ही जोत दे स्वरूप सन। दुनिया विच सदा गुणा दी पूजा होंदी आई है। सिमरन मेडिटेशन ते राजसी ताकत, पंजवें गुरु साहिबान ने इस गुण नूं शिखर छुआई जो सिमरन दा गुण सी, ते इस छठम पीर ने धार्मिक विद्या दे नाल नाल शस्त्र विद्या दा अभ्यास करन लई आख्या। गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा बुलंद कद, अत सुंदर चौड़ी छाती, हाथी दी सुंड वांग लम्मियां बाहां, मत्था कंधे दंद पथ उच्चे कणक वन्ना रंग हरण नेत्र, बहुत बड़े सूरवीर रूहानी जिस्मानी दोवां बातां दे बली, सच दे मिठे बोल हसमुख श्रेष्ठ गुण सियंकत राजनीति धर्म दोवां विच पूर्ण ज्ञाता। गुरु अर्जन साहिब ने गुरु हरगोबिंद साहिब नूं 27 मई 1606 ईस्वी नूं गुरियाई बख्शी। उस उपरंत उस समय गुरु हरगोबिंद साहिब दी उम्र 10 साल 10 महीने सी। गुरियाई दी गद्दी ते बैठन ते गुरु हरगोबिंद साहिब ने बाबा बुढ़ा जी नूं 2 तलवारां पेश करन लई किया, एक सज्जे पासे ते एक खब्बे पासे। ए गुरु अर्जन देव जी दे हुकम दी पालना सी कि ए मीरी गुण जिस नूं टेंपोरल वसी आखते हां दे प्रतीक सी, ते दूजी तलवार पीरी स्पिरिचुअल थॉट दे प्रतीक सी। इस दा वर्णन मुस्लिम फकीर ढाडी अब्दुल्ला जी ने इउं कीता, 2 तलवारां बद्धियां, एक मीरी दी एक पीरी दी, एक अजमत दे एक राज दी, एक राखी करे वजीरी दी। ये दोवें शक्तियां धर्म अते राजनीति होण करके एक शक्ति दूजे अधीन नहीं होवेगी, सगों दोवें अपनी अपनी थां मिल के चलनगियां। दरअसल मीरी पीरी एक जुगत से मनुख दे आत्म

0: پیام صبح،
1: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
1: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے،
0: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح،
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک،
0: آکاشوانی سری نگر سے پیام صبح۔
2: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں، سمن آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آکاشوانی دلی کے اسٹوڈیوز ہندی اور انگریزی خبروں کے لیے۔
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
4: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और

0: सीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
1: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है।

प्रोग्राम समाप्त करें सुबह का ही। मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन के तहत हमारा लाइव मॉर्निंग शो समाप्त करें सुबह के 7:10 से सुबह के 11:30 तक। समीन सुबह के 8:45 पर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नष्ट होगा हम सफर। कल के प्रोग्राम का मौजू है आलमे मलाइका अलैहिस्सलाम। कल पहली किस्त नश्र होगी। मुकर्रर हैं मौलाना फयाज अहमद जोरू और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा।

0: Capitalizations are large.
1: Yes.
0: And there's this whole theory going in, and I buy into that theory. Not theory. Experts are saying that a lot of the exodus of money that has happened is FPI money has been, they were invested in large caps. Whereas the domestic institutions went in and bought mid cap and small cap. So two different sectors of the market have got affected. So, so at some point, you know, when you keep buying, rather selling, it happens with buying also. You suddenly realize, oh, you know, maybe we have done enough. Maybe we need to do the different thing. The other very interesting thing that has happened today is maybe it happened yesterday, but it came to my notice today, is two very prominent brokerages, or shall we say research firms.
1: Okay.
0: Maybe brokerages would be a rather appropriate word. They have come out with notes where they are saying that it's not so bad, you know. Hey, it's not so bad after all. It's good, you know. They're going to bounce back. So, what I'm trying to hint,
1: it has affected the sentiments.
0: Yeah, you know, subtly that sometimes, you know, the disclaimer that you gave right in the beginning of the program. So every investor needs to think through this little bit of critical thinking. That collective wisdom, yes, it's important.
1: Yes,
0: but sometimes that wisdom has to work for you. If it doesn't make sense to you, maybe you should be thinking harder. So basically what I'm trying to say is that it is, now they've decided that, it's IT, Indian IT deserves love, and that's why it's getting it.
2: Right. Udin, ye to hamare IT sector ki baat rahi, lekin hum agar FIIs ki nikasi pe ek bar gaur kare, to humne agar pichle satr ko agar hum dekhe, to usme bhi comparatively jo hai wo kam nikasi hui hai, aur constantly jo DIIs hai wo to support kar hi rahe hain. To kahin na kahin ये भी एक मोमेंटम बांधता है मार्केट्स को अप करने के लिए.
0: देखिए, इसमें एक और थीम भी आ जाती है. जब कभी सबने तब भी कहा था और अब भी ये बात है कि जब भी उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लगेगा कि नहीं नहीं, ये जो एआई, सो कॉल्ड एआई थीम है, जहां पे फाउंडेशनल जो काम हो रहा है, चिप्स बन रहे हैं, मॉडल्स बन रहे हैं, उनके ऊपर जो इतना पैसा लग रहा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह में, ये बहुत ज्यादा हो रहा है. जौन से ऐसे दिन होंगे जहां पे लोगों को नर्वसनेस लगेगी, तब भारतीय मार्केट्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा. तो ये वही वाली बात है, किस दिन विच साइड ऑफ द बेड यू गेटिंग ऑफ, कैसे आप सो के उठे, कौन से बिस्तर के कौन से साइड से उठे, उस हिसाब से आपका मूड आपका बन रहा है. तो इसलिए जो है, भारत के जो निवेशक हैं, उनका जो रोल है, कई लोग उसको बहुत सिनिकली देखते हैं. ये तो मतलब अजीब भी लगता है मेरे जैसे लोगों को, पर वो एक स्टेबिलिटी उन्होंने बना के रखा हुआ है, और उनका जो योगदान है वो जबरदस्त है. सो दिस इज कि डोमेस्टिक जो पार्टिसिपेशन, आप और हम जैसे लोग और इस प्रोग्राम को सुनने वाले लोग जो भारत की प्रगति में एक हिस्सेदारी ले रहे हैं,
1: जी,
0: वो एक बहुत जबरदस्त कहानी है जिसकी

0: बारे में उतनी बात अभी तक नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, हो रही है, बट दिस इज अ ट्रिमेंडस स्टोरी विच प्रोबेबली नीड्स मोर प्ले देन इट्स गेटिंग.
1: राइट. Uden, would you say that, you know, we, India and Japan, the Japanese Prime Minister is, of course, in India on a three-day visit, and a slew of agreements were, signed, and there were memorandum of cooperations today that were agreed upon. So would you say that, and Japan has also announced $10 billion fresh investment in India across AI, defense technology, and energy security. Would you say that that is also, you know, added a bit to the momentum, positive momentum in the markets, or is it a different?
0: I don't think people in the markets would be so.
1: Okay.
0: See, these things will play out in the future.
1: Right.
0: Markets typically don't look so far into the future.
1: Right.
0: They reward, if you see unencumbered cash flows coming in, they will immediately go and reward. One can always argue that AI is out in the future and so on and so forth. So sometimes it's also a FOMO, you know, fear of missing out. You know, you don't want to miss out on something which is once in a generation. So wisdom is different, but that is important, the things that you're talking about, because Japan has been doing business with us for ages now.
1: Ages, yes.
0: And if you ask me, in my opinion, that relationship has been underdone. The bromance or whatever you want to call it, that relationship that we have, it probably has been underserved despite whatever breadth it has. And it probably is the time to make up for lost time.
1: Yeah.
0: And it's not a day too late.
1: Right. We will talk about the India-Japan, agreements a little later in the program. But right now, I think, Prachi, why don't you talk about the Asian market?
2: Bilkul, Anubha. Shrotaon, aaiye ruk karte hain Asia bazaar ki taraf. प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में आज गिरावट आई. चिप्स सेक्टर में गिरावट की वजह से दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 8% फिसला. जापान का निकेई 2.5%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 2% और ताइवान का ताइएक्स 0.5% से अधिक लुढ़का. वहीं सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1% से अधिक और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग 0.8% ऊपर बढ़ा. लगभग 8% हम कॉस्पी में देख रहे हैं गिरावट. महोदय, किस तरीके से आप इसे देखते हैं और ये क्यों किस तरीके से आ रहा है, आप प्लीज इसे बताएं.
0: देखिए, वो एक रन अप था जो बिल्कुल तेजी के साथ होता चला गया. और कई बार क्या होता है, चिप्स आप जैसे हमारे भारतीय बाजारों में देखते हैं कि पहले एक सर्टन सेक्टर में आपको पसंद आने लगे लार्ज कैप, फिर आपने कहा कि नहीं नहीं लार्ज कैप तो ये तो बहुत महंगे हो गए, थोड़ा और नीचे चलते हैं, मिड कैप में चलते हैं. तो उस तरीके से जब आपने देखा TSMC और डच कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ जो डिजाइन करती है चिप्स, तो वो जब आपको लगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप सैमसंग और हाइनेक्स पे चले गए जो कि आपके दे आर आउटस्टैंडिंग द लीडिंग मेकर्स, पर आप उस वहां पे फोकस करने लग गए. और उसके अलावा तब हेडलाइंस भी ऐसी थी, एनवीडिया ने हैंडशेक किया, तो उससे आपको सारे जो कंपनीज हैं आपस में एक दूसरे के साथ एक जबरदस्त हैंडशेक कर रहे हैं.
2: मैं यही बल्कि कहना भी चाह रही थी कि अभी यही बाजार है जो अपनी ऊंचाइयों पर भी गया और वही बाजार है जो आज हम देख रहे
0: तो
2: हैं.
0: तो जहां पर भी अगर जब आप फ्यूचर की तरफ देखते हैं, जैसे अब थोड़ी देर पहले बात होती थी, व्हेन थिंग्स आर आउट इन द फ्यूचर, इट्स अ ग्रोथ सेक्टर. आपको नहीं मालूम कि ये आप किसी को कह नहीं सकते कि आज ये आपने पिछले 3-4 महीने पहले ये बोला था, ये क्यों नहीं हुआ, ये दिस इज नॉट राइट. 4 months down the line, it's probably we're talking about 3-4 years, चीजें होंगी. So people are raising money right now. तो उसमें वहां पे जब आपको हेडलाइन ऐसा कुछ आता है, बिकॉज ये कन्विक्शन जो है, आप एक जिसे लीप ऑफ फेथ कहते हैं ना, मेरे को मालूम नहीं यहाँ पे सर्कस कितने लोगों ने रियल लाइफ में देखी है, तो वहां पे ट्रेपीज आर्टिस्ट होते हैं जो हवा में झूलते हैं, तो एक आदमी छलांग मारता है या लेडी छलांग मारती है, उनको पकड़ा जाता है, दूसरे लटक रहे होते हैं वो पकड़ते हैं, उसको लीप ऑफ फेथ बोला जाता है. तो ये लीप ऑफ फेथ की तरह है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने कितना कन्विक्शन है, आपको फेथ है,
2: यानी सुर्खियां पढ़ करके आप
0: जी आपको यह है कि आपने मैंने वो छोड़ दिया है जो मैंने पकड़ी थी और मेरा जो साथी है वो मेरे को पकड़ लेगा. वैसे तो नीचे नेट है जमीन पर दिस इज कॉल्ड द लीप ऑफ फेथ. तो लीप ऑफ फेथ जब डगमगाने लगती है या उसमें कमजोरी आ जाती है, तब तो आप वो देख रहे हैं जो आज आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ सुर्खियां ऐसी निकली कल.

0: जिसके वजह से देर इज दिस होल रिविजन कि नहीं नहीं मे बी वी आर जस्ट गेटिंग टू बुलिश आउट देर. तो ये चीजें जो एडजस्टमेंट होती है, समटाइम्स यू आर मूविंग ऑन द फ्यूल्ड बाय सेंटिमेंट. तो सेंटिमेंट का जो फ्यूल है जब वो थोड़ा कम होता है तो आपका गियर लोअर गियर में आ जाता है.
1: भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की. संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं. दोनों ही देश आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को समझते हैं.
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं. इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है. इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे. एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी.
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रौद्योगिकी साझेदारी भारत जापान सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होगा.
2: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी. इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है. भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं. जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा.
1: उदयन, अभी प्रधानमंत्री को हमने सुना, उन्होंने कहा कि जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर जो क्षमता है उसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति शक्ति देगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम भी ऑफकोर्स कम्पीट कर रहे हैं. तो हमारी जो एक परिकल्पना है विकसित भारत की, उसको किस तरीके से ये साकार करने में मददगार रहेगा?
0: देखिए, कई बार कई चीजें हैं, अब आपको जीरो से स्टार्ट करने में टाइम लगता है. तो अगर आप वो पार्टनरशिप से करते हैं तो जहां पे आपके दूसरे एक पार्टनर कंट्री हैं, जिस उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं, उन जो जहां पे वो सक्षम ज्यादा है हमसे, वो चीजें वो अपने टेबल पे लाते हैं और हम हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो कैपेबिलिटी, वो हम मेज पे लाते हैं. तो ये वो वाली अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जहां पे हमारे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी जो डिजाइनिंग जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसको मिलके हम वो चीजें प्रोड्यूस करें. क्योंकि देखिए, एक पर्टिकुलर देश का नाम लेते हुए ये कहना जरूरी है, दोनों देश दूध के जले हैं
3: जी,
0: तो छाछ भी वो फूक फूक के पी रहे
3: जी.
0: ठीक है, तो वो क्रिटिकल मिनरल से जुड़ा हुआ जो एक्सपीरियंस है, दूसरी चीजें जो है उसको दिमाग में रखते हुए ऑब्वियसली ये इन्फ्लुएंस कर रहा है. और ये जरूरी भी चाहिए आपको, क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप, कार प्रोडक्शन बंद हो गया या कुछ और हो गया, डिस्ट्रप्शन हो गया, जस्ट बिकॉज कोई स्टेटमेंट चली गई, तो वो उसके ये वो तो छोटी सी बात है. ये जरूरत भी है और ये लेवरेज किया जाए. जैसे कि मैंने कहा, ये अंडर सर्व था, ये अब वहां पे पहुंच, उस पायदान में जा रहा है, उस स्तर में जा रहे हैं जहां पे इसको होना चाहिए था.
3: राइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर रिलेटेड स्टोरी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड दैट इंडिया जापान रिलेशंस आर ट्रूली वेरी स्पेशल एंड देयर आर मेनी शाइनिंग एग्जांपल्स ऑफ द सक्सेस ऑफ द इकोनॉमिक पार्टनरशिप. एड्रेसिंग इंडिया जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम इन न्यू दिल्ली दिस इवनिंग, मिस्टर मोदी सेड व्हेन जापान्स एक्सपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट कंबाइंड विद इंडियाज स्पीड एंड स्केल, the entire world benefits.
2: कुछ ही महीने पहले हमने टैक्सेशन, गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए. हम हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव दे रहे हैं जिसका लाभ आप सभी उठा सकते. और यही कारण है कि लगातार पिछले 4 वर्षों से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC का सर्वे दिखाता है कि भारत जापानी बिजनेस के लिए most promising destination रहा है.
3: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. She said, at the recent G7 summit, she had presented 3 proposals to strengthen energy security.

0: लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, तो ये इसी स्तर पे रहेगा। इसके नीचे जाते हुए मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और ये जो निवेश के लिए जो देखते हैं उनको गोल्डन रूल है 5 से 10%, 100 रुपए अगर आपके निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, 5 से 10 रुपए से एक्सीड नहीं होना चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद उद्यन कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds nearly 580 points. Nifty settles at 24,176. India-Japan exchange agreements in fields including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. And global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra.

आकाशवाणी के चैनल एफएम गोल्ड को सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया, सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजेन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।

0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। इसमें जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान और समुदाय की भागीदारी से लेकर हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, बेहतरीन कोचिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शामिल है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। फीफा विश्व कप में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच अमरीका के इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, "When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits." He said, "Both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound." The Prime Minister said, India and Japan reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, "Among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas." Ms. Takaichi said, "Through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action." On the occasion, both the Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. India and Japan agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi yesterday. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India, and

कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। मैं कोई इल्जाम नहीं ना कोई गिला बनी, मैं कोई इल्जाम नहीं ना कोई गिला बनी, बस एक आदत की तरह याद करोगे मुझे। मेरे अल्फाज तुम्हारे साथ ना चल पाए तो क्या, मेरे अल्फाज तुम्हारे साथ ना चल पाए तो क्या, भीड़ में

भी अलग सी पाओगी मुझे। ढलती सांझ में जब सवाल उठेंगे कहीं, ढलती सांझ में जब सवाल उठेंगे कहीं, एक अधूरी सी कहानी सुनाओगे मुझे, एक अधूरी सी कहानी सुनाओगे मुझे। मैं ना रहूंगी तो भी असर बाकी रहेगा, मैं ना रहूंगी तो भी असर बाकी रहेगा। कभी कभी बेवफा यूं भी सोचोगे मुझे, कभी कभी यूं भी बेवफा सोचोगे मुझे। कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। और अगला गीत आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है कल आज और कल।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और निशिगंधा में आज आपके साथ हूं मैं जयती। निशिगंधा में अगला गीत, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले, आवाज है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत फिल्म का नाम है पारसमणि, आवाज है लता मंगेशकर और कमल बड़ौत की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आवाज है लता मंगेशकर और उदित नारायण की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया, सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था

व्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय शिक्षक प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अकादमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह श्रृंखला अगले महीने की 15 से 27 तारीख तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट अगले महीने की 15 तारीख से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट अगले महीने की 23 तारीख से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने की इस महफिल में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बहारों के सपने, आवाज है लता मंगेशकर की।

तुम आना एक रोज, तुम आना एक रोज मुझसे मिलने, तुम आना एक रोज मुझसे मिलने, मैंने बहुत संभाल कर रखा है तुम्हारे हिस्से का वक्त, मैंने बहुत संभाल कर रखा है तुम्हारे हिस्से का वक्त, तुम आना एक रोज मुझसे मिलने। और अगला गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है आस का पंछी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और गीत सुहाने में अब जो अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जंगली, आवाज मुकेश और आशा भोसले की।

तेरी हर बात को दिल पर उतारा हमने, तेरी हर बात को दिल पर उतारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने। रोज चेहरे पे नए रंग उतर आते हैं, रोज चेहरे पे नए रंग उतर आते हैं, तेरा किस्सा है ये हर बार छुपाया हमने। एक शोला सा उठा था कभी बस्ती के तले, एक शोला सा उठा था कभी बस्ती के तले, वक्त रहते ही उसे खुद से जलाया हमने। बात अधूरी ही सही मगर कहते रहे, बात अधूरी ही सही मगर कहते रहे, वक्त की चाल को चुपचाप निभाया हमने। तेरी हर बात को दिल पे उतारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने। और अब जो फिल्म, जिस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसका नाम है बॉम्बे टू गोवा। आवाज है किशोर कुमार की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते, वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते, उन्हें कौन समझाए मोहब्बत में हिसाब नहीं होते। वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते, उन्हें कौन समझाए मोहब्बत में हिसाब नहीं होते। सोच समझ कर तो बस रिश्ते निभाए जाते हैं, सोच समझ कर तो बस रिश्ते निभाए जाते हैं। दिल जहां उतर आए वहां सवाल नहीं होते। हमने चाहा तो किसी शर्त का सौदा न किया, हमने चाहा तो किसी शर्त का सौदा न किया। इश्क में मुनाफे के अंदाज नहीं होते, इश्क में मुनाफे के अंदाज नहीं होते। वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते, उन्हें कौन समझाए मोहब्बतों में हिसाब नहीं होते। इश्क को इश्क ही रहने दो दलीले न गढ़ो, इश्क को इश्क ही रहने दो दलीले न गढ़ो। आग के सामने अक्सर बयान नहीं होते, आग के सामने अक्सर बयान नहीं होते।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है यशुदास की और फिल्म का नाम है सुनैना। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब वक्त आ चला है एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 3:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है संगम, आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेवार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय टीचर ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये एकेडमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों की प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक

0: समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी उगदहान प्रांत में तीर्थयात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सूत्रों के अनुसार 11 साल के एक लड़के ने पिकअप ट्रक से इन भिक्षुओं को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि मुग्धहान प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थयात्रा पर थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह श्रृंखला अगले महीने की 15 से 27 तारीख तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट अगले महीने की 15 तारीख से गाली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's 4th vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. India and Japan agreed to deepen cooperation in strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between PM Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi yesterday. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both sides expressed their shared intention to work as responsible powers in major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri yesterday said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil yesterday reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater and conserving wetlands and biodiversity will collectively accelerate the vision of an Aviral and Nirmal Ganga. He added that these acts will also ensure long-term water security and ecological resilience across the Ganga Basin. वाइस प्रेसिडेंट

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। दिल ने धड़क कर जो कहा याद आया, किसी अपने का गिला याद आया। आज बोझिल थी जरा सांसों की चाल, तू परेशानी में था याद आया। दिन किसी तरह से काटा मैंने, फिर तेरा रात का वादा याद आया। लोग मिलते रहे चेहरे बदले, लोग मिलते रहे चेहरे बदले, फिर कोई भूला सा शहर याद आया। बात कहने की हिम्मत थी लेकिन जब वो चला ही गया याद आया। फूल के नीचे बैठी रही देर तलक, फूल के नीचे बैठी रही देर तलक, दिल बहुत रोया तब याद आया, दिल बहुत रोया तब याद आया। और अगला गीत, फिल्म का नाम है कोयला, आवाज है उदित नारायण की।

हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है। जो वक्त की धूप से आंखें चुराता रहा, उसे अपने ही साए में जलना जरूरी है। रिवायतों की धूल जब सांस रोकने लगे, तो कुछ सवालों का उगना जरूरी है। जो कल की लकीरों को तकता ही बैठा हो, उसे आज की मिट्टी में चलना जरूरी है। हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है ड्रीम गर्ल।

है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है गुप्त, आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सनम बेवफा, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों तथा प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी मुग्दाहान प्रांत में तीर्थ यात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। सूत्रों के अनुसार 11 साल के एक लड़के ने पिकअप ट्रक से इन भिक्षुओं को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि मुग्दाहान प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थ यात्रा पर थे। फीफा विश्व कप में स्पेन ने राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारबाजाल ने 36वें मिनट

3:10 हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमराही, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कहते हैं जिंदगी में कुछ मौसम ऐसे भी आते हैं जब दिलों के बीच की दूरियां खुद ब खुद मिटने लगती हैं और मुलाकातों की खुशबू फिजाओं में घुल जाती है। इंतजार के बाद आने वाले ऐसे ही खूबसूरत पलों का एहसास कराता है फिल्म लवर्स का ये खूबसूरत सा गीत, आवाज लता मंगेशकर और अमित कुमार की है।

दोस्तों, प्यार जब दिल की धड़कनों में बस जाता है तो हर रास्ता, हर मौसम और हर एहसास उसी का नाम लेने लगता है। मन किसी और दुनिया में खोया खोया सा रहता है और हर पल बस अपने प्रिय की यादों के इर्द गिर्द ही घूमता है। ऐसी ही मासूम दीवानगी और मोहब्बत की मिठास से सजा है हमारा अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म प्रेम बंधन से, और आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं।

कहते हैं प्यार कभी दस्तक देकर नहीं आता, तो वो तो चुपके से दिल में उतर जाता है, फिर मुस्कानें भी बेवजह खिलने लगती हैं और हर धड़कन किसी का नाम गुनगुनाने लगती ही है। ऐसे ही शरारत, मासूमियत और प्यार के रंगों से सजा है हमारा अगला गीत। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, आवाजें किश कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं।

3:33 हुए हैं दोस्तों। एफएम गोल्ड यानी 100.1 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कहते हैं जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो शब्द भी महकने लगते हैं। एक खत और उसमें रखा एक फूल कभी कभी पूरे दिल का हाल कह देता है। प्यार की उसी मासूम खुशबू, इंतजार की मिठास और रिश्तों की गर्माहट को समेटे है फिल्म सरस्वती चंद्र का ये सदाबहार नगमा। आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में।

कभी कभी प्यार भरी एक छोटी सी नसीहत भी रिश्तों की मिठास को और गहरा कर देती है। साल 2066 की फिल्म ममता का ये सदाबहार गीत, इन बहारों में अकेले ना फिरो, छेड़छाड़ अपनापन और हल्की सी फिक्र को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की मधुर आवाजें इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना देती हैं। तो आइए आप और हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

प्यार सिर्फ इजहार का नाम नहीं, इसमें रूठना भी है, मनाना भी है और नोकझोंक भी है और मुस्कुराहट कर हार मान

लेने का अपना ही आनंद भी है। कभी एक छोटी सी तकरार रिश्ते में ऐसी मिठास खोल देती है कि वही पल उम्र भर की याद बन जाता है। अब जो सदाबहार गीत आपको सुनाने जा रही हूं, इसी चुलबुले अंदाज और प्यार भरी नोकझोंक का खूबसूरत सा उदाहरण है। इसमें रूठने की अदा है, मनाने की कोशिश है और दिलों के बीच छिपा वो अपनापन है जो हर शिकायत को मुस्कान में बदल देता है। कुछ इस तरह।

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

तेरे नैनों की मैं दीप जलाऊंगा। इस खूबसूरत से गीत को आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम है अनुराग।

दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं झूठा कहीं का फिल्म का यह गीत, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इसमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा आज ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। यह राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। फीफा विश्व कप में स्पेन ने राउंड ऑफ 32 की मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारजाबल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई, जिसके बाद

सुबह के 4:10 और 52 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और इस समय आप सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी की मंजिल, पसंद और सपने अलग अलग होते हैं। दूसरों की राह देखकर अपनी दिशा मत बदलिए। जो आपके दिल को सुकून दे, वही आपकी असली पहचान बन सकता है। बस होना चाहिए कि रिश्तों में सम्मान हो और जीवन में अपने मन की सच्ची आवाज सुनने का साहस। जब आप अपने मूल्यों और सपनों के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी सफर भी खूबसूरत बनता है और मंजिल भी। आइए सुनते हैं सफर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में।

जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कोई खास वजह नहीं होती, फिर भी मन नए नए सपने बुनने लगता है। यही छोटे छोटे ख्याल, यही अनदेखे एहसास आगे चलकर बड़े इरादों और नई मंजिलों की शुरुआत बन जाते हैं। फिल्म रजनीगंधा का एक खूबसूरत गीत है जो हमें याद दिलाता है कि हर सपना पहले एक ख्याल बनकर ही जन्म लेता है। इसलिए अपने मन की सकारात्मक सोच पर भरोसा रखिए, क्योंकि आज की एक छोटी सी उम्मीद कल आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकती है। तो आपको सुनवाते हैं रजनीगंधा फिल्म का गीत मुकेश के स्वर में।

4:30 होने को है। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरी यानी अर्चना बिसारिया के साथ। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं समर्पण से बनते हैं। जब किसी की खुशी हमारी अपनी खुशी बन जाए तो जीवन के हर रंग और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। सच्चा अपनापन वही है जो बिना किसी अपेक्षा के मुस्कुराहट बांटता रहे। अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे उसमें प्रेम

0: समर्पण और जीवन की खूबसूरत भावनाओं का अनमोल एहसास है। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आनंद का ये गीत, आवाज मुकेश की है।
1: नहीं, नहीं।

0: ちょっと。
1: कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि कोई हमें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, लेकिन याद रखिए, हर सफर का एक पड़ाव ऐसा भी होता है जहां सबसे पहले हमें खुद से दोस्ती करनी होती है। जब मन मजबूत हो जाए तो दुनिया की हर राह आसान लगने लगती है। ऐसा ही एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, अभिमान फिल्म का, आवाज किशोर कुमार की। ये गीत हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत अपनी

लोगों की राय, उम्मीदें और सलाह, लेकिन इन सब के बीच एक आवाज ऐसी भी होती है जो कभी झूठ नहीं बोलती, आपके अपने दिल की आवाज। जब इरादे सच्चे हों तो उसी आवाज पर भरोसा करना सबसे बड़ा साहस होता है। अपनी पहचान, अपने सपनों और अपने विश्वास को कभी खोने ना दे। जो अपने दिल की सच्ची पुकार सुनता है वही जीवन की राह पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। और ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं उसे आवाज दी है हेमंत कुमार ने, फिल्म का नाम है अनुपमा।

दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन तब बनती है जब रिश्तों में तालमेल, विश्वास और अपनापन हो। जैसे सुर और गीत एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही साथ, सहयोग और संवेदनाएं जीवन को अर्थ देती हैं। आइए सुनते हैं ये गीत, जिसमें इसी मधुर संगम का खूबसूरत एहसास है। प्रेम, समर्पण और संगीत की मिठास से सजाइए नगमा आज भी दिलों को छू लेता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात

तो वो है आपका आत्मविश्वास और आपका सच्चा व्यक्तित्व। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि लोगों के बदलने से अपने सपनों का रास्ता मत बदलो। हर अनुभव आपको थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और समझदार बनाता है। तो दोस्तों, ये है कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर हम आपको ले चल रहे हैं। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते, आवाज किशोर कुमार की और सुमन कल्याणपुरी की है। आप आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का, और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम यानी अरुणिमा कार्यक्रम को समाप्त करने का। आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम में। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान की संबंध अति विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान

0: संयुक्त आर्थिक मंच से श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के साथ एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों को की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा आज ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। सीरिया के दमिश्क के एक कैफे में विस्फोट में 9 लोगों की मौत की खबर है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारजाबल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच के मैच के विजेता से होगा। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त को गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Ashish P. Abraham. India and Japan have reaffirmed their shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership, The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic

5:10 और 56 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब बारी है कार्यक्रम भोर सुहानी की। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है कभी अजनबी थे फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की।